0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210।
3: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM। स्टे ट्यून्ड।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas yo chale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: Looking for your next ride? Morningside Nissan, but ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
4: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca.
5: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए. टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का. लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: आखिरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
7: गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट एशिया गोल्डिंग.com।

0: आप सुन रहे हैं CMRR 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटबिको, नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795, 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद बचत। विजिट asiagolding.com। Looking for your next ride? Morningside Nissan पर ये है perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. जी हाँ, आपने ठीक सुना, 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. और फिक्र ना करें, हम सब credit types के साथ काम करते हैं, जिससे सबको approve होने का मौका मिल सके. Visit Morningside Nissan today and मिले AHA से, और call 416-804-2365. Drive home your new Nissan Today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
2: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी, और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR with $4,900 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: प्रकृति की खूबसूरती, आराम और रोमांच का बेहतरीन संगम आपका इंतजार कर रहा है ग्रैंड टापा टू रिजॉर्ट में। टोरंटो से सिर्फ 2 घंटे से भी कम दूरी पर पेरी साउंड एंड मस्कोका एरिया के पास हाईवे 400 नॉर्थ पर स्थित ये हर मौसम के लिए एक परफेक्ट गेटअवे है। हमारे प्राइवेट बीच का आनंद लीजिए, इंडोर स्विमिंग पूल में रिलैक्स कीजिए और हमारे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में हमारे इंडियन शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा उठाइए। आरामदायक होटल रूम्स और खूबसूरत कॉटेजेस भी उपलब्ध है। कॉल टुडे टू बुक योर स्टे एट 705-378-2210. That's 705-378-2210. Grand Tapa 2 Resort, आपकी अगली यादगार छुट्टियों की मंजिल।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट शॉप toyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: आप सुन रहे हैं CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर local Toyota dealer today.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000. You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Don Platinum, the better grease getter.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabrein hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज़, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 36, एंड एक्चुअली नथिंग टू पैनिक। काफ़ी कई बार ये वेदर रिपोर्ट्स जो है घबराहट लोगों के अंदर डाल देती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, हीट वेव एंड एवरीथिंग। आई थिंक लेट्स जस्ट चिल, क्योंकि आप अगर एसी में हैं तो अच्छा है। बाकी यू नो, ड्रिंक एज मच वाटर दैट यू कैन। टुडेज 34, टुमारो 35, थर्सडे 36, 34 ऑन फ्राइडे, एंड सैटरडे 30 डिग्रीज अगेन। सो दिस इज द काइंड ऑफ वेदर। संडे को 27 होगा। वट एवर इट इज, जस्ट इंजॉय, बिकॉज यही वो टाइम होता है इस ब्यूटिफुल वेदर का। एंड नहीं तो फिर वो -20 डिग्री वाले टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं विद विंड चिल्स -29। सनसेट एट 9:04 PM। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। मस्त फिल्म के गीत के साथ हमने मस्त शुरुआत की है। रुकी रुकी सी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी। सुनिधि चौहान, सोनू निगम, फिल्म आया ऑन उर्मिला माटोंडकर एंड आफ्ताब शिवदेसानी। दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म। एंड 12:15 की हेडलाइंस बिल्कुल हमारी रेडी हैं। द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी। सुल्तान जी ने कनाडा डे की अमेजिंग डील्स का आगाज किया हुआ है। आपने पहुंचना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन एंड टेक एडवांटेज ऑफ दीज सुपर कनाडा डे डील्स। एंड 9054502828 इज द नंबर। टुमारो जुलाई 1st, नया महीना, कनाडा डे सेलिब्रेट आपके साथ करेंगे, न्यूज़ व्यूज़ को ब्रेक देंगे, एंड इट विल बी जस्ट अ म्यूजिकल शो एज ऑलवेज। एंड फिर से बैक ऑन ट्रैक हम हो जाएंगे ऑन थर्सडे। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग 9052061008। सैटरडे आफ्टरनून, हर सैटरडे आफ्टरनून फ्री सेमिनार होता है 12:30 to 3:30। सीट रिजर्व करवा लें, प्लीज डोंट वॉक इन। 9052061008 इज द नंबर। एंड कहते हैं कि कनाडा साउथ अफ्रीका की जो गेम हुई उसकी व्यूअरशिप ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, एंड 11 मिलियन पीपल व्यूड इट। कनाडा टू प्ले मोरक्को ऑन जुलाई 4th, विच इज़ सैटरडे। और अगर वर्ल्ड टेबल में देखा जाए तो इन 32 टीम्स में कनाडा इज एट नंबर 30 एंड मोरक्को इज एट नंबर 6। सो बहुत ही अपहिल बैटल होगा हम कैनेडियंस के लिए अगेंस्ट मोरक्को ऑन जुलाई 4th सैटरडे, एंड दैट इज टेक्निकली ऑल्सो इंडिपेंडेंस, US इंडिपेंडेंस डे। एंड टोरंटो में थर्सडे को पोर्चुगल एंड क्रोएशिया खेलेंगे। रोनाल्डो अपना कदम रखेंगे बीमो फील्ड पर, एंड यहाँ पर होगी उनकी गेम। एंड जस्ट टू लेट यू नो, यू विल बी शॉक्ड, टिकट्स वर गोइंग एट $6,000 बट नाउ द टिकट्स आर सेलिंग एट $30,000, $30,000 की टिकट रोनाल्डो को देखने के लिए बिक रही है थर्सडे की गेम के लिए। Unbelievable. Never heard of something like this. चलिए, आप जहाँ पे पैसे की बात कर रहे हैं, ऑटो होम इंश्योरेंस में आपके पैसे की थोड़ी सी बचत करवाते हैं, एंड गुरविंदर बामरा ऑल स्टेट के साथ काम करती हैं, ऑल स्टेट इंश्योरेंस। आज ही कॉल करें एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। 6473033207, 6473033207 गुरविंदर बामरा का नंबर है, गुरविंदर जी से संपर्क करें। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare sirf 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located at 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
1: Don Valley North Hyundai, ab loyalty offers sabhi customers ke liye extend kar raha hai. Paye 1% lease rate reduction, 0.5% finance rate reduction, or $500 cash purchase incentive. Plus, Kona EV per stackable cash up to $2,500 taka fayda. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit kare DonValleyNorthHyundai.com, Woodbine Avenue, or Denison Street, Markham Park.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में। लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है। विद अ 3% रेट ब्रेक, इस साल की जबरदस्त ऑफर एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें donvalleynorthlexus.com या विजिट करें इन पर्सन। अ प्राउड मेंबर ऑफ विंस ऑटो ग्रुप।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन। 6477602779।
2: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है। आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
1: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

0: Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Rajdhani Sweets and Restaurant, McQueen Dental Care, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Yoga Care, Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. Europe mein heat wave ka kahar. Roads melt hui, tram tracks buckle hui. Qatar ka kehna hai ki Doha mein US-Iran ke direct talks hone ka koi chance nahi dikhta. Ukraine par hui Russian strikes mein 10 log mare gaye, dozens have been injured. Is hafte Qatar gifted jet par President Trump apni first flight lenge, an event marking the 250th anniversary of US independence. Lebanon ka kehna hai ki ceasefire framework ke bawajood Israeli strike ne southern area ko hit kiya. WhatsApp to let users chat without sharing phone numbers very soon. Trump ke comments par hui recent controversy par Italian Prime Minister Meloni ne kaha, main anti-US nahi hu, but I refuse to kneel in front of the US. Trump ka push to overturn $5 million sexual abuse case verdict ko reject kiya gaya. Trump ne kaha Iran requested meeting tomorrow, magar Tehran ne daave ko sire se kharij kiya. Air conditioning par heat wave ne fierce debate ko spark kiya, European Union still neutral. And FBI ka kehna hai ki World Cup stadiums ke paas 1000 se zyada drones detect hue, 300 have been neutralized. Local samacharon mein, Portugal versus Croatia, tickets in Toronto selling as high as $30,000. Orange alert jari hua, GTA to see the first summer heat wave this week. And Great Canadian Entertainment ko $120,000 ka fine hua for unauthorized casino software use. Scarborough Cash mein, motorcyclist critically injured. And two children found dead in Ottawa home in murder-suicide. Toronto police ne FIFA venues ke paas 20 drones ko seize kiya. Aur dusri aur Ontario mahila ne Mexico mein condo buy kiya tha. 3 years gone, still not ready. Bharatiya samacharon mein, Supreme Court ne Asaram ki bail plea ko reject kiya in Jodhpur rape case on medical grounds. And Lieutenant General Dhiraj Seth takes charge as the new army chief, career spanning over 40 years in the army. Bihar mein hui jeeps ki head-on collision mein 4 log mare gaye, 8 hue zakmi. Aur Delhi peak power demand hits all-time high of 8,748 megawatts due to heat wave. Ek mahila aur uske lover ko umr qaid ki saza hui for killing her husband in Rajasthan. And BJP ne panel form kiya to help with civil code rollout, sets August timeline. मनाली में परिवार के साथ विजिट करने वाली 14 साल की लड़की की डूबकर मौत हुई, परिवार बिजनौर से आया था. तमिलनाडु ने स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस किया टू क्लासिफाई एंड मॉनिटर सेक्सुअल ऑफेंडर्स. स्पेक्ट्रम स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर प्रोफाइलिंग, इवैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, ट्रैकिंग, रिस्क असेसमेंट एंड यूनिफाइड मॉनिटरिंग सिस्टम. मैंगलुरु के हाईवे पर एक ट्रेडर को लूटा गया ऑफ हिज गोल्ड कैश एंड कार. और चीफ मिनिस्टर विजय ने फर्स्ट ऑफिसर्स मीट पर ऑफिशियल से कहा, विमेन सेफ्टी इन तमिलनाडु इज नॉन निगोशिएबल, नो चेंज एंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन विमेन सेफ्टी. उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 4 लोग मारे गए, 27 हुए जख्मी. एंड मैन पोजेस एज अ नेवी ऑफिसर, इंदौर की महिला को चीट किया ऑफ 26 लाख रुपीज, लेटर गॉट अरेस्टेड. पाकिस्तान की खबरों से, इंडस कमिश्नर ने इंडियन काउंटर पार्ट को चेन ऑफ फ्लक्चुएशंस पर 4 बार लिखा खत, बट कहा देयर हैज बीन नो रिप्लाई सो फार. रावलपिंडी में प्रिजन वैन से कैदी फरार हुए, मैनहंट अंडरवे. 14 एस्केप कैदियों में से 4 को फिलहाल पकड़ा गया है. सीनियर ऑफिसर्स ने हादसे की रिपोर्ट मांगी है. सीनियर ऑफिशियल्स के सुपरविजन के अंडर जांच लॉन्च की गई. सूत्रों के अनुसार प्रिजनर्स को अडियाला जेल शिफ्ट किया जा रहा था. गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया ऑन अफगान नेशनल्स लिविंग विदाउट वीजा. 10 जुलाई से रहने वाले किसी भी बिना वीजा के रहने वाले को अरेस्ट किया जाएगा. इंटीरियर मिनिस्ट्री ने प्रोविंसेस और टेरिटरीज को लेटर भेजा. सीक्स डेली रिपोर्ट ऑन अफगान नेशनल्स. जियो न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसिंग हैकिंग अटेम्प्ट्स फॉर द लास्ट 10 डेज. और पाकिस्तान का कहना है कि IWT डिस्प्यूट ग्लोबल टेस्ट ऑफ वाटर राइट्स एंड इंटरनेशनल जस्टिस है. पाकिस्तान के मुताबिक इंडिया के एक्ट से अंजाम कुछ और ही होगा. इंडस वाटर ट्रीटी कैनॉट बी सस्पेंडेड यूनिलैटरली. और सेनेट ऑपोजिशन लीडर ने भारा काहू SHO के खिलाफ प्रिविलेज मोशन फाइल किया ओवर डिसकर्टियस कॉन्डक्ट. स्पोर्ट्स जगत से फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में कल पराग्वे बीट जर्मनी 4-3 इन पेनल्टीज, ब्राजील बीट जापान 2-1, मोरक्को बीट नेदरलैंड्स 3-2 इन पेनल्टीज एंड फेस कनाडा इन राउंड 16 ऑन सैटरडे. फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में आज फ्रांस वर्सेस नॉर्वे, मेक्सिको वर्सेस इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे खेलेंगे. इंग्लैंड स्टार बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट पर सचिन तेंदुलकर ने हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट भेजा एंड न्यूजीलैंड थ्रैश इंग्लैंड इन थर्ड टेस्ट टू डिनाई बेन स्टोक्स अ फेरी टेल फिनिश. बॉलीवुड खबरों से, फिल्म डॉन 3 कंट्रोवर्सी के बीच रणवीर सिंह ने फिल्म प्रलय की शूटिंग सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया. वायरएफ ने फिल्म अल्फा के लिए शो शेयरिंग मैंडेट इशू किया. शोज फ्रॉम 9:30 AM ऑनवर्ड्स, वीकेंड रेट्स टू बी एट पार विद अक्षय कुमार्स वेलकम टू द जंगल. सनी डियोल इक्का के ट्रेलर लॉन्च पर इमोशनल हुए. ट्रेलर क्रेडिट्स हिम एज धर्मिंदर सन सनी डियोल. सनी ने कहा, मैं हमेशा पापा का बेटा हूं और रहूंगा. सनी ने यह भी कहा कि इक्का के पहले खूब कोशिश की थी टू मेक दामिनी 2, बट इट नेवर हैपेंड. सनी डियोल ने अक्षय खन्ना की धुरंधर सक्सेस को लेकर कहा, इट्स हाई टाइम, अक्षय खन्ना डिजर्व्स इट. वेलकम टू द जंगल क्रॉसेस 100 करोड़ रुपीज, जिसके बाद रवीना टंडन ने लॉजिक टॉक का मजाक उड़ाया. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. कॉलर है, उन्हें लेते हैं. आप ऑनर हैं, प्लीज गो अहेड.
1: हाँ जी सनी, कैसे हैं आप? ठीक है.
0: हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. आप सुनाइए.
1: यार ये आपने भी एक खबर में बताया कि किसी महिला ने यहाँ मेक्सिको में घर खरीदा और 3 साल तक उसको घर नहीं मिला.
0: जी
1: तो ये क्या कोई बहुत वजह क्या? ये बताना चाहते हैं कि मेक्सिको में घर ना खरीदे या वो क्या? हमें समझे.
0: कई बार ऐसा होता है कि हमें दूर के पहाड़ जो है बहुत अच्छे दिखते हैं, ग्रीनरी दिखती है उन पहाड़ों में, और इस वजह से हम जाके अलग अलग कंट्रीज में, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स चीपर, ऑब्वियसली बिकॉज कैनेडियन डॉलर इज स्ट्रॉन्गर, तो आप जाके उन देशों में खरीद लेते हैं. लेकिन गारंटी ये नहीं होती कि उस देश में एक सस्ता आपने घर खरीदा है और वो बिल्ड किया जा रहा है. तो जैसे ग्लोबल इकोनमी और ग्लोबली पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है, मैक्सिको ऑल्सो गॉट इफेक्टेड, एंड दैट इज वाई इवन आफ्टर 3 ईयर्स बिल्डर का घर तैयार नहीं है उस लेडी के लिए.
1: बात तो ये भाई, पाकिस्तान में और ऑल कंट्री में, खासतौर पे पाकिस्तान में, जिन लोगों ने प्लॉट लिया होता है, अभी ये रियाज, क्या था, रियाज मलिक का जो था, इतने पैसे लोगों ने डाले, सब कुछ फाइलें चल रही है, बस पता ही नहीं कहाँ है. ये तो उन कंट्री का काम है कि उसको वो करें. ये मेक्सिको में भी कोई ना कोई लॉ तो होगा, अगर कैनेडियन ने खरीदा है तो वो अपने कॉन्सुलेट एम्बेसीज के थ्रू जा सकती है, कर सकती है कुछ.
0: हाँ, कई बार यू नो हाउ थिंग्स आर, कई बार इतनी इजी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं. एम्बेसीज के पास और काम भी होता है.
1: आपका मैसेज आज ये है कि कैनेडा से बाहर घर मत खरीदना, जो कोई खरीदना यहीं खरीदो, कुछ करना है.
0: मेरा मैसेज तो नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैसेज ऐसा ही होना चाहिए तो या आई थिंक टू ईच इज ओन, मतलब जिसको जैसा ठीक लगे. सम पीपल मे स्टिल वॉन्ट टू गो टू मैक्सिको और अदर प्लेसेस. अगर आप मुझे पर्सनल लेवल पर पूछेंगे, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम, और विद ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन कनाडा, आई थिंक वी आर स्टिल लिविंग इन द हेवन कॉल्ड कनाडा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट.
1: वैसे तो पाकिस्तान में और इंडिया में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां के भी हालात मेक्सिको से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि और भी खराब है.
0: That's debatable, but yes, okay. Yes, to, again, to each his own. बहुत बहुत शुक्रिया. अगले कॉलर को लेते हैं. आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
2: जी मैं ऑनलाइन हूँ.
0: जी जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
2: एक्चुअल में सर साहब, ये डिपेंड करता है ना कंट्रीज के ऊपर कि किस इलाके में और किस बिल्डर से आप खरीद रहे हैं ना. जैसे पाकिस्तान के अभी भाई साहब ने मिसाल दी ना,
0: बिल्कुल,
2: तो उसमें अच्छे बिल्डर्स हैं जो उनको आप रेपुटेशन जिनकी अच्छी है और जो मतलब जो वहाँ की अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट की जो जहाँ से पास होते हैं इसके नक्शे वगैरह और जो इसकी जो तमाम मैप प्लान वगैरह इसके बनते हैं, तो उनके लाइसेंस वगैरह, तो वो रजिस्ट्री वगैरह जहाँ पर भी उनकी सिटी गवर्नमेंट में होती है, तो वहाँ से जो बिल्डर ये पहले काम करा लेते हैं, तो उनसे मैं समझता हूँ कि आप अगर खरीदेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. हर जगह पर होता है ये सिलसिला, जैसे कि आप भाई साहब बता रहे थे कि मेक्सिको में ना खरीदें. ना खरीदने का मतलब यही कि किसी ना किसी के साथ ऐसे बिल्डर्स सामने आ जाते हैं, वो मतलब जैसे कहते हैं ना मीडिया बहुत तेज चल रहा है, यहाँ से खरीद लो वहाँ से खरीद लो, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. इवन कनाडा के अंदर आप देखें ना, एक शोर मचता है कि यहाँ महंगा हो गया वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, तो वहाँ चले जाते हैं लोग, फिर बाद में पता चला कि वहाँ की मार्केट फिर डाउन हो जाती है। ये तो एक सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन जो धोखे दही की बात है या ना मिलने की बात है तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन उसके बिल्डर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है ना।
0: अग्री विद यू, अग्री विद यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉमेंट्स का। एंड आई कंप्लीटली अग्री कि कई बार वो चीज डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ से लोगों ने जाके दुबई में भी चीजें खरीदी हैं, किसी के लिए वर्कआउट हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ। एंड आई थिंक दैट इंटायरली इज आपका एक्सपीरियंस कहीं पे कैसा रहा और किस तरह से आपने देखा। हाँ, ये ट्रू है कि काफ़ी जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका से कई बार साउथ अमेरिका की तरफ मूव करना चाहते हैं, वेदर इट्स मैक्सिको और डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज दे थिंक कि भाई डॉलर की वैल्यू अच्छी मिलेगी, रिटायरमेंट वहीं पे बिताते हैं। सो वेदर कई बार लोग प्रेफर करते हैं, हॉटर, इट्स अ वार्म कंट्री। आप ऑनर हैं, प्लीज़ गो अहेड।
3: जी बॉस, मैं ऑनर हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, आप ऑनर हैं, प्लीज़ गो अहेड।
3: वो अभी एक भाई साहब ने कहा कि कहीं पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ कनाडा में ही लेनी चाहिए। वो जैसे आपने जवाब दिया कि वो अपनी अपनी चॉइस है
0: जी, बिल्कुल।
3: और दूसरा उन्होंने एक मेंशन किया कि मलिक रियाज का बहरिया टाउन, क्योंकि आप पाकिस्तान से नहीं हैं, आप इंडिया से हैं, आप गूगल पे जाके देखिएगा कि बहरिया टाउन कराची की लोएस्ट प्राइस में सोसाइटी है, और ऐसी सोसाइटी आपने पूरे नॉर्थ अमेरिका में नहीं देखी होगी, और तो जगह नहीं, पूरे नॉर्थ अमेरिका में ऐसा लिविंग स्टाइल नहीं देखा होगा, स्टैंडर्ड नहीं देखा होगा, और इतना सस्ता कि जिसका मैं बता नहीं सकता। आप सिर्फ जाके दो मिनट के लिए गूगल पे देखिएगा,
0: बिल्कुल,
3: और किसी और साथ से देखिएगा कि बहरिया टाउन कराची जो है वो किस लेवल पर है।
0: बिल्कुल, आई विल चेक इट आउट। And I agree with you कि आप कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो NRIs या जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो बैक होम जाके चीजें खरीदना चाहते हैं, तो वहां के जो रेपुटेड बिल्डर्स हैं दे डू अंडरस्टैंड कि यहाँ से जो लोग आ रहे हैं अपनी हार्ड अर्नड पैसे को ला रहे हैं, उनको वैसी फैसिलिटीज भी चाहिए, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, अच्छा रहना सहना चाहिए, एंड लॉट ऑफ द बिल्डर्स आर प्रोवाइडिंग दैट इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान।
3: ठीक है, मैं आपको बस एक मिनट और लूंगा उसके बाद, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। मसला ये है कि जो पाकिस्तान में एक DHA की सोसाइटी है, DHA में तकरीबन जो अच्छा घर है 16-18 करोड़ रुपए का है, वही घर जो है आपको 4 करोड़ रुपए का बहरिया टाउन में मिलेगा, लेकिन 16 करोड़ रुपए के घर में कोई एक फैसिलिटी नहीं है, जो वहाँ पे 100 फैसिलिटीज है। आप सिर्फ गूगल पे जाके दो मिनट देखिए, आपको पता चल जाएगा, फिर नेक्स्ट आप इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे।
0: डेफिनेटली, आई विल डू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हैव अ वंडरफुल डे एंड अ सुपर कनाडा डे, एंजॉय करें अपने परिवार के साथ। थैंक यू ब्रदर। एंड बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 40, एंजॉय कर रहे हैं यार। मीका सिंह कहते हैं आंख मारे, नेहा कक्कर और कुमार सानू भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आंख मारे। अब आंख मारे या ना मारे, गाड़ी चलाते वक्त आंखें कम मारें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक आंख मारने के चक्कर में जो है दूसरी आंख अगर कमजोर हो तो फिर मतलब गाड़ी लग भी सकती है, लेकिन स्पीकर का वॉल्यूम ऊपर जरूर जा सकता है। एंजॉय द सॉन्ग, एंजॉय दिस ऑलमोस्ट टुडे इज ट्यूजडे बट लुक्स लाइक अ फ्राइडे, लॉन्ग वीकेंड टाइप ऑफ फीलिंग आ रही है, तो एंजॉय द सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज कीजिए 2026 GV80 सिर्फ 3.9% से अप टू 39 मंथ्स तक। Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue, End John Street, Markham. We speak your language. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
3: अच्छी, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुल्चे, पाव भाजी, अमृतसरी कुल्चे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
5: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रोकर यूनियन से रितेश पुरी जी हमारे साथ हैं, ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस में एक्सपर्ट हैं, और इफ यू आर लुकिंग फॉर इंश्योरेंस एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट रेट्स, यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट कवरेजेस, कवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। रितेश जी को 4372378068 पे आप कॉल कर लें। रितेश जी, आपका स्वागत है।
7: गुड आफ्टरनून सनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से जुड़कर।
6: सेम ईयर ब्रदर, सेम ईयर। चलिए कुछ आपसे सवाल रितेश पूछते हैं जो हमारे लिसनर्स के दिमाग में कई बार आते हैं, लिसनर्स हमें पूछते हैं, हम आपको आगे पूछ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि व्हाई शुडन पीपल फोकस ओनली ऑन गेटिंग द चीपेस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि देखिए आम फोकस हमारा चीपेस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही होता है, पर हमारे एक लिसनर ही ये पूछ रहे हैं कि फोकस क्यों नहीं होना चाहिए सिर्फ चीपेस्ट इंश्योरेंस पर।
7: देखिए सनी जी, आज के टाइम में जैसी इकोनॉमी भी बिहेव कर रही है तो सबको होता है कि यार हम थोड़ा पैसा थोड़ा सेव करें, है ना। तो वो अपनी कवरेज को नहीं समझते, उनको बस लाइक मुझे भी जब कॉल्स आती हैं तो मुझे बोला जाता है कि हमें सबसे लाइक प्रीमियम और कम करके दो, बट कोई कवरेज के बारे में बात नहीं करता। और अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल एक घर आपने बना लिया है बट अंदर कोई कमरे, कोई किचन, कुछ भी नहीं है, तो बाहर से तो बहुत सुंदर घर लग रहा है बट अगर आप एक बार अंदर चले जाते हो तो वो सिर्फ खोखला रह जाता है। तो ऐसे ही एक इंश्योरेंस जो चीप है बट उसमें कवरेज प्रॉपर नहीं है, उसका भी ऐसा ही बिहेव होता है कि जब टाइम आता है तो आपको कुछ मिलता नहीं है और आप पैसे भी लग रहे हैं, आपके हार्ड अर्न मनी लग रही है उसके ऊपर, वही 150 बचाने के चक्कर में हम वैसी इंश्योरेंस ले लेते हैं जो किसी काम की नहीं होती,
6: वो बस तो नाम की है।
7: बस हाँ, सिर्फ नाम की आपने एक पॉलिसी ले ली है। तो इसलिए हमारा हमेशा यही गोल होता है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपका सिर्फ गोल है कि चीप पॉलिसी चाहिए तो हमें प्लीज कॉल ना करें, बिकॉज हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपका प्रीमियम भी कम हो एट द सेम टाइम आपको कवरेज प्रॉपर मिले।
6: बिल्कुल, ये सही बात है कि ऐसा ना हो कि जैसे रितेश कह रहे हैं कि भाई $15-50 बचाने के चक्कर में बाद में जब एक्सीडेंट होता है तभी इन बातों का पता चलता है और तब तक टू लेट हो जाती है, गाड़ी ऑलरेडी निकल जाती है प्लेटफॉर्म से। 4372378068 होम ऑटो कमर्शियल इंश्योरेंस में बेहतरीन आपको इंश्योरेंसेस दिलवाते हैं विद सम बेहतरीन कवरेजेस। रितेश, क्या अगर फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देके ये सवाल पूछ लेता हूं कि कई बार क्या होता है, कोई बंदा रहता ब्रैम्पटन में है, उनको पता है कि भैया यहां पे ऑटो इंश्योरेंस थोड़ी सी हाई है, वो अपने किसी रिश्तेदार का एड्रेस किचनर का दे देता है, सो कैन गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन योर इंश्योरेंस एप्लीकेशन रियली इफेक्ट योर क्लेम, या फिर आप बच जाते हैं?
7: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ऐसे काफी मुझे कॉल्स आते हैं तो वो कहते हैं कि ये एड्रेस डालकर देख लो, वो एड्रेस डालकर देख लो, बट इससे जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं. क्योंकि होता क्या है कि आजकल इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती है जब भी कोई क्लेम आता है, तो उनको अगर थोड़ा सा भी भनक लग गई कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, एड्रेस दिया था, या जो किलोमीटर शो किए गए, जो आपका या फिर जो आपका लाइसेंस एक्सपीरियंस है वो सही नहीं है, तो आपका क्लेम तो डिनाई होगा ही होगा, तो उसी टाइम वो आपकी पॉलिसी भी कैंसिल कर देते हैं और फिर आपको हाई रिस्क मार्केट में जाना पड़ता है. उसमें क्या होता है कि आपको फिर जो पॉलिसी मिलती है उसमें आपको और भी ज्यादा पे करना पड़ता है. सो बेटर है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें, सही कवरेज रखें, तो अगर आपको 500 भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं एटलीस्ट आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा कि यार अगर कल कोई क्लेम आ गया तो मेरी
6: रितेश, क्लेम गलत इन्फॉर्मेशन देने पर क्लेम डिनाई भी हो सकता है?
7: हाँ जी बिल्कुल जी, डिनाई होता है. अगर अगर आप सपोज आपने कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो बट आप एवरीडे कम्यूट करते हो और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये बात पता लग गई कि आप एवरीडे कम्यूट कर रहे हो तो दे आर गोइंग टू डिनाई योर क्लेम.
6: अच्छा, देखिए एक नई चीज पता चल गई दोस्तों. 437-237-8068. रितेश जी का ऑन एयर आना यही फायदा होता है. अलका जी, रितेश जी जब ब्रोकर यूनियन से ऑन एयर आते हैं तो कई चीजों के बारे में हमें जानकारी, फ्री की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. आखिरी सवाल आपसे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. रितेश जी, व्हाई डू सो मेनी पीपल फाइंड आउट दे डोंट हैव द राइट कवरेज ओनली आफ्टर एन इंसिडेंट? मतलब बाद में ही कैसे पता चलता है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें.
7: सनी जी, बात वही होती है कि जब तक आपका चल रहा है ना, जो आपने पॉलिसी ली हुई है तब तक तो सब सही है, बट एक जब एक कोई झटका लगता है ना तो ही हमें याद आता है कि यार क्या ये कवरेज है मेरे पास कि नहीं है. अब जैसे नई व्हीकल हम निकालते हैं तो अब देखने को एक छोटी सी कवरेज होती है, ऑप्शनल डेप्रिसिएशन वेवर कवरेज. ठीक है, अब कई लोग इसको स्किप कर देते हैं. अब नई गाड़ी है, हो सकता है चोरी भी हो सकती है, कल कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उस केस में आपने अब बहुत ज्यादा उस पर स्पेंड की हुई है, लाइक आपकी हार्ड अर्न मनी लगी हुई है. बट अगर आपके पास ये कवरेज नहीं है तो आपको व्हीकल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिलती है, नॉट दी एक्चुअल वैल्यू. तो ये भी एक लाइक डिफरेंस इसका लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हो सकता है. सो बेटर है कि आप अपने ब्रोकर को कॉल करिए, आप समझिए कि जो आपको कवरेज मिल रही है वो प्रॉपर है कि नहीं, क्या ऑप्शनल कवरेजेस ऐड हो सकती हैं ताकि आपको फुली प्रोटेक्शन मिले.
6: बिल्कुल, और रितेश जी की बात हर तरीके से सही है और सत्य है कि भाई ये हमें पता तभी चलता है. और ब्रैम्पटन में या जीटीए में तो आजकल एक्सीडेंट होना इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ द हैट, यू नो, यू डोंट नो, आपकी गलती नहीं भी होती, एक्सीडेंट हो जाता है. बट उस वक्त अगर आपको आपकी कवरेजेस का पता चले तब तक तो टू लेट है. कई बार आपको यू नो, आप काम पे नहीं उसके बाद जा सकते, पर आपके पास फिर इनकम का सोर्स ख़त्म हो जाता है. अब उस पर कवरेज थी या नहीं थी, इफ़ यू आर अनअवेयर ऑफ इट, मैं तो कहूँगा ब्रोकर यूनियन के रितेश जी, अलका जी को कॉल कर लें, इनकी टीम आपको असिस्ट करेंगे. आपकी रिन्यूअल आ रही है, कॉल देम 437-237-8068. और दूसरी तरफ मैं ये बता दूं कि रितेश जी, अलका जी, ब्रोकर यूनियन की टीम एज वेल एज इंडस्ट्रियल अलायंस से अमन मेहता जी की टीम जो है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ बारबेक्यू और विच इज़ ऑन जुलाई 18th. ये 241 क्लेरेंस स्ट्रीट फ्रॉम 12 to 4 PM होगा. हमारे सारे लिसनर्स ने ज़रूर पहुंचना है. अमन जी से मुलाकात होगी, अलका जी, रितेश सबसे मुलाकात होगी, और आप अपने परिवार के साथ इस अमेजिंग बारबेक्यू को भी इंजॉय करेंगे विद द इंटायर टीम ऑफ अमन मेहता, अलका जी एंड रितेश. रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपका नंबर एक बार फिर से दे दूँ, 437-237-8068. बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ वंडरफुल कैनेडा डे.
7: Thank you, brother.
6: 4137-237-8068. प्यारा सा गीत आपको सुनाएंगे और choleBhature.ca पर एक चक्कर जरूर लगा लीजिए. कैनेडा डे के मौके पर चार लोकेशंस हैं, दिल्ली वाले छोले भटूरे ऑथेंटिक. मुझे कल किसी हमारे लिसनर ने पूछा था कि भाई दिल्ली वाले छोले भटूरे कैसे होते हैं. मैंने कहा उसके लिए choleBhature.ca चले जाओ, क्योंकि अगर आप दिल्ली नहीं गए तो इतने दूर तो आप जा नहीं सकोगे. एक बार choleBhature.ca की एक कोई भी एक लोकेशन पे जाओ, 2 in Brampton, 1 in Vaughan, 1 in Mississauga, आपको पता चल जाएगा ऑथेंटिक दिल्ली वाले छोले भटूरे कैसे होते हैं. डाइन इन टेकआउट ऑप्शन हर जगह अवेलेबल है. एंड छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बहुत ही जल्द आते हैं वापस। आगे चलकर अतीक खान साहब भी हमारे होंगे साथ।
8: आखिर एक ही तो जिंदगी थी, वफाएं किस किस से करते, अपने आप से, अपने सपनों से, अपनी काबिलियत से, अपनी सच्चाई से, या दूसरों की सोच से, या फिर रास्तों पे आने वाली रुकावटों से, या फिर रास्तों पे आने वाली कुछ रुकावटों से।
1: Don Valley North Hyundai अब loyalty offers सभी customers के लिए extend कर रहा है। पाइए 1% lease rate reduction, 0.5% finance rate reduction और $500 cash purchase incentive. Plus, Kona EV पर stackable cash up to $2,500 तक का फायदा। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit करें donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Avenue और Denison Street, Markampur. A proud member of Wayne's Auto Group.
9: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
5: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से परिवारों को साइड इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, श्योरिटी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मिनिमम $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। फ्री सेमिनार्स अटेंड करें हर सैटरडे आफ्टरनून। मेक श्योर प्लीज मेक योर अपॉइंटमेंट, वॉक इन ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है सेमिनार, एंड कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters 289-748-4040 289-748-4040.
10: Another Don Clean with the Don Ducks.
11: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
12: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
11: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
12: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
11: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
12: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
11: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
10: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable, apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markhamper. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
13: बड़ा चाह सी के पहला प्यार हुंदा फिर व्या।
14: तू किदे नाल प्यार करना?
13: थोड़े नाल। अगले जन्म च की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
14: ये ता है, उन्हां च व्या नहीं हुंदा, उन्हां च कल्ला प्यार हुंदा।
15: जानवर किसे थां दे।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में लिमिटेड टाइम के लिए. एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक. यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक. इस साल की जबरदस्त ऑफर एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर. कॉल करें donvalleynorthlexus.com या विजिट करें इन पर्सन. A proud member of Wind Auto Group.
2: कोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है. बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से. कांटेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. और अतीक खान साहब हमारे साथ हैं जो कि एक लोकल डेवलपर हैं, बिल्डर हैं और ही इज बीन डूइंग दिस इन सदर्न ओंटारियो. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहे हैं सिंस ईयर 2000 एंड ये क्या है 2026. सो आई गेस ही इज डूइंग समथिंग एब्सोल्युटली राइट, समथिंग ग्रेट. एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसको इन्होंने जन्म दिया है और ऐसा लगता है कि वो बिजनेस कॉन्सेप्ट सुपर हिट साबित हुआ है सबके लिए. ऑब्वियसली बिकॉज ही इज बिन डूइंग इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स ओवर 2.5 decades. और अतीक भाई का नंबर नोट करें 416-666-2745. आज सिंपल से सवाल पूछेंगे इन रिगार्ड्स टू दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड किस तरह से हमारे लिसनर्स जो हैं बेनिफिट कर सकते हैं, दे कैन मेक मनी, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ कैसे रह सकती है. एंड ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बार बार मुझे लगता है अतीक भाई को हर कोई पूछता होगा, द प्रोज ऑफ ओनिंग अ लैंड वर्सेस ओनिंग अ प्रॉपर्टी, इसको लेकर भी आज अतीक भाई का जवाब लेंगे. ध्यान से सुनिएगा सेगमेंट को. अतीक भाई आपका स्वागत है.
4: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपके लिसनर्स को गुड आफ्टरनून.
3: गुड आफ्टरनून. सारे के सारे सवालों का बौछाड़ जो है मैंने आपकी तरफ कर दिया है. अब आपका काम है अतीक भाई एक एक करके उन चीजों को शुरुआत से एक्सप्लेन करना, बिजनेस कॉन्सेप्ट को किस तरह से हमारे लिसनर्स के पैसे जो हैं किस तरह से दे कैन बेनिफिट, हाउ इफ द इन्वेस्टमेंट इज सेफ और नॉट. एवरीबडी हर कोई ये सोचता है. और आप एक चीज के बारे में बार बार बात करते हैं, द प्रोज ऑफ ओनिंग अ लैंड वर्सेस ओनिंग अ प्रॉपर्टी, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें.
4: तो सनी साहब, सबसे पहले मैं लोगों को ये बता दूं कि लैंड और प्रॉपर्टी में फर्क क्या है. प्रॉपर्टी एक्चुअल में एक कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर होता है और लैंड एक खाली लैंड है. मेरा काम होता है, मैं सिटी के ऑक्शंस, टैक्स लीन, फैमिली डिस्प्यूट्स, रिसीवरशिप के केसेस में वो प्रॉपर्टी पे हाथ डालता हूँ जिसकी मार्केट वैल्यू या असेस्ड वैल्यू करंट मार्केट से कम हो. तो उसमें आपको फायदा ही होता है कि लिटरली आप यूं समझ लीजिए कि डॉलर के आप 50 सेंट्स पे कर रहे हैं और आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है. आप कोर्ट में फीस जमा कराते, आप सिटी में फीस जमा कराते एंड यू बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. अब आगे चल के क्या होता है, जो आपने प्रॉपर्टी अब खरीद ली उसको आप सिटी से अप्रूव कराते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए
3: जी,
4: और वहां पर आप पैसा बनाते हैं. तो ये है सिंपल सा हिसाब किताब. प्रॉपर्टी में चूंकि आपका एसेट लग गया है, आपने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की हुई है, उसकी अमाउंट ज्यादा होती है और वो अपनी वैल्यू कभी कभार गिरा देती है जैसे आजकल हो रहा है. सो दैट्स अबाउट इट
3: जी. अब इसमें इन्वेस्टमेंट की जो एक एक देखिए, ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पे जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिस प्रॉपर्टी में भी होता है एक बकायदा पेपर वर्क होता है, लॉयर इन्वॉल्व होता है. इन्वेस्टमेंट जो होती है या जो हम प्रॉपर्टी या जो हम लैंड खरीदते हैं वो बिल्कुल एक सेफ इन्वेस्टमेंट है. बट इस जिसको लैंड के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, शायद मेरे जैसे को, और मैं चाहता हूं कि भैया इस लैंड का मैं भी लैंड ओनर बनूं, हाउ सेफ इज माय इन्वेस्टमेंट एंड हाउ मच डू आई एक्चुअली नीड टू पोर इनटू द पूल ऑफ मनी.
4: बिल्कुल सही है. तो सनी साहब ऐसा होता है कि इस प्रोसेस में जाने से पहले, चूंकि मेरी एक फील्ड है अकाउंटिंग की, मुझे नंबर्स का सेंस है, मैं समझ सकता हूँ, We do underwriting of every single project that we start. और underwriting में आपको पता चल जाता है, मैं एक example दे रहा हूँ, मेरी बातों को example में समझिएगा कि मान लीजिए 5 लाख की एक land की value निकल रही है, उसके ऊपर आप land transfer tax देंगे, उसके ऊपर आप lawyer की fees देंगे, उसके ऊपर आप architect, engineer, planner, surveyor, reports वगैरह कराएंगे, यूँ समझ लीजिए वो balloon payment 5 लाख से उठ के 7 लाख तक आ जाती है. So this is called the project value. तो मैं आपके पास आता हूँ और आपको बोलता हूँ सली साहब मैं अपने 3-4 लाख डॉलर लगा रहा हूँ, आप अपने 3-4 लाख डॉलर लगा दीजिए और हम दोनों 50-50 के ओनर बनेंगे. इस प्रॉपर्टी को हम दोनों खरीदेंगे, हम दोनों का नाम इसके टाइटल पे होगा, इसकी फ्यूचर में इसकी क्लास चेंज कर देंगे, इसकी जोन चेंज कर देंगे, इसका यूज चेंज कर देंगे. तो मान लीजिए आपने एक रॉ लैंड खरीदी है और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि साल 1.5 साल के बाद ये लैंड अप्रूव हो गई है एक मेडिकल बिल्डिंग के लिए, ये लैंड अप्रूव हो गई है गैस स्टेशन के लिए, तो वो 5 लाख की वैल्यू बढ़ के 1 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन हो जाएगी और वही हमारा प्रॉफिट है
3: जी. एंड 416-666-2745 ये तो हो गए जो मैंने सवाल पूछे थे अतीक भाई को. और ये सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं होते, हमारे लिसनर्स के होते हैं. लेकिन अतीक भाई जाने से पहले आप यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने इस साल के जा चुके हैं और कई चीज़ें हम दिमाग में सोचते हैं एज इंडिविजुअल्स, एज अ फैमिली, कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने यहाँ पे डालने, इतनी ग्रोथ होगी, इतना से यू नो फैमिली के लिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं एंड यू नो वी ऑल वांट इट. आप क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले टू ऑल दोज पीपल दैट आर लिसनिंग टू यू?
4: सर आधे घंटे का टाइम निकाल कर आप मेरे ऑफिस में आइए, मेरे साथ बैठें और पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ 2026 के जो 6 महीने गुजरे हैं इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाया

0: पीनट्स में आप ये 6 एकड़ की लैंड खरीदेंगे, एक हेक्टर का मतलब होता है तकरीबन कोई 2.43 एकड़, यानी एक हेक्टर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो अगर आप उसको हेक्टर की बेसिस पे निकालते हैं, क्योंकि सिटी या म्युनिसिपैलिटी हेक्टर्स में चल रहा होता है, इसके ऊपर हर हेक्टर पे 27 घर बन सकते हैं, यानी इस 5 एकड़ की लैंड के ऊपर आप तकरीबन 60-65 घर बना सकते हैं। और आपकी लैंड की कॉस्ट, वो जैसा मैंने कहा, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लिटरली फ्री पड़ती है। इससे अच्छे प्रोजेक्ट मैं नहीं ला सकता या आपको अपने लाइफ टाइम में सुनने को नहीं मिलेंगे। सारा काम शुरू होता है एक फोन कॉल से। सनी साहब, जो इस 6, 8, 10, 12 महीने में आपने पैसे अगर कहीं लॉस किए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी या प्राइसेस का, दिस इज योर टाइम टू रिकवर योर लॉसेस, और वो मैं आपको करके दूंगा। 416-666-2745।
1: जितने कॉन्फिडेंस से अतीक भाई चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ बिन डूइंग इट फॉर 26 ईयर्स, यू कैन टेक दैट अवे फ्रॉम हिम, उतने ही कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूँ दोस्तों, जो अतीक भाई ने कहा कि यू कैन एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स, 60 मिनट्स भी नहीं, मैं कहूँगा आधा घंटा आप अपनी ज़िंदगी में से निकालिए और अतीक भाई से मुलाकात करें। वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, पर मुलाकात इज़ बेटर आई वुड थिंक, एंड उनके ऑफिस में, एंड सारी क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि किस तरह से आप कम से कम 20-25% जो है ईयरली आपका ये प्रॉफिट हो सकता है। 416-666-2745, 416-666-2745, अतीक भाई का डायरेक्ट नंबर है। अतीक भाई, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय द कैनेडा डे विद योर फैमिली।
0: Absolutely, sir. आपको और आपके listeners को भी thank you so much for your time.
1: Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। 416-666-2745, 416-666-2745। और इस प्रॉपर्टी के बारे में July 15th वाले ऑक्शन, सिटी के ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी जो अक्वायर करने वाले अतीक भाई, उन्होंने कहा कि जो लोग कॉल करेंगे उन्हें ही पता चलेगा। इट्स अ कॉर्नर लॉट सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट इज एक्सप्लेनिंग, जहां पर एक हेक्टर तक की लैंड he's going to get. 416-666-2745. और अनु मलिक का म्यूजिक अमीर जमाल के की आवाज में, लिरिक्स भी उन्हीं के हैं, एंड इट्स फ्रॉम द मूवी मर्डर, इमरान हाशमी, मर्डर सीरियल के सर। ये कुछ चीज़ें हैं जो जब फिल्म आई थी, दीज आर थिंग्स दैट गॉट एसोसिएटेड विद, सिनोनिमस विद एन एक्टर कॉल्ड इमरान हाशमी। चलिए, एनीवेज, आजकल तो हर कोई सीरियल के सर बना हुआ है। एनीवेज, दिस वाज बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट 22 ईयर्स अगो, जब ये फिल्म आई थी, भट्ट कैंप की तरफ से ये फिल्म को बनाया गया था। इंजॉय, अनुराग बासु की डायरेक्शन में इस फिल्म का गीत इंजॉय करें।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें wayneautogroup.com।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए ऑल डेट सॉल्यूशंस मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577 416-671-0577 alldebtsolutions.ca
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: ਕਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਮਦਾਰ ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ ਇੰਜਨ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਲ ਹਾਊਸ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ ਹਰ ਖਾਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਪਾਵਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $115 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.89% APR ਤੇ $4900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ
8: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
9: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं होम एंड ऑटो इंश्योरेंस में अगर आप भारी बचत करना चाहते हैं गुरविंदर बामरा जी को कॉल कर लीजिए 647-303-3207 पर 647-303-3207 ऑल स्टेट की गुरविंदर बामरा रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं राज जी से करते हैं बातचीत राज जी आपका स्वागत है
10: जी नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आपको और प्यारे लिस्टनर्स को वेरी गुड आफ्टरनून
9: जी आपको भी
10: जी हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि वेदर वो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के यंग कपल्स हैं जो होम ओनरशिप में एंटर होना चाहते हैं या कोई भी इंडिविजुअल जो रियल एस्टेट में स्टेप इन कर रहा है उसके लिए कोई ऐसा प्राइस पॉइंट हो कि अफोर्डेबल भी हो और मेक सेंस करे और उनको इन द लॉन्ग टर्म उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी नजर आए जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल हो और कल को वो आपके लिए एक जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक नेस्ट एग बन जाए इन द फ्यूचर इसी को ख्याल में रखते हुए साउथ बैरी में एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है फ्री होल्ड टाउन्स की लोकेशन अगर मैं बताऊं 3 मिनट्स टू साउथ बैरी गो स्टेशन 5 मिनट्स टू ब्यूटिफुल लेक सिमको 5 मिनट्स टू डाउनटाउन बैरी एंड 3 मिनट्स टू हाईवे 400 इस लोकेशन पर आप होम ओनरशिप में एंटर हो सकते हैं 561,000 से प्राइस नेट ऑफ HST है और फ्री होल्ड टाउन्स हैं ये बहुत जबरदस्त 2 स्टोरी वाले विद अ ब्यूटिफुल फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड डिटेल्स अगर आप चाहते हैं कोई भी और क्वेश्चंस हैं हमें कांटेक्ट कर लें साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो के लिसनर्स के लिए मैं बता दूं एक स्पेशल पैकेज है अगर आप हमें साउथ बैरी के इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल करते हैं सनी जी ये हमारा वादा है और हम हमेशा कहते हैं अगर आप सेल करने की सोच रहे हैं फ्री होम एवेल्युएशन चाहते हैं जस्ट कॉल अस एंड से साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो सनी जोशी के लिसनर्स हैं हम एंड वी ऑलवेज प्रोवाइड दैट फ्री ऑफ चार्ज, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है.
9: एक्सेलेंट,
10: बहुत बहुत शुक्रिया. विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून.
9: बहुत बहुत शुक्रिया राज जी. हैव अ वंडरफुल कनाडा डे एंड मुलाकात होती है अब आपसे थर्सडे को.
10: सनी जी, जस्ट आपने बहुत अच्छा रिमाइंडर दिया. कनाडा डे हम सब के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है. एवरी ईयर हम बारबेक्यूज करते हैं, समर को एंजॉय करते हैं, फैमिली कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमारी टीम की ओर से हम हमेशा कहते हैं प्लीज बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, हैव लॉट्स ऑफ फन. And happy Canada Day to everyone. Thank you.
9: जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. 6478661086. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
10: Thank you, sir.
9: 11.8 million viewers tuned into Canada's win. ये जो गेम थी भाई, देखने वाली गेम थी जो हमने संडे को देखी है एंड जिसमें साउथ अफ्रीका को हराया है. मोस्ट वॉच नॉकआउट गेम आउटसाइड ऑफ द फाइनल्स, मोस्ट वॉच नॉकआउट गेम रही है ये कनाडा में जितने लोगों ने देखा है. फाइनल मैच इन टोरंटो ऑन थर्सडे एंड पोर्चुगल क्रोएशिया, सेल आउट क्राउड है और हाई प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस ऑफ द टिकट है, हैज गॉन अप टू $30,000 $30,000 एंड सबकी निगाहें हैं इस गेम पर. चीपेस्ट रीसेल सीट्स आर नियरली एट $3,000 एज वेल, सो दैट्स द चीपेस्ट रीसेल सीट्स. एंड चलिए लेते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक, एक प्यारा सा गीत भी आपको सुनाना है एंड आएंगे बहुत ही जल्द वापस. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से सुल्तान जी की कनाडा डे वाली डील्स भी आप तक पहुंचाएंगे. बाहर का तापमान हो चुका है 32 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 41 डिग्रीज.
4: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा. लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज कीजिए 2026 GV80 सिर्फ 3.9% से अप टू 39 मंथ्स तक. बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. वी स्पीक योर लैंग्वेज. Genesis Markham, doing luxury away. A proud member of Vane's Auto Group.
11: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda।
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: pujahut.com।
0: जय श्री राम।
3: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcbc.info और 384 Finlay Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में। लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है। विद अ 3% रेट ब्रेक इस साल की जबरदस्त ऑफर। एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें donvalleynorthlexus.com या विजिट करें इन पर्सन। अ प्राउड मेंबर ऑफ विंस ऑटो ग्रुप।
3: की थानू किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ले मॉर्टगेज दी लोड है, जिवें फर्स्ट और सेकंड मॉर्टगेज, परचेज और रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हो,
4: तब फिक्र क्यों कर दे हो? नीलम सिद्धोव कुल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
3: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
4: इना कुल नहीं, ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स।
3: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
4: आज ही कॉल करो नीलम सिद्धोव नु
3: 6477398710। License number M200034504.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ek var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी से सुखी कौर जी हमारे साथ हैं, अ रियल्टर दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ नॉलेज इन व्हाट शी डज। और जब जब सुखी जी आती हैं, एक तो हमें रियल एस्टेट की अपडेट पता चल जाती है हमारे लिसनर्स को कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है एज अ बायर सेलर, एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर। एंड उसके ऊपर से सबसे सोने पे सुहागा ये होता है कि सुखी जी हैज़ अमेजिंग लिस्टिंग्स जो वो शेयर करती हैं। एंड उन्हीं एक लिस्टिंग, हो सकता अनेक लिस्टिंग, जो पांच लिस्टिंग्स हो उसमें से वो एक आपका ड्रीम होम हो, और हो सकता हमारे कई लिस्टनर्स ने उसे अपना ड्रीम होम बनाया भी है। सो ध्यान से सुनिएगा 6474087066। सुखी जी आपका स्वागत है।
7: थैंक यू सो मच सनी जी। सबसे पहले तो आपको एंड हमारे सभी लिस्नर्स को वेरी हैप्पी ट्यूजडे। कैनेडा डे इज कमिंग, आई होप everybody का plan जो in place, so mostly people like to do picnics, especially in this amazing weather. Today, yes. It truly feels like summer is here.
6: Absolutely, this is summer heat wave है, लेकिन nothing to complain about because we've gone through सुखी जी that weather जहाँ पे -20 था, तो अब ये जो भी है it's beautiful. Canada Day की आपको और आपके परिवार को भी you know best wishes. And Canada Day के मौके पर today is June 30th, 6 महीने we've left behind, 6 महीने 2026 के सामने हैं। Real estate के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
7: सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि real estate market honestly it is moving super fast now. Properties are going for multiple offers. घरों पर हम देख रहे हैं कि पहले की तरह एक एक property पर going के आपको 8-8 10 sites आती हैं।
6: जी।
7: Prices इतना shoot नहीं हो रहा है। Price is okay, but again, market has started to move. Especially जो घर unavailable हैं। So having said that, I have some things जो कि आपको आपके budget में as a first time buyer or as a बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि property is good. It's in Milton में property है, जो Trafalgar जो area है उसकी नजदीक है, 3 मिनट की drive पर आपको ये semi detached घर मिल सकता है, जो कि 4 bedroom का semi detached है, 1 bedroom की basement with separate entry. entrance and kitchen. बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, फुली अपग्रेडेड है, अंडर 5 years old ये घर आपका हो सकता है. इफ यू आर लुकिंग टू परचेज अ प्रॉपर्टी इन मिल्टन, राइट नाउ इज द टाइम. आई विल बी देयर दिस वीकेंड, ओपन हाउस में होंगे. कोई भी क्वेश्चन है, 1-4 आई विल बी देयर. यू वॉन्ट टू नो द एड्रेस, प्लीज गिव मी अ कॉल एट 647-408-7066, 647-408-7066.
6: जी,
7: अगर आपका कोई लिसनर ब्रैम्पटन में घर लेना चाहता है तो ट्रिनिटी मॉल एरिया में हमारे पास डिटैच प्रॉपर्टी है, 4 bedroom की. 4 bedroom का ये घर है, क्लोज टू ट्रिनिटी मॉल है, हाईवे 410 इज राइट देयर, गोल्फ कोर्स इज राइट देयर, रिवीन लॉट पर ये डिटैच कर 4 bedroom का आपका हो सकता है. 2 bedroom की फिनिश्ड बेसमेंट है विद कंसिस्टेंट आपको इनकम मिल रही है यहाँ से. अगेन, घर देखना चाहते हैं, अराउंड 3000 स्क्वायर फुट का ये घर है, देखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, रिवीन लॉट पर प्राइवेसी पर घर लेना चाहते हैं, 647-408-7066. और भी बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, डिपेंडिंग आप क्या ढूंढ रहे हैं. यू डोंट हैव टू जस्ट कॉल मी फॉर दीज प्रॉपर्टीज, यू कैन कॉल मी एंड टेल मी आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपकी नीड्स के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार
6: जी.
7: I can help you getting a house in Canada.
6: बिल्कुल बिल्कुल. एंड मैं यहाँ पे नंबर दे दूं सुखी जी का, 6474087066. दोस्तों याद रखें, सुखी जी के को जब वो आपको रिप्रेजेंट करती हैं एज योर रियल्टर, वेदर एज अ बायर और सेलर, शी हैज़ अ टीम ऑफ मॉर्गेज प्रोफेशनल्स दैट वर्क इन हर ऑफिस. लॉयर हो, अप्रेजल करवानी है, प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करवानी है, सब चीज़ें जो हैं सुखी जी और उनकी टीम करते हैं आपके लिए. यू डोंट हैव टू वरी. आपको बस ये पता होता है कि जिस दिन प्रॉमिस किया गया है ड्रीम होम की चाबियां आपके हाथ में होंगी, आपके हथेली में होंगी, तो दैट विल बी द डे. रेस्ट एवरीथिंग इज डन बाय सुखी कौर एंड द टीम. 6474087066, 647-408-7066. इन प्रॉपर्टीज की जानकारी के लिए सुखी कौर जी से संपर्क कर ले अभी के अभी. सुखी जी, हैव अ वंडरफुल कनाडा डे. अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात.
7: Thank you, G. You as well.
6: Thank you, G. 647-408-7066. क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा पर नेम ब्रांड सनग्लासेस पर बहुत भारी सेल चल रही है, एक तरह चक्कर लगाइए ब्रैम्पटन एंड जॉर्जटाउन वाले लोकेशंस पर एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सेल. एंड होम एंड ऑटो इंश्योरेंस में बचत करना चाहते हैं, भारी बचत करना चाहते हैं पैसे की, रिन्यूअल कमिंग अप, कॉल गुरविंदर जी. गुरविंदर जी काम करती हैं ऑल स्टेट के साथ. 647-303-3207 फॉर होम एंड ऑटो इंश्योरेंस, गुरविंदर बामरा. 647-303-3207. कुमार सानू कहते हैं कुछ ना कहो, पर कुछ ना कुछ तो कहेंगे क्योंकि फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी, ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, इंजॉय करें.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
3: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
4: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Kanda. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 or 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, which serve 30-plus locations. 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
5: ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਿਗਾਹ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਪਾਲ ਸੈਗਲ 416-940-0624 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ safetyandsecuritysolutions.ca। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ।

कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, 416-451-0040, और विजिट स्काई

0: जोशी।
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे अब लॉयल्टी ऑफर सभी कस्टमर्स के लिए एक्सटेंड कर रहा है। पाइए 1% लीज रेट रिडक्शन, 0.5% फाइनेंस रेट रिडक्शन और $500 कैश परचेस इंसेंटिव। प्लस कोना ईवी पर स्टैकेबल कैश अप टू $2,500 तक का फायदा। एट डॉन वैली नॉर्थ हंडे वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट करें donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Avenue और Denison Street, Markham पर। A proud member of Wayne's Auto Group।
2: डॉन वैली नॉर्थ हंडे, doing business your way.
3: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
4: Welcome back, friends, and you're listening to South Asian Unlimited Radio. और आज बात करते हैं एक बहुत ही amazing सी फिल्म रामलखन। 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने, written by अनवर खान and screenplay by राम केलकर। रामलखन में बहुत ही एक जबरदस्त स्टार कास्ट थी जिसमें राखी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, डिंपल कपाड़िया, माधुरी दीक्षित एंड ऑफ कोर्स अमरीश पुरी। सपोर्टिंग कास्ट में परेश रावल, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, सईद जाफरी एंड सतीश कौशिक जैसे अमेजिंग आर्टिस्ट थे। म्यूजिक ऑफ द फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने इसके लिखे थे लिरिक्स। इसका बजट था अबाउट 28 million rupees, including the production and marketing costs. 27th Jan 1989 on Republic Day weekend ye film release hui thi and it emerged as a major critical and commercial success, earning $2.2 million worldwide, becoming the second highest grossing Bollywood film of 1989. Aaj bhi is film ko ek pyare se geet ke liye bar bar jana jata hai, My Name is Lakhan. Aur ye film aaya gaya tha on Anil Kapoor with his trademark डांसिंग स्टाइल। एट द 35th फिल्म फेयर अवार्ड्स राम लखन को 9 nominations मिले थे, including बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड 2 अवार्ड्स जीते थे राखी ने फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंड बेस्ट कमेडियन फॉर अनुपम खेर एंड सतीश कौशिक। चलिए इसी फिल्म का एक ब्यूटिफुल सा गीत आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: Don Valley North Hyundai अब लॉयल्टी ऑफर सभी कस्टमर्स के लिए एक्सटेंड कर रहा है. पाइए 1% लीज रेट रिडक्शन, 0.5% फाइनेंस रेट रिडक्शन और $500 कैश परचेस इंसेंटिव. प्लस कोना ईवी पर स्टैकेबल कैश अप टू $2,500 तक का फायदा. एट डॉन वैली नॉर्थ हंडे, वी स्पीक योर लैंग्वेज. विजिट करें donvalleynorthhyundai.com, वुडबाइन एवेन्यू और डेनिसन स्ट्रीट, मार्कम पर. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.
2: डॉन वैली नॉर्थ हंडे, डूइंग बिजनेस योर वे.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरी थिंग ऑटोमोटिव. चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम. हर जर्नी को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज. ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर. Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें wayneautogroup.com.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Genesis Markham par luxury milti hai, ek expectation se bhi zyada. Lease kijiye beautifully designed 2026 G70, sirf 1.9% se. Ya lease kijiye 2026 GV80, sirf 3.9% se up to 39 months tak. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue, End John Street, Markham. We speak your language. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं. जून 30th हो गई है, 6 महीने गॉन, 6 महीने आगे हैं, और काफ़ी स्ट्रेसफुल 6 मंथ्स रहे हैं मुझे लगता है ग्लोबली, पूरी दुनिया के लिए, विद ट्रम्प टैरिफ्स एंड द मिडल ईस्ट क्राइसिस, यूक्रेन रशिया सिचुएशन, वर्ल्ड की चीज़ें जो हैं सबको इफेक्ट करती है. देयर जस्ट हैपेंड अ होम इन्वेजन इन ब्रैम्पटन यस्टरडे एंड मोर पेन एट द पम्प्स. ये जो होम इन्वेजन की मैं बात कर रहा हूँ, कैसल मोर और गोरवे के इलाके में हुआ है. सम शॉट्स फायर्ड एंड कुछ टारगेटेड शूटिंग भी बताई जा रही है. एंड इसके अलावा जो है, बाहर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस हो चुका है. व्हाट्स ओपन टुमारो, मोस्ट ऑफ द म्यूजियम्स, टोरोंटो जू, सीएन टावर, रिप्लीज एक्वेरियम, कुछ मॉल्स खुले रहेंगे, साइंस सेंटर खुला रहेगा. सो आप अपने परिवार के साथ इस 35 डिग्री वाले कल के वेदर को इन्जॉय कर सकते हैं विद योर फैमिली. एंड कैनेडा डे को आप इन्जॉय धूमधाम से कर सकते हैं. ब्रैम्पटन में फायरवर्क बैन है, सो डोंट try to do any of that kind of stuff. And so yeah, what's closed on Canada Day? Banks, government offices, libraries, LCBOs, all that stuff is closed. So yaad rakhein, government offices jo hain, everything is closed. And lots of fire displays ho rahe hain, free admission to the Rome on Canada Day. And Netherlands falls to Morocco on penalties, jiski wajah se jo hai Morocco aur Canada ki game hogi. So enjoy this mid week wala jo long weekend sort of a feeling hai. And pyare se weather ko bhi enjoy kare. Brampton TV Appliance ke Sultan ji se bhi baat cheet hogi. Sonu Nigam, Nindi Kaur ki awaaz mein, Yamla Pagla Diwana ka title track enjoy kare. I'll be right back.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है. 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हैं. हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है. $30,000 का जनरेटर 14x14 feet का पैड भी बनया है. 2 साल की नवी कॉटेज $100,000 की इनकम जनरेट करती है. 12x30 feet का डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है. मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है. पिछे पानी है, खूबसूरत है. क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा. बीच भी नजदीक है. जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222.
2: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में. लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक. यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है. विद अ 3% रेट ब्रेक इस साल की जबरदस्त ऑफर. एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर. कॉल करें DonValleyNorthLexus.com या विजिट करें इन पर्सन. A proud member of Wings Auto Group.
3: सुनदे हो, मेरे भरा दी अज फ्लाइट है इंडिया तो.
4: ओ याद है पर उनू कही कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे.
3: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खा ले. इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो.
5: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो. choleBhature.ca कॉल 9054582448.
6: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
7: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
8: Another Don Clean with the Don Ducks.
9: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
10: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
9: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
10: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
9: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
10: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
9: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
8: Dawn Platinum, the better grease getter.
11: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सरी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. सुल्तान जी हमारे साथ हैं. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकुसी एंड ब्रैम्पटन. ओपन 7 days a week 11 a.m. to 7 p.m. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान जी अमेजिंग डील्स लेके पहुंच चुके हैं, खासकर कैनेडा डे वाली अमेजिंग अमेजिंग डील्स. लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे टीवी सेक्शन पर, देखेंगे क्योंकि जहां पर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वी वॉन्ट द बेस्ट डील्स. वी ऑन मोर सो ऑन द 85-inch 98-inch बिग स्क्रीन टीवी. सुल्तान जी स्वागत है आपका.
12: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई
11: जी. सुल्तान जी, कैनेडा डे है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारे घर पे सबको चाहिए बिगेस्ट स्क्रीन टीवी विद द बेस्ट प्राइस, और आपसे बेहतर कौन ये दे सकता है?
12: बिल्कुल जी, कनाडा डे पे खास तौर पे सोनी ने बहुत ही शानदार प्राइस दी है. इस वक्त सोनी ब्रेविया थ्री $2300 इसकी प्राइस थी. 85 इंच सिर्फ $1599 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे अवेलेबल हुआ है. कनाडा डे स्पेशल सेल दी गई है सोनी ब्रेविया 3 पे. अगर कोई कस्टमर बिग स्क्रीन टीवी सोनी, क्योंकि ये हाई एंड टेक्नोलॉजी है जी, X1 प्रोसेसर के साथ सोनी अगर लेना चाहते हैं तो जरूर पहुंचे. मिनी एलईडी आपको मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे $1599 का 85 इंच. और अगर आप लेना चाहते हैं सैमसंग 98 इंच बिग स्क्रीन में $3500 वाला $1999 में मिलेगा. और $1999 भी आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो कनाडा डे की ये स्पेशल प्रमोशंस को मिस ना करें. 801 Bovade Drive West, just east of Chinkuzi on Bovade Haji, Brampton TV and Appliances, 55 inch, 399
11: में. Wow.
12: अगर आप 65 इंच लेना चाहते हैं, 63 इंच का 65 इंच आपको मिलेगा 699 में, इसकी $1,000 प्राइस थी. और अगर आप 75 इंच लेना चाहते हैं 12-13

0: 450 28 28 28 सुल्तान जी, टीवी सेक्शन में आपने कनाडा डे की सबसे बेहतरीन डील्स हमें दे दी हैं, लेकिन लेकिन अप्लायंस लॉन्ड्री में भी हमें कनाडा डे की सबसे बेस्ट बेस्ट बेस्ट डील्स आपसे चाहिए, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन पीपल आर एक्चुअली गेटिंग न्यू स्टफ इन देयर होम्स, इन देयर रेंटल प्रॉपर्टीज। बताइए उसमें क्या है।
1: होम अप्लायंसेस में भी सनी भाई 40% का डिस्काउंट है। वैसे होम अप्लायंसेस सेक्शन में 25% या 15% या 20% डिस्काउंट होता है, लेकिन 40% मैक्सिमम डिस्काउंट है जो ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस अपने कस्टमर्स को लेके दे रहा है जी, जिसमें फ्रिजडेयर गैलरी या प्रोफेशनल या बॉश जैसे जर्मन ब्रांड अगर आप लेना चाहें तो आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। सैमसंग ने भी कुछ एक बंडल पैकेजेस हैं जिसमें स्पेशल प्राइसेस दी हैं। हमारे पास इस वक्त फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, थ्री पीस किचन बंडल $5,000 वाला $29.99 में ऑफर किया जा रहा है। सिर्फ थ्री पीस किचन बंडल पे ही कस्टमर $2,000 सेव करेंगे। इवन वॉशर एंड ड्रायर लेना है, फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ, तो भी आपको $2,500 वाला $17.99 में मिलेगा। आप $800 फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर पे ही सेव करेंगे, जो कि हाई एंड प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर में है। इवन यहां तक कि आपको टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर लेना है तो $10.99 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर आपको $10.99 में मिलेगा, $1,700 वाला। तो $10.99 में ये पेयर है जी, वॉशर ड्रायर दोनों
0: जी,
1: लार्ज कैपेसिटी टब है स्टेनलेस स्टील में, फ्री डिलीवर होगा, 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहां तक कि अगर आपको बॉश का या फ्रिजडेयर गैलरी या प्रोफेशनल का या मोनोग्राम का बंडल पैकेज चाहिए तो बिल्ट इन किचन में भी ह्यूज सेविंग है 40% की, जो कि 5,000 से ऊपर बन जाती है, जिसमें बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वालवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटरटॉप फ्रिज है। $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा। जरूर विजिट करें जी, कनाडा डे पे लोएस्ट प्राइस गारंटी होगी, बिग डॉलर्स आप सेव कर सकते हैं। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। और हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, brampton appliances.com, ये वन वर्ड है, brampton appliances.com। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, एक तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी, एक आपको वेयर हाउस क्लियरेंस सेल का आइकॉन मिलेगा। जैसे ही आप इस आइकॉन को क्लिक करेंगे, आपको कुछ एक आइटम 40% और कुछ एक आइटम 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको डिशवाशर चाहिए, $1,000 वाली स्टेनलेस स्टील की डिशवाशर 50% डिस्काउंट आधी प्राइस पे $4.99 में मिलेगी। जरूर विजिट करें और हमारा रेफरेंस पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को, brampton appliances.com, 905-450-2828, 905-450-2828।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत, अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 647-863-1940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: क्या आप सुन रहे हैं?
1: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
1: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी आपके साथ और रेडियो टोरंटो कनाडा के आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो में आमिर और शिवानी की तरफ से गुड इवनिंग आप सभी को। और गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s और सुपर डुपर हिट मेलोडीज के साथ चलता है ये सफर आपके और हमारे साथ साथ। नंबर यही रहता है 416-303-3639। आज के शो में भी तो तमाम गाने शामिल रहेंगे जो आपके दिल के करीब हैं, जो आप हमेशा सुनना चाहते हैं, द हमेबल सॉन्ग्स, द हिट सॉन्ग्स। और इसी के साथ हमारे स्पॉन्सर्स के बेहतरीन मैसेजेस के साथ भी ये सजा धजा रहेगा आज का शो। और आज एक स्पेशल लाइव ऑन लोकेशन के तहत हम आपसे रूबरू होंगे, बहुत सारी स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और कहते हैं ना कि कभी कभी यूं ही चले आया करो दिल की दहलीज पर, कभी कभी यूं ही चले आया करो दिल की दहलीज पर, अच्छा लगता है यूं तन्हाइयों में तुम्हारा दस्तक देना।

0: चार मिनट का वक्त है साडी गली, और एक गली जो है आपको आज जाना है, और वो जो गली है वहां पे आमिर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और नंबर आप याद रखिए 4372643175। बेहतरीन और अच्छी क्वांटिटी वाली ग्रांट्स आपका इंतजार कर रही हैं। आमिर, वेलकम करते हैं आपका, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है वहां पर?
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, और मैं आपको बता दूं मैं कहाँ हूँ। सबसे पहले तो इस राज पर से पर्दा हटाया जाए, मैं इस वक्त यूनी ग्लोबल एडवाइजरी के ऑफिस में मौजूद हूँ, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड मिसिसागा। यहीं आपको पहुंचना है, और आज यहां पहुंचने की वजह बहुत खास है कि मैंने बड़ी मुश्किल से जो सीईओ है कंपनी के उनको इस बात के लिए राजी किया है कि जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है तकरीबन $400 के करीब बनती है, आज की तारीख में, आज की डेट में जो लोग इनरोल कराएंगे ग्रांट लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए, उनको $400 की वो फीस माफ कर दी जाएगी, वेव ऑफ कर दी जाएगी, उनको ये डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो इट्स सेविंग $400, एक बात। नंबर टू, अगर आप फैमिली ऑफ टू हैं, फैमिली ऑफ थ्री या फोर हैं, तो फंडिंग $70,000 से $1,00,000 तक मिल सकती है। आज जहां भी हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, घर में हमें सुन रहे हैं, किसी ट्रक में सुन रहे हैं, डिलीवरी ड्राइवर हैं आप, उबर में सुन रहे हैं, कहीं भी यू आर ट्यूनिंग अस इन, यहां पहुंचिए 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, क्योंकि यहां एक तो $400 की फीस मुकम्मल तौर पर आपको माफ कर दी जाएगी, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, नॉट अ सिंगल पेनी। मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, इनको आमादा किया इस बात के लिए कि ये जो इंतजामी अमूर की फीस है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फी है उसको वेव ऑफ कर दें, मुकम्मल तौर पर उसकी छूट दे दें। नंबर ये मिलाएंगे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए 4372643175। नंबर मैं दोबारा बता रहा हूं, एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पहुंचना है मिसिसागा में, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, दोबारा बता रहा हूं एड्रेस, यहां पहुंचिए, $70,000 से $1,00,000 तक की ग्रांट अवेलेबल है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये फीस लेते थे $400 वो भी आज छुड़वा दिया। आज की डेट में जो लोग भी इनरोल करेंगे ये $400 ऑन टॉप ऑफ दैट बचा लेंगे। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 4372643175। और नागपाल जी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। नागपाल जी, वेलकम टू द प्रोग्राम।
2: थैंक यू वेरी मच जी। एंड देन आप मान के चले, जैसे अभी मैं ऑफिस आ रहा था
1: जी,
2: आज गैस प्राइस सस्ता लगा हुआ है
1: जी,
2: दूर तक लाइन लगी पड़ी
1: है। यस।
2: तो जब हम 5 सेंट या मान ले $3 बचाने के लिए एक घंटा वेट कर सकते हैं, तो जब गवर्नमेंट फंडेड आप एजुकेशन प्रोग्राम करके गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है, आपके खाते में, मेरे खाते में नहीं, कितनी, $30,000 से $100,000 डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज। अगर आपकी इनकम कम है, कम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपने टैक्सेस खुद करते हैं, अनएम्प्लॉयड उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, आप PR, सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम $70,000 से कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, 2024 का भी गवर्नमेंट देख रही है, अनोए अभी अकेडमी के चल रहा है 25-26, इसमें 24 का देख जाता है, तो आप इस फंडिंग को हासिल कर सकते हैं। आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें, अपने घर के कंफर्ट से करें आप आसान से कोर्सेज, तालीम भी हासिल करें, हुकूमत से फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, जिसका आधा पोर्शन, अगर किसी की 80,000 बनती है ना फंडिंग
1: जी,
2: उसका आधा पोर्शन तो ग्रांट्स है,
1: वेरी नाइस।
2: 28 दिन में रूल चेंज होने वाले हैं,
1: बिल्कुल,
2: इसलिए आमिर जी को हमने आज यहाँ इन्वाइट करा है। 28 डेज में रूल चेंज, गवर्नमेंट ग्रांट में कट कर रही है, फंडिंग इज सेम, बट आएगा लोन, क्या करोगे लोन लेके, पहली बार पे इतनी,
1: बिल्कुल सही बात है, दैट्स वेरी ट्रू। ग्रांट ले लीजिए, ग्रांट वो पैसा है जो वापस नहीं करना है, याद रखिए, आज फोन करेंगे $400
3: और बचा लेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, और 70,000 से 1,00,000 डॉलर तक की फंडिंग मिल सकती है, और आधी इसमें से ग्रांट है। मान लीजिए 40,000-50,000 ग्रांट का मिल गया जो आपको नहीं लौटाना है, तो ये आपको 2 साल आगे ले जाएगा। लोग 2-3 साल पीछे जा रहे हैं फाइनेंशियल सेटबैक की वजह से। आजकल आपको ये ग्रांट मिल गई, 2-3 साल का किचन का खर्चा तो निकल जाएगा आपका, बैक होम बेच सकते हैं, यहाँ खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत से काम ले सकते हैं 40-50 हजार से आज के टाइम पे। ये रहा नंबर, एक बार फिर से बता रहे हैं, 437-264-3175। आप यहां आके इनरोलमेंट कराएं या फोन के जरिए इनरोलमेंट कराएं। जो आज की डेट में इनरोलमेंट कराएंगे उनका $400 वेव ऑफ कर दिया जाएगा। नागपाल जी से मैंने बड़ी मुश्किल से ये $400 की छूट ली है सिर्फ अपने सुनने वालों के लिए। नंबर दोबारा बता रहे हैं, ये नंबर डायल कीजिए, ग्रांट लीजिए, 437-264-3175। नंबर अगेन, 437-264-3175। आज बहुत से ऐसे लोगों से भी बात होगी जिनको ग्रांट मिल चुकी है, मेरे साथ यहां मौजूद हैं। इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम वी विल स्पीक टू देम, विल कीप यू अपडेटेड। आते रहिए और इस ऑफर से फायदा उठाते रहिए। ओवर टू यू शिवानी।
0: थैंक यू सो मच। कहते हैं लब पे तेरे इकरारे मोहब्बत शेर गजल का लगता है, शर्म से चेहरा लाल गुलाबी फूल कमल का लगता है, दिल को नजर से टकराए भी एक जमाना बीत गया, चोट मगर है इतनी ताजा हाथ सा कल का लगता है, बेखुद होकर मस्त हवाएं ऐसे कब इतराती थी, बेखुद होकर मस्त हवाएं ऐसे कब लहराती थी, ये जादू तो हल्का हल्का उस आंचल का लगता है, हम समझे थे भूल गए हैं वो चाहत का अफसाना, आज मगर फिर दर्द सा दिल में हल्का हल्का लगता है, लब पे तेरे इकरार मोहब्बत शेर गजल का लगता है, आज मगर फिर दर्द सा दिल में हल्का हल्का लगता है।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584।
0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा, वक्त हो चला है 2:16 और वक्त हो चला है हमारे मेहमान से आपको मिलाने का। दोस्तों, दिल के बारे में कहा जाता है, क्योंकि दिल आज आने वाले गाने हम प्ले करते हैं यहाँ पर आपके लिए, कि दिल का क्या है कहीं भी लग जाता है, दिल का क्या है कहीं भी लग जाता है। तबाह तो ये तब होता है जब कहीं ठहर जाता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमारे जाने पहचाने मेहमान हमसे बातचीत करने वाले हैं ना, वहाँ आपका दिल ठहर भी जाएगा और आपका दिल आपसे चीख चीख कर बोलेगा कि हमें यहाँ बस जाना है। तो कौन सा ये प्रोजेक्ट है, आइए मुलाकात करते हैं। जाना पहचाना नाम है, हम सब के अजीज हैं और जनक छापरा जी जॉइनिंग अस नाउ ऑन रेडियो टोरंटो कनाडा। जनक जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
5: गुड आफ्टरनून शिवानी जी, नमस्ते, क्या हाल है आपके?
1: नमस्ते जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और बिल्कुल दिल आ जाए ऐसा प्रोजेक्ट है आपका।
5: मैंने सही नाम लिया आज,
1: है ना? आज सही नाम लिया आपने। लास्ट टाइम लगाने की आज जरूरत नहीं पड़ी।
5: सबसे पहले आपके प्यारे लिसनर्स को आदाब, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते
1: जी,
5: और आप और आपकी टीम को विशेष। शालिनी जी, सॉरी शिवानी जी,
1: हाँ जी,
5: ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसने धूम मचा रखी है।
1: बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
5: ये मेफील्ड और गोर रोड पर आया है प्रोजेक्ट।
1: हॉटेस्ट लोकेशन, बिल्कुल
5: हॉटेस्ट लोकेशन, ईस्ट ऑफ कैलिडन, मेफील्ड और गोर रोड पे। ये मास्टर प्लान कम्युनिटी है
1: जी।
5: सोलमार डेवलपर हैं जो पिछले 36 सालों से हजारों मकान बना के बहुत सारी कम्युनिटियां सक्सेसफुल तरीके से डिलीवर कर चुके हैं
1: जी।
5: टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें इन्होंने एक एक चीज बारीकी से ध्यान रखी है साउथ इंडियन कम्युनिटी को सोचते हुए। उन्होंने मेन फ्लोर पे एक बेडरूम का प्रोविजन भी रखा है पेरेंट्स के लिए,
1: अच्छा,
5: ताकि उनको ऊपर जाने आने में ज्यादा तकलीफ ना हो, सीनियर्स होते हैं
1: जी। बिल्कुल,
5: और हमारे को पता है कि ज्यादातर एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है साउथ इंडियन में
1: जी,
5: पेरेंट्स साथ ही होते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए होती है।
1: बिल्कुल सही।
5: तो डीटीएच इसमें आए 9 लाख के नंबरों में. सेमी जो बिल्डर बनाना बंद कर चुके हैं वो भी इन्होंने बनाए 8 लाख के नंबरों में
1: जी.
5: और टाउन हाउस फ्री होल्ड, कोई POTL नहीं, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, कोई स्टैक टाउन नहीं, बड़े टाउन्स हैं विद डबल गैराजेस, 4 पार्किंग तक है, वो आपको फिर प्राइवेट बैकयार्ड मिल जाएंगे 7 लाख के नंबरों में.
1: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग.
5: हाँ जी हाँ जी, ऐसा प्राइस मेरे को लगता नहीं काफी सालों में आपने सुना होगा.
1: बहुत ये वंस अपॉन ए टाइम वाली प्राइस है जो पहले सुना करते थे कभी कभी, है ना.
5: हाँ जी, कोविड से बहुत पहले.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनबिलीवेबल.
5: हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है ये. 500 से ज्यादा लोग थे जिसे इन्होंने लॉन्च किया 17 तारीख को
1: जी.
5: 200 लॉट निकाले, 2500 बनने. बिल्डर पहले फेज में हमेशा प्राइस कम रखते हैं, फिर 20 से 50 हजार बढ़ा देते हैं.
1: वाह जी,
5: ये सबको मालूम है, सारे इन्वेस्टर या एंडिजर जो भी खरीदते हैं उनको पता है
1: जी.
5: प्री कंस्ट्रक्शन में पहले फेज में हमेशा पैसे कम होते हैं. जैसे एक जमाने में अंग्रेजों ने चाय फ्री बांटी थी, फिर बाद में दुनिया भर के पैसे.
1: सही है.
5: तो इसमें देखिए शिवानी जी, क्रिकेट का ग्राउंड है,
1: ओ वाव,
5: टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं,
1: वाव,
5: स्प्लैश पैड है, और बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेल है जो घूमने के शौकीन है, साइकिलिंग के शौकीन है
1: जी.
5: बहुत बड़ी ट्रेल है, हाईवे 413 5 मिनट पे, गो स्टेशन 5 मिनट पे, वो आ रहे हैं वहां पे. तो आज इसने ले लेना है, अगले साल इसकी क्लोजिंग है 1.5 साल के आसपास, सितंबर और अक्टूबर में वहां से शुरुआत है. तो उसको जब इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तैयार हो जाएगी तो उनकी प्राइस वैसे ही 1-2 लाख बढ़ ही जाएगी.
1: बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही ना,
5: क्योंकि ये फर्स्ट फेज है, ये सब आ रही है वहाँ चीजें, मेफील्ड और गोरोड ईस्ट कैलिडन में
1: जी.
5: इसमें डिपॉजिट है 10%.
1: अच्छा,
5: 1 साल में देना है, छोटी छोटी किस्तों में देना.
1: अमेजिंग.
5: इसमें जो पहला डिपॉजिट है टाउन का वो है 10,000,
1: ठीक है,
5: और जो दूसरा टाउन डिटैच में डिपॉजिट है वो है 15,000. आप बहनों ने जो मेरे को प्रथा शुरू कराई थी इसमें मैं भी अपना योगदान डाल रहा हूँ, 25% मैं डालूंगा.
1: ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत सुंदर.
5: किसी भाई ने सवेरे सवाल किया कि आपका नाम, मेरा नाम नहीं होगा भाई, आप ही का नाम होगा, आपको पूरे पैसों की रसीद देगा बिल्डर.
1: क्या बात है, बहुत अच्छा,
5: आपको
1: बहुत
5: देना
1: अच्छा.
5: 7,500 आपका 10,000 की रसीद मिलेगी बिल्डर के लॉयर्स के ट्रस्ट अकाउंट से
1: जी.
5: आप ही के नाम से
1: जी. जनक जी, ये सुनने के बाद तो मैं नंबर जरूर बताना चाहूंगी आपका, 6479990935. तो जनक जी, ये सारी चीजों के अपॉर्चुनिटी पे का फायदा उठाने के लिए इसी नंबर पे डायल किया जाए जिससे आप मिल जाए और उनको समझा सके.
5: हाँ जी बिल्कुल, 6479990935. टाइम की परवाह नहीं करनी आपने, सुबह रात दोपहर जब आपकी मर्जी फोन कर लें,
1: बहुत
5: आपको जवाब आएगा ही आएगा.
1: मैं
5: बहुत बिजी हूँ लेकिन जवाब आएगा आपको हर वक्त.
1: बहुत खूब, ये तो आपकी स्पेशलिटी है, सबके लिए आप अवेलेबल रहते हैं, पता नहीं कैसे टाइम निकालते हैं. लगता है ऊपर वाले ने आपके खाते में 48 घंटे डाले हैं जनक जी, कुछ ना कुछ तो पार्शलिटी हुई है. 6479990935. जनक जी, हमारे लिसनर्स बेताब हैं आपसे बातचीत करने के लिए, और इतने अच्छे प्रोजेक्ट आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
5: बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो नाइस.
1: थैंक यू जी. और अब हमारे साथ आमिर जुड़ चुके हैं जो कि बहुत ही हॉटेस्ट लोकेशन पर हैं. कहते हैं कैदी हैं सभी यहाँ, कोई ख्वाबों का तो कोई ख्वाहिशों का. अगर आपके ख्वाब है कि आपको ग्रांट मिले, ख्वाहिशें हैं जो पूरी होनी है, तो आपको इसी जगह पर पहुंचना है. पूरी डिटेल्स के साथ आमिर, वेलकम करेंगे आपका, कैसे हैं?
6: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. एंड पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग टू दिस लोकेशन. आज की तारीख में, आज की डेट में जो लोग इनरोल कराएंगे, सबसे पहले वो $70,000 तक की फंडिंग ले सकते हैं. याद रखिए बहुत कम टाइम रह गया है, 28 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी चेंज हो रही हैं. द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप इनरोल करा लेंगे उतनी जल्दी आपको ग्रांट मिल जाएगी, क्योंकि दिस ग्रांट इज कन्वर्टिंग इनटू लोन वेरी वेरी सून. बहुत जल्द ये लोन में बदल जाएगी, और लोन तो पहले ही बहुत है हमारे ऊपर, इसलिए ये नंबर मिलाइए अभी के अभी, स्टाफ सारा बैठा है यहाँ पे, बहुत से लोग हैं जिनसे हम आपकी बात करवाएंगे, जिनको ग्रांट मिल चुकी है। ये 100% ट्रांसपेरेंट, 100% जेन्युइन, 100% ओरिजिनल है। लोग ग्रांट ले रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों से भी बात करवाएंगे जिनको ग्रांट मिल चुकी है। नंबर ये मिलाएंगे आप 437-264-3175। आज की डेट में इनरोल कराएंगे, $400 बचाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। 437-264-3175। नागपाल है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चेंज हो रहा है बहुत जल्दी, ये लोन बन जाएगा जो ग्रांट है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आज की डेट में कोई खास पैगाम, कोई खास बात जो बताना चाहें सुनने वालों को।
7: हाँ जी, सो लाइक टाइम कम रह गया है, 28 दिन रह गए हैं, गवर्नमेंट उसके बाद पॉलिसी चेंज कर रही है। अगर लाइक आप पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे कम है, लाइक आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, अगर आपकी इनकम $70,000 से कम है, आपको सिर्फ तभी इसका एडवांटेज है, आप तभी हमें कॉल करें। आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, फुली ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तालीम हासिल करते हैं, हुकूमत आपको फंडिंग देती है कि आप तालीम हासिल करते करते बच्चों को खाना दे पाए। तो आपको फंडिंग देती है $30,000-$100,000 फंडिंग है, जिसका हाफ पोर्शन आज की डेट में तो ग्रांट है। एज लिमिट नहीं है, पेंशन का सब एलिजिबल है, आप 40 ईयर्स के 50-60 सबसे साल के सभी एलिजिबल हैं। लास्ट 34 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गई, मेरे खाते में नहीं आई।
6: बिल्कुल सही,
7: तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट हो गया, आपका लाइक मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं आपके बच्चे तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या हेराफेरी करेंगे इसमें आप, इसमें कोई झोल है ही नहीं,
6: है ही नहीं,
7: कोई
6: सही
7: कोई परसेंटेज नहीं है, और यही डॉक्यूमेंट्स आपके सिंपल से लगते हैं इसमें। अब गवर्नमेंट को आप डॉक्यूमेंट एडिट करके देंगे क्या?
6: नहीं देंगे ना, नहीं देंगे।
7: तो ये मॉर्गेज से इसको कंफ्यूजन ना करें, ओरिजिनल काम है। आप तालीम हासिल करते हैं, हुकूमत फंडिंग आपको आपके खाते में देती है। आप 40-50 साल के, डजंट मैटर आपका क्रेडिट स्कोर जीरो भी है, डजंट मैटर, आपने 2-3 घंटे फुली ऑनलाइन आसान से कोर्स करने हैं, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है,
6: नहीं
7: बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। कॉल करें, ऑफिस आए, आमिर जी आज हमारे ऑफिस में है, हमारा 1,000 square feet का ऑफिस है, इसका 7 बंदे काम कर रहे हैं
6: जी, बिल्कुल
7: बट पे मॉडर्न पेनिंग मिलते 8 साल हो गए हमें बिजनेस में, कोई कैच नहीं है, कोई हिडन चीज नहीं है। आमिर जी आपके पर्सनल केमिस्ट्री कितने बंदों का?
6: बिल्कुल, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें हम जाती तौर पर जानते हैं, उन्हें हमने ये रास्ता दिखाया, आज उनके पास स्किल भी है और उनके पास पैसा भी है, दोनों तरह से वो फायदे में है। ये ग्रांट, ये फंडिंग आपके फायदे में है जी। अब हम बात करेंगे जरा फैमिली ऑफ टू की फंडिंग के ऊपर, कि फैमिली ऑफ टू है, फैमिली ऑफ थ्री है, फैमिली ऑफ फोर है, फंडिंग में क्या फर्क पड़ता है ज्यादा लोगों?
7: अगर फैमिली ऑफ टू है, हस्बैंड वाइफ है, जैसे रिटायर्ड कपल मान लें, ये यंग कपल मान लें आप, उनमें से एक को ही करके फायदा होता है। जैसे वाइफ कर रही हैं तो उनको 45,000 की अप्रोक्सीमेट फंडिंग बनती है, जिसमें से $25,000 तो ग्रांट है,
6: तो
7: रेस्ट पैसा है $20,000 वो ऑप्शनल लोन है जो कि 0% पे है, विदाउट क्रेडिट चेक, नो कोलैटरल, नो सिक्योरिटी की आपको फंडिंग मिलती है, नो कोलैटरल, नो सिक्योरिटी, और लाइक इसमें क्रेडिट चेक भी नहीं होता। तो 45,000 आया, उसमें से क्या कहते हैं 25,000 ग्रांट है, कॉलेज की फीस 11,000 चली गई,
6: बिल्कुल
7: डिपेंडिंग ऑन कोर्स
6: जी।
7: तो आपको ग्रांट का 14,000 बच गया, लोन का 17,000 से 20,000 बच गया, आपके खाते में 32,000 से $37,000 था अगर कहता है
6: 30-90 days
7: में।
6: वेरी नाइस।
7: अब आ जाए, आपके 3 बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, ये देखिए आज ही पैदा हुए हैं
6: जी जी
1: जी,
7: 300 तो फैमिली बाई होगी
6: जी,
7: तो अब तो 100,000 की फंडिंग बनती है।
6: वेरी नाइस,
7: इसमें भाई दोनों पढ़ रहे हैं और 100,000 मिलता है, इसमें से $50,000 तो वापिस ही नहीं करना, वो ग्रांट है।
6: वेरी नाइस,
7: तो रेस्ट $50,000 लोन है जो कि 1 साल तक 0% पे है, 1.5 साल बाद जब लौटाना स्टार्ट करेंगे तब वो 2.5% के ब्याज पे, मतलब 50,000 जो ऑप्शनल लोन मिला आपको, लोन मिला 50,000 का ऑप्शनल है, जो लोन से करते ना लीजिए जी, लेकिन 50,000 वापस करना, सिर्फ $5,000 ब्याज है 50,000 से 10 साल के लिए।
6: देखिए $1,00,000 तक भी आपको मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली साइज, $1,00,000 तक की रकम भी मिल सकती है, जिसमें तकरीबन आधी ग्रांट है जो आपको वापस नहीं करनी, और आधा लोन है जो स्टडी खत्म होने के 2 साल बाद आप लौटाना शुरू करेंगे आसान किस्तों के ऊपर। ये रहेगा नंबर, ये मिलाएंगे 437 264-3175 नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, आज की डेट में जो लोग इनरोल करेंगे आज की डेट में उनके लिए $400 की छूट है। मैंने नागपाल जी से स्पेशल गुजारिश की, मेरे लिए बहुत मुश्किल था इनको मनाना, लेकिन ये इनसे बात करने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं $400 के, वो ये चार्जेस नहीं लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी इनरोलमेंट करेंगे। यहाँ पे इनका स्टाफ मौजूद है, 7 बंदे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको ग्रांट मिल चुकी है और वो अगले साल के लिए और ग्रांट के लिए अप्लाई करने आए हैं। पहले साल की मिल गई है, अब दूसरे साल की अप्लाई करने आए हैं। नागपाल जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना हूँ कि अगर कोई बंदा एक साल का कोर्स कर चुका है तो क्या दूसरे साल में और फंडिंग उसको मिल सकती?
7: बिल्कुल ऐसा है, और जो कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं
8: बिल्कुल ठीक,
7: और वो और को बताते कम है। अब मैं कह रहा हूँ आप अपने 5 दोस्तों को फोन लगाएं जो हमारा शो, 3 ने ऑलरेडी फंडिंग ले ली होगी
8: सही,
7: 2 ने हमारे थ्रू ली होगी, जरिए आए हम, फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, बाकी लगते हैं लेकिन अगर आपको बता दें दूर दूर रहे।
6: बिल्कुल ठीक, यहाँ नंबर है, ये नंबर मिलाइए, आज इनरोल कराइए, टाइम बहुत कम रह गया है, ये नंबर मिलाएंगे आप, यहाँ रहा नंबर 437-264-3175, या फिर यहां पर आ सकते हैं आप 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड मिसिसागा, हम यहीं पे हैं, ये रहा नंबर एक बार फिर से 437-264-3175.
1: ओवर टू यू शिवानी। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है मैथ में या फिर हायर ग्रेड्स के लिए आप होपफुल हैं और यू नो सपने देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंस जनरेट करें, आपका बच्चा स्टेम प्रोग्राम्स में सक्सेस हासिल करे, तो बस एक ही नाम याद रखिएगा, काम हो जाएगा। वो नाम है अनिल कुमार खंडेलवाल, एक जाना पहचाना नाम है, जीनियस है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के एडुकेटर हैं, 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, यूट्यूब चैनल में 18,000 से ज़्यादा इनको देखा गया है और इनके मैथ वीडियोस हैं, और 18,000 से ज़्यादा इनके मैथ वीडियोस हैं, 400,000 यानी 400,000 इनके सब्सक्राइबर हैं, ह्यूज डिफरेंस ला सकती है इनकी गाइडेंस आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चे की जिंदगी में। और अनिल कुमार जी की जो यूनिक अप्रोच है, वो जो फोकस करती है हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, नॉट जस्ट मेमोराइज फॉर्मूलाज, ये तो बड़ा आसान है और ये कोई भी कर सकता है, इससे सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और उनका जो तरीका है वो हर बच्चे के लिए अलग है, कस्टम मेड प्लान आपके लिए लेकर आते हैं, तरीका लेकर आते हैं, एवरी चाइल्ड कैन सक्सीड इन मैथ विद द राइट सपोर्ट and guidance. Number to call 647-979-2791. Anil ji, namaste, kaise hain aap? Good afternoon.
9: Very good afternoon, Shivani ji. Bilkul theek hai. Thanks for a great introduction.
1: Pleasure is all mine.
9: Aur aapke sabhi shrotaon ko mera namaskar.
1: जी नमस्कार जी।
9: जैसे शिवानी जी ने कहा कि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है और इसके साथ हमने ये सीखा है कि कैसे हम अपने बच्चों को बहुत सक्सेसफुल कर सकते हैं। हमारे बच्चे क्लास में अक्सर फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, 95% के करीब उनके नंबर भी आते हैं, और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है स्कॉलरशिप के साथ। स्टेम शुलेक अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है टोरंटो के अंदर, वो भी मेरे स्टूडेंट ने पाया है जिसको एक टाइम पे हेल्प की जरूरत थी
1: जी।
9: तो आप देखिए किस तरीके से हम हर बच्चे को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं और जो वो चाहता है फ्यूचर में उसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो जैसे शिवानी जी ने कहा, आप प्लीज कॉल करें 647-979-2791। इन गर्मियों की छुट्टियों में अच्छी तरह से बच्चों को तैयार कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं वो, तो प्लीज कॉल देम ऑन दिस नंबर.
1: क्या बात है. और कहते हैं ना कि एक्सप्लोर लर्न मोर एंड सक्सीड विद अनिल कुमार जी. जैसे उनका जो आपकी जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उससे आपको ये पता होता है कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए. तो इसीलिए बस वही तरीका होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस आप में, बच्चे का कॉन्फिडेंस आप में, और जो वर्ड ऑफ माउथ जाता है उसके तो कहने ही क्या. हमारे पास इतने सारे लोग कॉल करते हैं. देखिए ये क्या होता है कि एक जो बच्चे का जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस अचीव करने में. ऐसा मेरा मानना है, शायद आप अग्री करें मुझसे. और बेस्ट यूनिवर्सिटीज में और अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप के जरिए अगर आप अपने बच्चे को ऊंचाइयों पर चमकता देखना चाहते हैं, नंबर यही घुमाइए 6479792791 6479792791. अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया. प्लेजर हैविंग यू विद अस.
9: थैंक यू
1: जी.

0: सुपर डुपर हिट गानों के साथ चल रहा है ये सफर आपके और हमारे साथ रेडियो टोरंटो कनाडा की इस खूबसूरत सी महफिल में आप साथ जुड़े हुए हैं। और आज तो अलग ही खास दिन है क्योंकि आज हम लाइव ऑन लोकेशन हैं और आमिर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और चलिए फिर से उनके पास लिए चलते हैं। आमिर, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हजारों लोगों की तादाद है जिनको ग्रांट मिल चुकी है। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको ग्रांट मिली है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सर।
2: हेलो
1: जी। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपको तकरीबन कितनी ग्रांट मिली, कब मिली, तो हमें अपनी कहानी सुनाइए। जो आपकी एक शॉर्ट स्टोरी है, कैसे आपने इनसे कांटेक्ट किया, कितनी फंडिंग मिली?
2: 101.3 एफएम के सारे लिसनर को नमस्ते। सबसे पहले मेरे तरफ से
1: शुक्रिया बहुत।
2: मेरा नाम भविन पटेल है और मैंने यूनी ग्लोबल एडवाइजरी से सर्विस ली थी, उनके आपके आपसे टेस्टिमोनियल देना था। तो हाँ सर जी, मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट ईयर अगस्त में मैंने इनसे मतलब मेरा एडमिशन लिया था। तो
1: अच्छा।
2: दो साल का मेरा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स मैंने लिया था।
1: अच्छा।
2: तो उसमें पहली पेमेंट मेरे को 17 अक्टूबर को आई, वो 21,760 रुपये सॉरी डॉलर।
1: और
2: दूसरी नहीं रुपये में नहीं सॉरी
1: हाँ
2: हाँ और दूसरी जो पेमेंट है वो मुझे 5 फरवरी को आई और वो है 14,601 डॉलर। ओके, तो टोटल मेरा अच्छा। हुआ 36,000।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही।
2: हाँ, एक साल की मेरे को वो पेमेंट मिली है। और ऑफसेट ने जो कॉलेज की फीस थी करीब 10,000 वो डायरेक्ट कॉलेज को भेज दी।
1: अच्छा, तो ये कॉलेज की फीस निकाल के जो आपको पैसे मिले आप वो बता दें।
2: हाँ जी हाँ जी, तो उसके अंदर आधा लोन है और आधी ग्रांट है। तो करीब मुझे समझ लो कि 46,000 इन लोगों ने मुझे लोन दिलवाया और इन लोगों ने मेरे को $200 चार्ज करा, वो भी ग्रांट मिलने के बाद। और उनके ग्रांट मिलने से पहले इन्होंने मुझे कोई मतलब डॉलर नहीं चार्ज करा और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है।
1: यहाँ पे नागपाल जी भी मौजूद है, इनको भी शामिल करते हैं। आपको याद तो होंगे ये कैंडिडेट।
2: थैंक यू भावेश जी। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू जी। नागपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं एज लिमिट के हवाले से कि क्या एज लिमिट रहती है, 70 साल, 75 साल, 65 साल, या क्या बैकग्राउंड हो, कौन सा एरिया हो, कौन सा इलाका हो, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट?
3: हाँ जी, सो इसमें बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए एंड देन फैमिली साइज पे डिपेंड करती है। फैमिली ऑफ टू है तो आपकी 45,000 आपको आता है, उसमें से कॉलेज की फीस निकाल के आपके अकाउंट में पैसे भी जमा जाते हैं। कोर्स पर डिपेंड करता है, किसी की 11 है, किसी की 10 है, किसी की लाइक मान के 15
1: जी,
3: तो बाकी पैसा आपके खाते में आ गए। और अगर फैमिली ऑफ 5 आपके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, आपकी फंडिंग इसी आती है
1: जी।
3: तो मतलब इसमें कहते हैं 30,000 to 100,000 की फंडिंग।
1: ओह वाओ,
3: इसमें से हाफ पोर्शन ग्रांट।
1: अच्छा,
3: हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके 8 बच्चे हैं, उनकी फंडिंग तो 1.5 लाख,
1: वो तो 1.5 लाख के करीब करीब पहुंच जाएगी।
3: बिल्कुल, तो बच्चों को डिपेंड करता है कि फंडिंग कितनी आती है। तो अभी जिस भाविन भाई ने आपको बताया हमारे बारे में फैमिली स्टूडेंट, अभी जैसे सिंपल जैसे थिंग, तो हमें कॉल करें, अपना एस्टिमेट कराएं, हमारे ऑफिस आएं। हमें ना फंडिंग का वर्ड सुनने लगता है कुछ कैच होगा, बट हम गारंटी देते हैं कोई कैच नहीं है।
1: टाइम
3: हो गया हमें करते हुए, हमें लालच है नहीं, अपनी गुल्लक देखनी है, फंडिंग देखनी नहीं
1: सही।
3: और हम वॉल्यूम में काम करते हैं, अगर टीका लगाना होता अकेले बैठ के मीटिंग के चार प्लान करके
1: बिल्कुल
3: मतलब शोर से मचाते हैं, पैसे करते पैसा तो लगाते हैं
1: बिल्कुल,
3: क्योंकि ईमानदारी पे काम करते हैं, काफी नहीं मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सब चाहते हैं यू कैन मेक अ लिविंग आउट,
1: मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट।
4: यहाँ कॉल करेंगे आप और ग्रांट के लिए, फंडिंग के लिए एक ही नाम, एक ही नंबर है, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी और 218 एक्सपो बुलेवर्ड मिसिसागा। हम सब यहाँ मौजूद हैं, 7-8 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आज की डेट में इनरोल कराइए, ये नंबर मिलाइए और 1 लाख तक फंडिंग भी हो सकती है, इट इज पॉसिबल, डिपेंड करता है आपका फैमिली साइज क्या है। नंबर बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, अभी कॉल कीजिए 437
1: 4367 नंबर अगेन 4367 2 6 4 3 1 7 5 over to you sir thank you so much kehte hain the most beautiful thing is to see a person smiling
0: sabse khoobsurat cheez hoti hai jab aap kisi ko smile karte hue dekhte hain aur usse bhi zyada khoobsurat cheez ye hoti hai and even more beautiful thing is when you know that you are the reason behind it और अगर कोई इंसान मुस्कुरा रहा है हंस रहा है खुश है और अब आपको लगता है कि उसके पीछे की रीज़न आप हैं उसके पीछे का जो वजह है वो आप हैं उससे बड़ी खुशी किसी को हो ही नहीं सकती है ना और ये हमारी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रही है ना वो ऐसी खुशी ऑलमोस्ट एवरी डे महसूस करती हैं क्योंकि हम आज आपसे मुलाकात करवा रहे हैं हमेशा हमारे शो में आती हैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती हैं हमें खूबसूरत बनाती हैं क्योंकि अगर हमारे बाल अच्छे होते हैं ना तो पहले के ज़माने में लोगों की जो खूबसूरती थी उसमें सबसे पहले जिसकी मिसाल दी जाती थी वो अच्छे बालों की दी जाती थी तो नवीन आपका वेलकम करेंगे रेडियो टोरंटो कनाडा में कैसी हैं आप
5: थैंक यू सो मच शिवानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं
0: बिल्कुल ठीक ठाक जैसे मैंने जिक्र किया ना कि जब आपके पास आते होंगे लोग उनके हेयर वैसे ही पहले से और उनसे बेहतर ग्रो हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते होंगे और ऐसा लगता होगा ना कभी कभी क्या होता है ना कि हम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें मेकअप भी करवा लें अगर बाल ठीक नहीं होते हैं ना तो लुक जो है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट होता है आई थिंक आप अग्री करेंगे मुझसे है ना
5: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है
0: ना तो जरा बताइए हमारे लिसनर्स को क्योंकि वैसे तो लिसनर्स आपको जानते हैं लेकिन नए नए लिसनर्स भी जुड़ते हैं हमारे साथ और आजकल हेयर फॉल तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इसके कितने ही सारे रीजन हम गिना सकते हैं लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप ही के पास है तो कैसे आप करती हैं ये किस जरिए से आप हेयर ग्रो करती हैं और इसके लिए कौन कौन से लोग आपको अप्लाई आपके साथ आ सकते हैं उसके लिए कोई क्राइटेरिया है जो फॉलो करना पड़ेगा
5: जी जी शिवानी इसमें 18 से ऊपर अगर आपकी उम्र है और आपके बाल गिर रहे हैं एंड थिनिंग हो रही है क्योंकि अब मेरे पास बच्चे बच्चियां भी आ रहे हैं दिल तो दुखता है लेकिन खुशी इस बात की होती है कि आई कैन हेल्प देम उनके बाल हेयर फॉल रुकती है विद द फर्स्ट सेशन इट्स कॉल्ड स्कैल्प माइक्रो नीडलिंग हम हेयर ग्रोथ सीरम एक बहुत हाई क्वालिटी का मैं यूज करती हूँ हम जब हेयर पे आपके स्कैल्प पे माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो हम वो साथ हेयर ग्रोथ सीरम डालते हैं और वो उस सीरम से आपकी हेयर ग्रोथ होती है फर्स्ट सेशन में आपकी हेयर फॉल डिक्रीज होगी आपके बाल गिरना बंद होंगे
0: जी
5: और फिर सेकेंड सेशन जो आप 3 weeks के बाद लेते हैं
0: अच्छा
5: उसमें आपकी हेयर ग्रोथ होना शुरू होती है एंड आई हैव लाइक बहुत सी पिक्चर्स हैं मेरे पास बिफोर एंड आफ्टर की अगर आपके बाल गिर रहे हैं सो यू कैन सेंड मी योर पिक्चर एंड आई विल सेंड यू माय रिजल्ट्स एंड यू कैन सी कि ये चीज वाकई ही काम करती है
0: जी तो ये जो आपने बताया है कि जनरली मतलब नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में यही प्रोसीजर आप फॉलो करती हैं कि किस स्टेज में आके जो है वो कौन कैसे कैसे ट्रीटमेंट आप देती हैं तो ये क्या सबके लिए यही होता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हेयर फॉल किसी के ज़्यादा हेयर फॉल है किसी के बहुत कम है या किसी के बिल्कुल इतने ज़्यादा हैं कि उस पर ज़्यादा काम करना पड़े ऐसा होता है कुछ
5: ऐसा होता है अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर गए हैं
0: अच्छा।
5: तो पहली बात तो ये कि मैं ये रेकमेंड ही नहीं करूंगी इफ यू हैव लॉस्ट लाइक मोस्टली लाइक 80-90% ऑफ योर हेयर इसलिए मैं पिक्चर्स मांगती हूँ अपने क्लाइंट से कि आप मुझे फोन पे कंसल्टेशन कर लीजिए तो मैं उनको ऑनेस्टली बता देती हूँ कि जी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू बट इफ यू हैव हेयर कुछ भी रह गए हैं तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए है
0: क्या बात है तो ज्यादातर लोग जैसे इतने सारे लोग आपकी इस जो मिरेकल ट्रीटमेंट है उसका फायदा उठाते हैं नवीन एक सवाल ये आता है कि अगर हम बजट की बात करें तो सबको थोड़ा सा बजट देखना पड़ता है तो इसलिए लोग हमसे भी कहते हैं कि अगर हम ग्रुप में जाते हैं जैसे कुछ फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या फैमिली मेम्बर्स में 3 या 4 लोग साथ में लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट है कुछ बेहतर आप कर पाती हैं कर पाएंगे उनके लिए
5: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है एक तो मैं आपको भी डिस्काउंट जैसे अगर एक इंसान जो अच्छा। आना चाह रहे हैं मेरे पास वो उनको भी मैं डिस्काउंट पैकेज बना के दूंगी
0: अच्छा
5: फॉर 3 sessions और अगर आप किसी फ्रेंड को फैमिली मेंबर को लेके आएंगे तो आपको फिर स्पेशल मतलब और भी डिस्काउंट मिलेगा इसमें दोनों
0: दैट्स सो अमेजिंग एक तो अपने बाल वापस आ जाएंगे खूबसूरत नजर आएंगी और डिस्काउंट मिलेगा वो अलग और ये सब सिर्फ एक ही नंबर पे मिलेगा वो नंबर है 6479608 8097. That's 6479608097. और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं किसी वजह से अभी नंबर एक आध कुछ मिस हो गया तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस एनी टाइम. हम आपसे आप हमसे नंबर ले सकते हैं. नंबर एक बार फिर से बता दूं 6479608097. नवीन, प्लेजर हैविंग यू विद अस एज ऑलवेज. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.
5: थैंक यू फॉर हैविंग मी. बाय
0: बाय.

0: लेट डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
1: 40 सालों का विश्वास, सफर हर बार खास. स्टारलाइट ट्रेवल्स, आयटा एंड टीकॉक सर्टिफाइड ट्रेवल एजेंसी, लेड बाय ट्रेवल एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा जी, विद 18 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेकिंग जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड मेमोरेबल. चीपेस्ट एयर फेयर डील्स हो या ऑल इंक्लूसिव वेकेशंस, कस्टमाइज हॉलीडे पैकेजेस, वीजा असिस्टेंस या ट्रेवल इंश्योरेंस, सब कुछ एक ही छत के नीचे. सपनों की डेस्टिनेशन हो या फैमिली वेकेशन, स्टारलाइट ट्रेवल बनाए हर सफर टेंशन फ्री और अनफॉरगेटेबल. स्टारलाइट ट्रेवल, सफर सिर्फ ट्रेवल नहीं, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है. विजिट स्टारलाइट ट्रेवल्स, 7777 वेस्टर्न रोड, यूनिट 221, वॉन, और कॉल 416-745-0000, 416-745-0000.
2: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए. आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं. अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है. आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए. राज, 416-605-2584, 416-605-2584.
0: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ हम बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए. टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार. ये टाइम है टोयोटा का. लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
3: 251 रेडियो टोरंटो कनाडा का ये शो चल रहा है आपके और हमारे साथ साथ, और नंबर 4372643175 ये नंबर है जो आज का हॉट लाइन नंबर बना हुआ है. और एक डेस्टिनेशन, ऑल रोड्स आर लीडिंग टू वन डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन है 218 एक्सपोर्ट बुलेवार्ड इन मिसिसागा, जहाँ पे लाइव लोकेशन धूमधाम से चल रहा है. आमिर इज जॉइनिंग अस नाउ वंस अगेन. गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी. बहुत से लोग डाउट में पड़ जाते हैं, शक में पड़ जाते हैं, शुबे में पड़ जाते हैं, तो आज का ये खास सेशन मैं खास तौर पर खुद यहाँ आया हूँ उन लोगों से बात करने जिनको ग्रांट मिली है, जिनको फंडिंग मिली है. यहाँ पे एक कैंडिडेट मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको कितनी ग्रांट मिली, इनकी स्टोरी सुनते हैं. जी
5: हाँ जी, सत श्रीकाल सर. हाँ जी, मैं अप्लाई किया था, मैं जनवरी वाले बैच में अप्लाई किया था. तो लाइक मेरे दो बच्चे ने, मैं भी अप्लाई किया, मेरे हस्बैंड ने भी अप्लाई किया वा, तो सानू 24,000 की ग्रांट आई थी पर पर्सन. लाइक मेरे हस्बैंड भी आई थी, मैंने भी आई थी,
4: तो टोटल यानी 48,000 बन गया, 24,000 पर हेड ऑन बता. मुझे ये बताइए कि आप सेटिस्फाइड है, मुतमिन है इनकी सर्विसेज से, इनके स्टाफ से, आपने कॉल किया, आपको अपडेट रखा गया?
5: हाँ जी हाँ जी, सर्विस प्रोवाइड की है, तो मैं इन्होंने को आके फाइलिंग अपनी करवाई थी, सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मैंने उसी दिन दे दी थी, तो डॉक्यूमेंट्स भी नाल दी नाल सबमिट कर दिते थे, तो मैंने फंडिंग भी मेरी ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई थी मैंने, तो मैंने सैकंड पेमेंट भी हूँ मेरी आ गई है सारी. तो बाकी अगर आप पहला जो लोन की पेमेंट वास्ते भी सर गाइड करते हैं प्रोपर कि किदा आप पेमेंट वगैरह सारा कुछ, मैं आप इतने भी आ जाने ऑफिस भी आ जाने, थानू कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हम आप अज मैंने इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं ऑफिस आई थी.
4: बिल्कुल ठीक, पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी. यहाँ नागपाल जी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, शामिल हैं. हम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम ग्रांट की बात कर रहे हैं, फैमिली ऑफ फाइव के बारे में मैं खुद बड़ा دلچسپی رکھتا ہوں, انٹرسٹیڈ ہوں, تو آپ ہمیں بتا دیجیے فیملی آف فائیو کے حوالے سے کتنی کتنا لون مل سکتا ہے, کتنی گرانٹ مل سکتی ہے؟
6: ہاں جی, فیملی آف فائیو جو ہے اس میں لائک کڈ زیادہ ہے تو گورنمنٹ آپ کو فنڈنگ زیادہ دیتی ہے.
4: اچھا,
6: اپ ٹو 100,000 فنڈنگ, جس میں سے $50,000 تو گرانٹس ہے جو واپس نہیں کرنا. آپ نے ٹائم رہ گیا کم, 28 دن بعد گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو رہی ہے, لون آئے گا, گرانٹ نہیں آئے گی آپ کو. تو اس لیے دس از دا رائٹ ٹائم, 8 سال سے بزنس میں ہیں, کسی کو لائک دیر از نو ہڈن تھنگ اور کیچ ان اٹ. آپ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں, گورنمنٹ آپ کو خرچہ چلانے کے لیے, لیونگ ایکسپینسز اپنے پے کرنے کے لیے, جو پیسہ کہیں بھی کیش سے بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی اچھا سے, کوئی اس پہ ریسٹرکشن نہیں ہے. 30 سے 100,000 کی فنڈنگ آپ حاصل کرتے اپنے اکاؤنٹ میں سیدھا گورنمنٹ سے, اور آپ لائک تعلیم حاصل کرتے, حکومت آپ کو فنڈنگ دے رہی ہے یہ, اور اس کا آدھا پیسہ تو گرانٹ ہے جو واپس ہی نہیں کرنا آپ نے. کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, آپ 30 کے 40 کے 50 کے ہیں. جیسے آج جیسے ابھی آپ نے جن کا انٹرویو لیا, جو ہمارے کلائنٹ ہیں, آج اپنے فادر صاحب کو کرانے آئے ایڈمیشن,
7: کہتے
6: ہیں ختم ہونے والا تو میرے فادر صاحب کو انرولمنٹ کرا دو. وہی ہے, فادر ڈے کا فائدہ لے رہے
7: ہیں.
6: اس لیے ہماری فیس, اب ہماری فیس میں کوئی کیچ نہیں ہے. ہماری فیس جب آپ کے اکاؤنٹ فنڈنگ آتی ہے, ہمارے میں نہیں آتی. جب آتی ہے 30 سے 90 ڈیز میں گورنمنٹ سے سیدھا ٹھا کر کے, تو آپ نے ہماری فیس دینی ہے 199 یا $499. اس کا میں

0: यहाँ आइए 218 एक्सपोर्ट बॉलीवुड मिसिसागा, या फिर आप नंबर मिलाएंगे नागपाल जी और इनका स्टाफ सब यहाँ मौजूद। बहुत सी एक्साइटमेंट, बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद जिनको पहले फंडिंग मिल चुकी है, वो अगले साल के कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पहले साल की ग्रांट अच्छी मिली तो उन्होंने सोचा कि अब दूसरे यानी अगले साल की भी ग्रांट ले ली जाए। ये नंबर मिलाएंगे आप 437-264-3175। नंबर दोबारा दे रहे हैं 437-264-3175। सब मिला के, लोन मिला के, ग्रांट मिला के $1,00,000 तक भी जा सकता है। नागपाल जी बता रहे हैं फैमिली ऑफ फाइव है, तो अभी के अभी कॉल करें 437-264-3175। 437-264-3175। ओवर टू यू शिवानी।
1: थैंक यू सो मच आमिर, और अमेजिंग ये अपॉर्चुनिटी है जो बिल्कुल मिस ना करें। आज हम लाइव ऑन लोकेशन और सारा दिन आपके लिए ये खुले हैं, और आप आइए और इसका फायदा उठाइए। आज की डेट में अगर आप रेडियो टोरंटो कनाडा के रेफरेंस से आते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पे भी वेव ऑफ मिलेगा। और नंबर टू कॉल 437-264-3175, दैट्स 437-264-3175। और इसी के साथ आमिर रशवानी अब लेते हैं आपसे इजाजत, कल होती है आपसे मुलाकात। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 416-303-3639, इट्स 416-303-3639। और अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर और एफएमआर 101.3। और दोस्तों ये प्यारी सी छुक छुक गाड़ी की राइड शुरू हो चुकी है जो चलेगी 4 बजे तक। और शो की शुरुआत में बहुत प्यारा सा विचार जो कहता है, खुशी चीजों में नहीं अच्छे रिश्तों और सच्चे एहसासों में मिलती है। तो दोस्तों आज अपने दिल को लाइट रखिए, पुरानी प्यारी यादों को फील कीजिए और म्यूजिक को अपने इमोशन से कनेक्ट होने दीजिए। और इसी खूबसूरत से एहसास के साथ शुरुआत करते हैं आज की मस्ती की रेलगाड़ी की। आज के शो में होगा ढेर सारा म्यूजिक, ढेर सारी बातें, बहुत सारी डील, बहुत सारी खबरें। 4 बजे तक दीजिएगा एक बार फिर से शालिनी का साथ शो के दौरान या शो के बाद। हमारा डायरेक्ट नंबर है 416-569-7812, 416-569-7812। शो की शुरुआत करते हैं ताजा न्यूज बुलेटिन के साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।

0: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसाद्दिक मलिक ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है। भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 साल में सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों से तुरंत पेट्रोल के दाम घटाने को कहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कच्चे तेल की कीमत घटकर $68 प्रति बैरल रह गई है, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा। और अब रुक कर लेते हैं भारत से जुड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बांग्लादेशी ट्रांजिट यात्री को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 1,47,00,000 रुपए का सोना बरामद किया। आरोपी ने सोने के पेस्ट से भरे 3 पैकेट एयरपोर्ट के वॉशरूम के फ्लश बटन की कैविटी में छिपा रखे थे। निहंग जसदीप सिंह की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर सिख प्रचारक बरजिंदर सिंह परवाना ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विक्की सिंह थॉमस ने निहंगों को बदनाम किया है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा। DMK के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी है। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में सिख मंत्रियों विधायकों की पेशी के बाद ये साफ हो गया है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो वह पंथ को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सभी दलों के विधायक एक सामान्य सिख की तरह अकाल तख्त पर पेश हुए। ओडिशा में नई स्कूली किताबों को लेकर विवाद छिड़ गया है। कृति नाम की इस किताब में फिल्म हम दिल दे चुके सनम का चर्चित गाना नींबूड़ा नींबूड़ा शामिल किया गया। ये पारंपरिक रूप से राजस्थानी लोकगीत है। इसके अलावा रिंद पोषमाल गीत भी शामिल किए गए हैं। ये मिशन कश्मीर का गाना है। अजय देवगन की फिल्म चौहान का टीजर विवादों में आ गया है। क्षत्रिय परिषद नाम के संगठन ने कहा कि ऐतिहासिक विरासत को सांप्रदायिक लामबंदी का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। संगठन ने फिल्म प्रोड्यूसर से राजपूत नाम का इस्तेमाल जाति और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए नहीं करने की अपील की है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, जिंदगी एक ही है और चॉइस हमारी होनी चाहिए कि जिंदगी में हम कितना खुश रह सकते हैं। आज हमने हैप्पीनेस की बात की, तो कल भी हम हैप्पीनेस की बात करें, परसों भी हैप्पीनेस की बात करें। तो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर पैसा आपके पास कंसिस्टेंटली आता रहता है ना, तो हैप्पीनेस और सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं और आपकी ज़िंदगी एक परफेक्ट लाइफ होती है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी परफेक्ट लाइफ चुनना? आई एम श्योर चाहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर हम हाजिर हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, और क्योंकि हम यहां पर मस्ती और फन की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाए। विन लाइफ टाइम का रुख करेंगे और वहां से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड, गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर मैं कहूं कि एक लाइन में सम अप करें कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और यहां पर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर कल आने वाले वक्त में आपको ये स्ट्रेस ना हो कि आपकी इनकम कहां से आएगी, तो विन लाइफ टाइम पे आएं, सीखें कि हम आपको कौन सा बिजनेस सिखा सकते हैं, ये है विन लाइफ टाइम।
1: हाउ नाइस, क्या बात है कि मतलब अगले दिन उठकर सोचना ना पड़े कि आज क्या करें। रोज हम कहते हैं ना, कुआं खोदो और उसमें से पानी पियो, तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना कि बस स्मूथ चलती रहे हमारी लाइफ में, तो ऐसी स्किल हमें आ जाए। तो क्या ये स्किल इस लेवल पे पहुंचना, खैर आपका लेवल तो मेरे ख्याल से बहुत ही ऊंचा होगा क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग नाउ, लेकिन अगर मैं बोलूं सब्सटेंशली गुड अमाउंट कमाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है?
2: कुछ लोग 14 दिन में सीख जाते हैं, मोस्ट यूजर्स wow. हमारा सॉफ्टवेयर 3 माह के अंदर अंदर सीख लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा एग्रेसिव आते हैं लर्निंग के मोड में, 4 आपकी क्लासेस होंगी, सिखाया जाएगा इन पर्सन, और उसके बाद आपके पास 8 मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ आप बैठ जाएंगे। खुद से आपने कुछ करना नहीं है, ना आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, ना आपको, तो सारी की सारी चीजें हम टेक केयर करेंगे। आपने सिर्फ आके फॉलो करना है, हमारे सिस्टम को देखना है, और फिर एवरी डे 100, 200, 300। आज भी हमने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए, सिंगल डे 24 आवर्स, $1,500।
1: अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है, ब्यूटिफुल। तो इसके लिए राफी जी, जैसा आपने कहा कि किसी तरीके का प्रायर एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि जो भी हम ट्रेडिंग सीखते हैं, जो भी पैसा इसमें लगाते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए इस काम को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक वाहिद फर्म है, हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप आए और बिल्कुल अपना पैसा लेके नहीं आना, अपनी हार्ड एंड अर्निंग आपने किसी और कारोबार से बनाई है, अपने ट्रेडिंग में नहीं डालनी। हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एज ए ट्रेडर राइट अवे एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेती हैं, हम उनके साथ अफिलियेटेड हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ट्रेड करना है।
1: ओह, वेरी नाइस। तो राफी जी, आपका जो सेमिनार होने लगा है सैटरडे, उसके लिए जरूर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स पहुंचें और अपनी जिंदगी परफेक्ट कर लें।
2: जी ऑफ कोर्स, बिकॉज इस 5 मिनट के इंटरव्यू में पूरे वीक में चलता है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा सेमिनार वेल ओवर 3 to 4 आवर्स जाता है। हमारा क्लेम है कि इस दोनों ऑफिस में होगा इस सैटरडे, आप आए, जब तक आपका आखिरी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा हम पोडियम नहीं छोड़ेंगे।
1: वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो वेल दोस्तों, 10 नंबर के फासलों पर है आपकी खुशी, आपकी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ। कॉल कीजिएगा विन लाइफ टाइम में टू बुक योर फ्री सीट, नो ऑब्लिगेशन सीट फॉर द सैटरडे सेमिनार विच इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा, सैटरडे एट 1 PM। 9052061008, 9052061008, और विजिट winlifetime.com। थैंक यू सो मच राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
2: Thank you, G. Take care.
3: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.

0: कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। #homes एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 days एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
0: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
5: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
0: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
5: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
0: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।

0: पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजाहट.com।
0: जय श्री राम।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3। आप हैं मेरे यानी शालिनी के साथ। टुडे इज ट्यूसडे June 30th। तो बाहर जो है येलो वार्निंग है इश्यूड हीट के हवाले से, गर्मी के हवाले से। इस वक्त आपको 33 डिग्री सेंटीग्रेड तो वैसे टेम्परेचर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज इज कि आपको महसूस कितना हो रहा है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है गर्मा गर्म हवाएं चल रही हैं और बाहर आपको गर्मी डेफिनेटली लग रही है। सनशाइन हालांकि ज्यादा नहीं है, आसमान में बादल ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त फील्स लाइक 45 डिग्रीज है और यही रहेगा आज का हाइएस्ट टेम्परेचर। और आज का ओवरनाइट लो जा सकता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड कैन यू बिलीव इट, रात के 11 बजे आपको महसूस हो सकता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप -40 सोच लीजिए, तो यू वुड एब्सोल्युटली लव दिस हॉट वेदर। लेकिन फिर भी ऑन अ सीरियस नोट, अपने आप का ख्याल रखिए दोस्तों। बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा कर जाइए, इसके साथ साथ ट्राई टू वेयर हैट, ट्राई टू यूज अम्ब्रेलाज। अगर आप बाहर धूप में वॉक कर रहे हैं, अपने आप को कवर करके रखें। सन स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, स्पेशली अगर आपके पास आपके साथ छोटे बच्चे हैं, आपके साथ ओल्ड पीपल हैं, उनका खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और गाड़ियों में तो कभी कभी इतनी बड़ी मिस्टेक लोगों से हो जाती है, आप बच्चों को छोड़ देते हैं गाड़ी में या पेट्स को छोड़ देते हैं गाड़ी में जाने अनजाने में। तो ऐसी गलती ना करें, स्पेशली ऑन दिस हॉट वेदर। इट्स 319 राइट नाउ, 320 हो चुके हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यश विंडोज एंड डोर्स, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं पूरे ऑन्टारियो में। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, स्टाइल, सब कुछ एक साथ और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे। अगर आप फ्रेंचाइज ऑप्शन देख रहे हैं, देन दिस इज अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू कैन जॉइन द फास्ट ग्रोइंग टीम यश विंडोज एंड डोर्स। 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स बता दें, अगस्त से सितंबर एंड अक्टूबर तक राउंड ट्रिप 1365, टोरंटो से दिल्ली जुलाई में वन वे 1049 में दो बैग्स के साथ। नाउ टोरंटो से बैंगलोर 845 में जा सकते हैं दो बैग्स के साथ इन द मंथ ऑफ सितंबर वन वे। फिर टोरंटो से दिल्ली जाइएगा अक्टूबर में वन वे 970 में दो बैग्स के साथ। टोरंटो से पेरिस डायरेक्ट फ्लाइट अगस्त टू सितंबर रिटर्न फेयर $920। टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200। और आज के दिन को देखते हुए बता दें कि आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है। क्लीन योर डिस्पोजल डे, गार्बेज डिस्पोजल आप करते हैं उसको साफ करके रखें, क्योंकि वहां से बहुत सारा बैक्टीरिया आपके घरों में आ सकता है। इसके साथ साथ आज का दिन क्या कहता है, आज का दिन कहता है कि सोशल मीडिया पर खूब रहें आप, इंजॉय करें सोशल मीडिया पर, क्योंकि आज है सोशल मीडिया डे। अगर आपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, जैसे हम कर रहे हैं इस वक्त, आप हमें लाइव देख रहे हैं, सो वी आर ऑप्टिमली यूजिंग द सोशल मीडिया। तो अगर इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसके बहुत सारे नुकसान भी है। खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे जब सोशल मीडिया पर जाते हैं तो कई सारी ऐसी साइट्स पर पहुंच जाते हैं जो उन्हें नहीं जाना चाहिए, उन पर काफ़ी बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो एज पेरेंट्स हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जब सोशल मीडिया पर बैठा है तो किन लोगों से मिल रहा है, किन लोगों से बात कर रहा है, क्या क्या चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसके अंदर जा रही है वो इन्फॉर्मेशन। So we all have to be very, very careful. So all in all, it's a great day out there. एक हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगी बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत लेकर, आपका हम जो है फायदे की बात करेंगे। एक उनके बारे में सुनते हैं और फिर करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात शॉन एक्सप्रेस पर।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जी दोस्तों, आज के डेट सॉल्यूशन स्पेशल सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है और अब बात होने जा रही है मैक्सिमम डेट रिलीफ की आपके लिए। और हमारे साथ जुड़ने जाएंगी आयशा मुनव्वर, जो एक रिनाउंड इंसॉल्वेंसी एंड क्रेडिट काउंसलर हैं, और आपको सही प्लानिंग और लीगल ऑप्शंस के थ्रू मिल सकता है मैक्सिमम डेट रिलीफ और पीस ऑफ माइंड। अगर आप भी लोन, क्रेडिट कार्ड्स या फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो टेंशन छोड़िए और सॉल्यूशन पाइए। नंबर है 416-428-2165। आशा जी, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू। और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ। और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियों हो गई, बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव रहती हैं। और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें। और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं। वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और उसमें यह कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसिस दे देते हैं तो कई दफ़ा ईजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफ़ा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज़ टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज़ टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाएं। बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन गिव अस अ कॉल। माय फोन नंबर इज जी 416-428-2165, दैट इज 416-428-2165। थैंक यू वेरी मच।
0: Thank you so much, Asha ji, for joining us today and sharing the wonderful, wonderful details with us. और आपका नंबर मैं फिर से बता दूं, दोस्तों इस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए। किसी भी तरह के डेट रिलीफ के लिए आप कॉल कर सकते हैं 416-428-2165. सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3। गुड आफ्टरनून।
2: शॉन एक्सप्रेस गानों की स्वीट डिश।
0: दोस्तों, जिंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बार होते हैं और उनकी मिठास उम्र भर दिल में बसी रहती है। पहला प्यार, पहली मुस्कान, पहली धड़कन और पहली बार किसी का ख्याल, हर पल साथ रहना। फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर और सदाबहार गाना आपकी नजर करेंगे, पहला नशा। आज भी दिल को उसी मासूमियत और ताजगी के साथ छू जाता है, शायद इसीलिए कि जो पहला प्यार है ना कभी पुराना नहीं होता, यादों में और भी ज्यादा खूबसूरत होता जाता है। पहली मोहब्बत का असर कुछ यूं होता है, पहली मोहब्बत का असर कुछ यूं होता है, हर ख्वाब उसी के रंग में खोता है। वक्त गुजर जाए, मौसम बदल जाए, लेकिन वो पहला एहसास कभी नहीं खोता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि पहली मोहब्बत हमेशा मुकम्मल हो, लेकिन हमें वो प्यार करना, किसी की फिक्र करना और दिल से मुस्कुराना जरूर सिखा जाती है। कुछ लोग जिंदगी में साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल के सबसे खूबसूरत कोने में बस जाती है। तो आइए अपने पहले प्यार, पहली मुस्कान और उन सुनहरे एहसासों को याद करते हुए सुनते हैं यही गाना, पहला नशा पहला खुमार।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका स्वागत है ऑन CMR FM 101.3। सुपर हॉट डे है आज का, 45 डिग्री सेंटीग्रेड आपको महसूस हो रहा है, और इसके साथ साथ हॉट एंड स्टीमी वीक है टोरंटो में एंड मच ऑफ ऑन्टारियो में। ये पहली हीट वेव है और समर की आज लग रहा है कि भाई गर्मी आ गई है। जैसे ग्रेटर टोरंटो एरिया और ज्यादातर प्रोविंस के हिस्सों में हीट वार्निंग्स इश्यू कर दी गई हैं एनवायरमेंट कनाडा की तरफ से। ऑरेंज वार्निंग है इश्यूड है आज, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज्यादा होता है जनरली तो इस तरह की वार्निंग इशू होती है। और कनाडा का हॉटस्पॉट बना हुआ है टोरंटो। दोपहर के 3 बजे टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट बन चुका है ऑन्टारियो का और कनाडा का हॉटेस्ट स्पॉट। 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, वैसे ह्यूमिडेक्स वैल्यू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मींस कि कनाडा की किसी और सिटी में टोरंटो से हाई टेम्परेचर इस वक्त नहीं है। तो जैसे ही मस्ती की रेलगाड़ी शुरू हुई वैसे ही ज्वालामुखी के ऊपर फट पड़ा, यानी सबसे ज्यादा गर्म दिन पहुंच चुका है और रिकॉर्ड जो है आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड है जो 1964 में बना था। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड वी आर लिटिल बिट बिहाइंड दैट, वी आर सिटिंग एट 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 35 पहुंच जाता है तो 1964 का रिकॉर्ड हम बीट कर देंगे। और वेल भाई, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी रोजमर्रा की परेशानियां, ऐसा लगता है कि सचमुच हमारा सर चकराने लगा है। लेकिन सर जो चकराता है वो इस वजह से भी कि जब बाहर बहुत ज्यादा हीट होती है। तो दोस्तों बात करती हूँ आपके बचपन की, कि बचपन अगर आपका इंडिया पाकिस्तान में अगर बीता है तो आपको पता होगा कि एसी जो है हर घर में नहीं होता था, फिर भी जो गर्मियां थी वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं लगती थी। आपके बचपन को कुरेदते हैं और आपसे मैं पूछती हूँ कुछ सवाल आपके बचपन की गर्मियों को लेकर, कि गर्मियों में कौन सी ऐसी चीज है जो आप इस वक्त मिस करते हैं जो आप बचपन में करते थे। किसी के घर में मिट्टी के घड़े में ठंडा ठंडा पानी होता था और खस की जो है एक तरह के पर्दे लगे होते थे जिसके ऊपर हम पानी डालते थे, और वो जो एरिया था आउटडोर जनरली हमारा बरामदा होता था जिसमें खस के पर्दे जैसे लगे होते थे और वहाँ पर उनके ऊपर पानी डालते थे और वो धीरे धीरे ठंडक हमें पहुँचाते थे। छत पर चारपाई डाल के कुछ लोग सोते थे, आसमान में तारे देखते थे। किसी का पूरा दिन आम तरबूज और खरबूजे में निकल जाता था। शाम होते ही गली में क्रिकेट शुरू हो जाता था। पता है आपको, जब बहुत गर्मी होती थी तो बिजली चली जाती थी और पूरा मोहल्ला बाहर निकल आता था। कोई हाथ वाला पंखा चल रहा होता था तो कोई अखबार से हवा कर रहा होता था। कहते हैं कि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो बचपन की गर्मियों का अपना अलग मजा था। ना एसी की जिद थी ना कंफर्ट की फिक्र, ना एसी की जिद थी ना कंफर्ट की फिक्र, बस दोस्तों का साथ और आम का मौसम ही काफी था। तो आपसे पूछती हूँ दोस्तों कि कौन सी ऐसी चीज है, मजेदार स्टोरी है बचपन की जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे गर्मियों के मौसम को लेकर। कौन सी वो मजेदार बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे तो अपना बचपन याद है, जब गर्मियां होती थी तो फिर मैं बैठ जाती थी और मेरे सामने एक टोकरे में बहुत सारे आम होते थे। मैं बहुत छोटी सी होती थी, मैं अपने डैड की वेस्ट पहन लेती थी और एक कान से लेकर दूसरे कान तक मेरे आम ही आम नजर आता था। तो आपसे पूछती हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीज इंटरेस्टिंग नजर आती है, याद आती है बचपन की, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 4165930055 हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं, आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। गुड आफ्टरनून।
3: गुड आफ्टरनून।
2: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं अनिल कुमार लूथर बोल रहा हूँ जी।
2: अनिल जी, वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी।
3: थैंक यू।
2: बताइए क्या तो कहना चाहेंगे।
3: आज तो गर्मी का दिन है जिसने बचपन की यादें ताजी कर दी हैं, और आपका प्रोग्राम सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप ये जानना चाहते हैं कैसे था। हम कानपुर में रहते थे, तो कानपुर में रहते थे, तो कानपुर में आपने जैसे बातें की तो वहाँ सहारनपुर से छोटे छोटे आम आते थे चूसने वाले, वो हम लोग मम्मी वाला टब में डालना, उसको बर्फ की सील लगा के ठंडा करके, तो वो
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल That's right.
3: वो अभी तक याद है। और फिर जैसे आपने खसखस की बात की, वो मेरा काम होता था ड्यूटी कि जब ये आम चूस लिए इसके बाद वो अपने क्या नाम था रसोई को कवर करना, और उसके ऊपर मेरी ड्यूटी होती थी पानी फेंकना जिससे ठंडी हवा आए।
2: That's right. कितना अच्छा लगता था। और उसकी जो खुशबू, और वो खस की जो खुशबू आती थी जब उसपे पानी डालते थे, जब कूलर्स चलते थे पहली बार, तो कूलर्स में से भी था।
3: उसका कोई वो नहीं है
2: मुकाबला,
3: कोई मुकाबला नहीं।
2: That's right. बिल्कुल। अच्छा, आम तो जब आते थे मार्केट से तो सीधे ही वो बाल्टी के अंदर जाते थे, फ्रिज में तो मुझे नहीं लगता लेट में जाते होंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले बाल्टी में उसको ठंडे पानी में रखा जाता था।
3: हाँ बेटा, यही था क्योंकि फ्रिज तो हमारे पास एयर कंडीशनिंग तो थे ही नहीं, फ्रिज भी नहीं थी उस टाइम।
2: हाँ अच्छा, ओके। अच्छा, आप अनिल जी जब गर्मियों के मौसम में रात के वक्त छत पे सोते थे?
3: हाँ जी, उसका भी मैं बताता हूँ। हमारा ये था कि सोने से पहले ही मेरी ड्यूटी थी कि वो जो है ना अपना बिस्तरा चादर उसके ऊपर पानी छिड़काव करते थे जिसे ठंडा रहे, फिर वो जो फ्लोर है अपना उसके ऊपर भी पानी फेंकते थे जिसे ठंडा रहे।
2: क्या बात है। और आजकल हम जब एसी में सोते हैं ना तो बस वो फन नहीं, क्योंकि वो हमें हम अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, वो ठंडक लाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तो इसीलिए वो चीजें ज्यादा याद आती हैं। और जब ट्रेन में जाते थे तो सुराही भी लेकर जाते थे कुछ लोग,
3: जरूर पतली थी
2: और वो हमेशा टूटती थी, ट्रेन में हमेशा टूटती थी और उसमें से पानी भी लीक होता था। That's interesting. Thank you so much.
3: उसकी, Thanks a lot. वो जो सुराही थी उसके मुंह बना होता था, मतलब अलग अलग टाइप के।
2: That's right. बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी,
3: बात करके इसके बारे में अपना बचपन याद आ गया।
2: एनी टाइम अनिल जी, थैंक यू सो मच, गुड टू टॉक टू यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
3: सेम हियर, थैंक यू वेरी मच
2: जी। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें, अपनी गर्मियों की छुट्टियों वाले दिन क्या होते थे, मैं एक चीज और करती थी अपने दोस्तों के साथ, कॉमिक्स बहुत सारी शेयर करती थी। आई यूज्ड टू हैव टन्स ऑफ कॉमिक्स, अब 50 कॉमिक्स मैंने अपनी ली, 50 कॉमिक्स अपने दोस्तों से ली, तो फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, और फिर काम तो कुछ होता नहीं था, आम खाते थे और फिर कॉमिक्स पढ़ते थे। और आप लोग क्या क्या करते थे, कौन कौन सी फनी चीजें करते थे, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, CMR FM 101.3, इट्स 343 राइट नाउ। और ये जो बातचीत है आज की, स्पॉन्सर कर रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो आप जरूर इनसे बात करें। ऑल ओवर ओंटेरियो में सर्विसेज देते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और खुद ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है इनकी इंस्टॉलर टीम। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। सुपीरियर स्टाइल, गुड लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है। अब फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यश विंडोज एंड डोर्स में बात करें यश धर्म जी के साथ, 416-732-3600, 416-732-3600। 3600। हमारे साथ एक अगले कॉलर जुड़ेंगे, अपनी बचपन की यादें ताजा करेंगे गर्मियों को लेकर। वेलकम जी, मस्ती की रेलगाड़ी पर स्वागत है, कौन है हमारे साथ?
4: दीप्ति।
2: तृप्ति वेलकम।
4: दीप्ति दीप्ति
2: दीप्ति ओके दीप्ति वेलकम।
4: बहुत अच्छा लगा, मस्ती की रेलगाड़ी से याद आया क्योंकि बचपन में हम लोग राजस्थान रहते थे और मेरे नाना जी सूरत में रहते थे। तो वेकेशन जैसे भी होता है तो मम्मी हमको ले, हम तीनों भाई बहनों को लेकर राजधानी एक्सप्रेस, आई स्टिल रिमेम्बर द ट्रेन, और वो सुराही में पानी एंड आलू की सब्जी, पूरी, वो भाजी सब टिफिन में पैक करके, अचार वगैरह सब जाते थे ट्रेन में। और सूरत जब पहुंचते हैं तो मेरे मासी के, मामा के सब बच्चे, हम सब इकट्ठे होते थे वेकेशन में। और उधर मामा, अरे दादाजी मेरे पहले से वो जो टोपला होता है केसर कैरी और आपूस कैरी, उसके बड़े बड़े टोपले घर पे लेकर आते थे कि बच्चे आने वाले हैं। और हम सब, ना तो फ्रिज था ना एसी था, कुछ नहीं, फैन भी नहीं, वो पंखा हम लोग यूज करते थे। लेकिन मजेदार लाइफ थी, हम लोग सब बच्चे वो सफेद जो लिनन के जो कुर्ते जैसे होते थे ना, नॉट लिनन बट आई डोंट नो दैट मटेरियल, लेकिन बहुत अच्छा था। और सब बच्चे उसी में बैठ जाते थे पालती मार के। और दादा हमको बोलते हैं कि जिसको रस खाना हो, जिसको कैरी खानी हो, उसको आम, मतलब वो जो करते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से, उसको
2: केरी का अचार बनाते थे, खट्टे
4: आम। नहीं नहीं, अचार नहीं, रस, रस बनाने के लिए दादा, यहाँ तो हम लोग मिक्सी में कर देते हैं, लेकिन वो है ना कंतान जो होता है, हाँ कंतान को रैप करते थे बड़े से तपेले के ऊपर, और उसमें वो हमको बोलते थे कि ये गोलो, मतलब आम गोलना है, और हमको गुटली फिर जो होते हैं वो चूसना है, क्योंकि हमको कुछ जाना नहीं दे, हम लोग सब चूसते थे वो बहुत मजे से। और अच्छा, दादा
2: मुझे याद आया दीप्ति कि हम जो है ना पूरी फैमिली में, बहुत छोटी सी होती थी, पूरी फैमिली में 10-12 लोग हम लोग बिग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे थे। मेरे पापा के हाथ से, पापा ने ऐसे मैंगो दबाया, जो गुटली थी वो निकली और वो एक के ग्लास में टप से गिरी, फिर वहां से निकली, फिर दूसरे ग्लास में टप से गिरी। इट वॉज अ मैजिकल मोमेंट एंड ऑल ऑफ अस आर वर लाफिंग अनकंट्रोलेबली।
4: दैट इज सो, आई मीन वो आपने याद दिला दिया। और हमेशा अभी भी मैं, हम तीनों जब इकट्ठे होते हैं और मेरे मामा के, सबसे वही बात होती है कि हमें सबसे ज्यादा क्या याद आता है, नाना जी सब रस का वो बना रहे हैं कंतान में ऐसे रग रग के, और छानना पड़ता है एंड एवरीथिंग, और हमको गुटली और वो दे दे दे चूसो सब, और हम पूरा, मतलब हमारा, हमारे कपड़े रस में, मतलब एकदम वो थे
2: बिल्कुल बिल्कुल
4: नीचे तक रस रस रस। लेकिन दैट वाज द बेस्ट टाइम एवर। और फिर एज यू सेड, ना फैन, मतलब फैन था तो, लेकिन बड़ों को, नाना नानी वो लोग सोते थे, तो हम लोग छत पर, हम सबको अपने अपने दो दो हम लोग इकट्ठा करके बिस्तर ऊपर ले जाते हैं, पानी छा वो डालते हैं, और फिर ताश ले जाते हैं ऊपर, और सब बच्चे, हाँ ताश खेलते थे रात को।
2: That's amazing.
4: Yeah,
2: बहुत नाना, जी जी क्या बात है दीप्ति, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक्स अ टर्न फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और हमने आपकी बचपन की यादें ताजा करा दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा सुकून मिला आप सभी लोगों की बात सुनकर। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812। और चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ, आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी हमारे साथ जुड़ेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर, स्टे ट्यून्ड। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। आप हैं शालिनी के साथ, हमारा डायरेक्ट नंबर आफ्टर द शो 416-569-7812, दैट्स 416-569-7812। दोस्तों लाइफ में ना खुशियां तो आती हैं, बट एट द सेम टाइम लाइफ में गम भी आते हैं, अब ये शरीर है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को अगर आप सुपरफिशियली हैंडल करेंगे तो वो प्रॉब्लम आके थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाएंगे, लेकिन फिर दे कम बैक अगेन टू यू, राइट? तो इसीलिए क्यों ना ऐसा इलाज ढूंढा जाए कि जड़ से उस प्रॉब्लम का खात्मा कर दिया जाए। अच्छा, अब वो इलाज एक ऐसे पर्सन आप तक लेकर आ रहे हैं जिन्हें 1, 2, 3, 10 साल का नहीं 9 जनरेशन का अनुभव है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को जड़ी बूटियों के साथ खेलते हुए देखा है, जड़ी बूटियों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कुकअप करते हुए देखा है। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी और ला इलाज बीमारियों का नेचुरल आयुर्वेदिक इलाज अब पॉसिबल है। सेहत है तो सब कुछ है। सबसे पहले नंबर लिखे, मैजिकल नंबर है, वेरी इजी टू रिमेम्बर, 437-438-3399, 437-438-3399। गुरुजी नमस्कार, वेलकम, कैसे हैं आप?
3: नमस्ते नमस्ते शैलेंद्र जी, कैसा है जी? मैं बहुत अच्छा है, भगवान आशीर्वाद से।
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपकी आवाज सुनते ही ना अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई बॉडी पेन है, कोई इधर उधर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आई थिंक आपकी आवाज से अपने आप ठीक हो जाती है।
3: भगवान का आशीर्वाद जी, जी आपको भी आवाज वैसा है जी। ये क्या होता है जी, हम ये काम कर रहा है आयुर्वेदिक एंड हर्बल काम पिछले 9 जनरेशन से कर रहा है, आज कल से नहीं है। आज से वो नहीं है, ये सारा किसके लिए कर रहा है? कोई भी बीमार है शरीर को अंदर, कोई भी बीमार है वो बीमार के लिए हम कर रहा हूँ। शरीर को वाता पित्त कफा रहता है, ये वात पित्त कफ से शरीर को अंदर क्या क्या बीमार होता है ये बीमार को क्लीन करने के लिए करता हूँ। उसमें जॉइंट में दर्द हो जाता है, सयाटिका हो जाता है एंड नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाता है, ताकत को कम हो जाता है, एनर्जी लेवल्स कम हो जाता है, और घुटनियों में यूरिक एसिड बढ़ के और आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस होता है उसके लिए भी हम दे रहा है इलाज, दे रहा है बहुत साल से मैं दे रहा है इलाज, ओनली हर्बल्स से, कुछ भी नहीं है, ओनली हर्बल्स में जाता है, फॉरेस्ट को अंदर जाता है हमारे टीम के साथ, हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ, वैसा गोमुखी और तपोवन, उधर जाके उधर से जड़ी बूटियां लेकर आके उसको प्रोसेस करके किस किस के कौन सा हर्बल देना है वैसा सोचकर दे रहा है। पिछले हम 9 जनरेशन से, मेरे को पर्सनल 50 साल को एक्सपीरियंस है, सो ये नॉलेज सारा मेरे को एंसेस्टर के से मेरे को आ गया था। वैसा प्रॉब्लम के लिए, कोई भी प्रॉब्लम शरीर में हो ऐसे हम भगवान आशीर्वाद से उसको ठीक करने के लिए शांत से 100% होता है विदाउट साइड इफेक्ट।
2: वेरी गुड गुरुजी, एक बार आपका मैं नंबर यहाँ पर अनाउंस कर दूं, 437-438-3399। गुरुजी अभी हमारे पास एक मैसेज आया, वो पूछना चाहते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हो गए हैं बच्चों में, राइट? और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं हमारे स्पेशल नीड बच्चे भी होते हैं, यू नो उन्हें भी जैसे ऑटिज्म हो गया, इस तरह की भी इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज, तो इस हवाले से क्या उन बच्चों की मदद हो सकती है जड़ी बूटियों से?
3: यस, वो ऑटिज्म बताता है, ऑटिज्म
2: जी जी,
3: ऑटिज्म एक होता है, एक हाइपर टेंशन होता है उसी लोगों को, या हाइपर टेंशन के ऑटिज्म के जस्ट थोड़ा चेंज है वो, हाइपर टेंशन बच्चों को भी ऑटिज्म के नीचे बताता है। सो उस बच्चे को मैं देखने तो उसको ब्रेन थोड़ा काम करने के लिए, उसको नर्व सिस्टम काम करने के लिए, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, वो हमारा बात में कुछ भी नहीं ध्यान रहता है, उसको क्या चाहिए वो करता है, वैसा करता है, उसके लिए हमारा पास अच्छा वो मेंटली में थोड़ा काम करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए, हाइपरटेंशन कम करने के लिए, थोड़ा अच्छे से नींद होने के लिए हमारा पास इलाज है। वैसा देखिए तो उसको भी थोड़ा, उसको वो क्या होता है, हराम हो जाता है।
2: अच्छा ठीक है, वेरी गुड,
3: रिलैक्स हो जाता है नर्वस सिस्टम के लिए वो रिलैक्स हो जाता है, वही ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म किसी ने 100% नहीं ठीक करता है, बट उसको थोड़ा उसको क्या करता है, उसको शांति कंट्रोल कर सकता है, वो ऑटिज्म आता है, बर्थ आता है, मिडिल में नहीं आता है, मिडिल में आने वाला प्रॉब्लम कोई भी ठीक कर सकता हूँ जड़ से, बट बर्थ से आने वाला प्रॉब्लम कुछ भी कोई भी नहीं करेगा, शांति करेगा वैसा है, ये हम वही बोलता है।
2: बहुत अच्छी बात है गुरुजी। नंबर आपका फिर से बता दूं दोस्तों, कोई भी बीमारी है आपको, शुगर, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, आपने जैसे आप बोला बॉडी पेन कोई है, कोई भी बीमारी है, स्किन इश्यूज हैं, तो गुरुजी से आप बात कर सकते हैं 437-438-3399। गुरुजी कहाँ मुलाकात हो सकती है आपसे अगर कोई आना चाहे आपसे बात करने तो?
3: यस जी, मैं स्कारब्रो में 4 दिन रहता है, तो मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे ब्रामटन में मिलता है जी। किसी को चाहिए तो मेरे को फोन करना, मेरे नंबर को अपॉइंटमेंट लेना, क्या करना मैं बताऊंगा, एड्रेस दूंगा।
2: बिल्कुल जरूर गुरुजी, और 437-438-3399 है नंबर। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, फिर आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्दी।
3: थैंक यू जी।
2: और दोस्तों गुरुजी से आप ब्रैम्पटन या स्कारब्रो दोनों में से कहीं भी मिल सकते हैं और अपनी बीमारियां आप डिस्कस कर सकते हैं 437-438-3399।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
5: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
6: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
5: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर विजा इज डिक्लाइंड।
6: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
2: #homes एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 days एंड क्लोजिंग लेटर 2027 to early 2028। To book your lots, call Rahul Kashyap 647

भाई गर्मी का मौसम है तो सर तो चकराएगा ही, लेकिन जरा ठंडक में बैठिए और अपने सर को भी जरा ठंडा ठंडा कूल कूल रखिए और एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा मौसम। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और मस्ती की रेलगाड़ी इसी के साथ वापस लगाते हैं 101.3 पर, और कल चलेंगे एक और प्यारी सी राइड पर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। फॉर ऑल योर बिजनेस प्रमोशंस, जितने भी बिजनेस ओनर्स हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल आफ्टर द शो टू बुक योर एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स 416-569-7812, 416-569-7812। कल तक के लिए शालिनी को दें इजाजत, नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम,
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.fm.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी बिंदर भाइयों, ये जो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन, गिफ्ट बिंदर भाइयों, सौगात, तोहफा। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट हमारे घर में होता है। जो गिफ्ट हमें शादी में मिली होती है, डिनर सेट हो या सोन पापड़ी, तो थोड़े दिनों के बाद दूसरों की शादी की शोभा बढ़ाती है, क्योंकि हमारे घर से रिसाइकल होकर वहीं पर पहुंच जाता है। और एक बात बताए, कई बार गिफ्ट में बक्सा इतना बड़ा मिलता है, इतना अच्छी तरह से पैक किया होता है कि लगता है कि अंदर से आईफोन निकलेगा। और जब निकलता है तो मुंह धोने का साबुन। आपके साथ ऐसा हुआ? यही तो गिफ्ट का मजा है। ये हेडो वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: one at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
2: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देन के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे
4: एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा
3: ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी
5: अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है
6: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है
5: लिमिटेड सीट्स हैं आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 647-299-4757 647-299-4757 teamsabarwal.com

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
7: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
8: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बिंदर भाइयों, फीफा वर्ल्ड कप बात हो रही है। टोरंटो में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के पुर्तगाल बनाम क्रोएशिया मैच की, इस मैच की टिकटें ब्लैक मार्केट और रीसेल साइट्स पर जानते हैं कितने में बिक रही है? पूरे $30,000 यानी भारतीय रुपयों में कहे तो लगभग 25 लाख रुपए की एक टिकट। 25 लाख रुपए में तो हमारे यहाँ लोग पूरी शादी निपटा देते हैं, 2 साल का राशन भर लेते हैं और बचा हुआ पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ लोग सिर्फ 90 मिनट का फुटबॉल मैच, वो भी जो टीवी पर लाइव प्रसारित होता है, उसे रियल में देखने के लिए इतना पैसा लुटा रहे हैं। कौन कहता है कनाडा टेक्निकल रिसेशन में है? अब आप सोच रहे होंगे कि इस मैच में ऐसा क्या है, क्या फुटबॉल सोने की बनी है या खिलाड़ी हवा में उड़कर गोल करेंगे? तो वजह यह है बॉस कि ये मैच दो GOAT यानी कि गोट्स यानी कि सर्वकालिक महान खिलाड़ियों का आखिरी वर्ल्ड कप मैच हो सकता है। एक तरफ है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरी तरफ है लुका मॉड्रिच, जो भी टीम हारी उसका बुरिया बिस्तर गोल। यानी रोनाल्डो के फैंस का कहना है चाहे घर बिक जाए या कार, रोनाल्डो भाई को आखिर बार लाइव देखना ही है। वैसे मजे की बात तो ये है कि फीफा ने ये टिकटें शुरू में सिर्फ $300 से $800 में बेची थी, पर हमारे रीसेल करने वाले भाई बहन तो सरकार के नियमों को भी टेंगा दिखा रहे हैं। ओंटारियो सरकार ने कानून बनाया था कि महंगे में टिकट मत बेचना, पर इन वेबसाइट्स ने कह दिया कानून अपनी जगह, हमारा मुनाफा अपनी जगह। हाँ जी मित्र भाइयों, अगर आपके पास $20,000-$30,000 वैसे ही पड़े हैं तो मैच देखने जरूर जाइएगा। ये हिडन वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। फीफा की हर खबर weeklyvoice.com पर।
9: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
8: हाँ जी बिंद्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बिंद्र भाइयों, आप जानते ही हैं कि मिसिसागा और सर्दन ओंटारियो में बेहतरीन डेंटल केयर से आपके परिवार की मुस्कान को संवारने है डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट। एक खूबसूरत और स्वस्थ मुस्कान के लिए आज ही 905-564-2021 पर कॉल करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और आप जानते ही हैं डॉक्टर बिश्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं हमारी डेंटल जो अवेयरनेस है उसे और अवेयर करने के लिए। आज सीधे चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं किस टॉपिक पर आज हमें एजुकेट कर रहे हैं। डॉक्टर बिश्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज हमारे श्रोताओं को एजुकेट करें और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर बताएं। ओवर टू डॉक्टर भीष्मा जी।
10: थैंक यू सो मच जतिन जी। जैसे कि आपको और हमारे श्रोताओं को मालूम ही होगा, हम कुछ हफ्तों से डेंटल क्लीनिंग की सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज हम उसका फाइनल रिव्यू करेंगे और एक लास्ट कंडीशन के बारे में बात करूंगा शॉर्ट में। सो बेसिकली हमने अब तक बायोफिल्म के बारे में बताया था, सो मैं आज फिर से थोड़ा उसको रिव्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि बायोफिल्म को जानना और वो क्या कर सकती है आपके दांतों को और मसूड़ों को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बायोफिल्म बनती है, बायोफिल्म यानी सलाइवा और बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स का एक लेयर होता है जो दांतों के आसपास जमा रहता है। इट ब्रेक्स ऑफ आफ्टर ब्रशिंग और एक मिनट के अंदर अंदर वो फिर से सलाइवा की एक परत आपके दांतों के ऊपर बन जाती है। उसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, फूड पार्टिकल्स आते हैं, वो बायोफिल्म होती है। और अगर उसको फ्रीक्वेंटली यानी ट्वाइस अ डे ब्रेक नहीं करते तो वो डिपॉजिट बन जाती है, प्लाक बन जाती है, और प्लाक फिर मिनरल्स जो सलाइवा के होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके हार्ड बन जाता है, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं या टार्टर बोलते हैं। तो ये टार्टर बैठा बैठा दांतों के बीच में जगह करता है, जिंजिवाइटिस को पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट करता है। काफ़ी टाइम क्लीनिंग के बाद आपको महसूस होगा कि मेरे दांतों के बीच में जगह हो गई। वो जगह पहले से थी, वो वहाँ पे सिर्फ कचरा जमा हुआ था, बैठे बैठे वो बोन लॉस कर रहा था, इसलिए फिर आपको थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे महसूस होता है। दूसरी बात यह है कि दांत का जो ऊपर का लेयर है, फर्स्ट लेयर जिसको इनामल बोलते हैं, वो सिर्फ दांतों की नेक जितना है। सो इट गोज अप टिल द नेक ऑफ द टूथ एंड देन सेकंड लेयर होता है। सेकंड लेयर सेंसिटिव होता है, जब तक कचरा उसके ऊपर होता है आपको सेंसिटिविटी महसूस नहीं होती, बट क्लीनिंग के बाद काफ़ी टाइम महसूस हो सकती है क्योंकि वो लेयर एक्सपोज हो गया। उसको एक्सपोज करना ज़रूरी है, उसके बाद हम उसको डिसेंसिटाइज करते हैं हमारा फ्लोराइड लगा के। बट साथ में आप सेंसिटिविटी टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं घर पे, वहाँ पे तो 20 मिनट तक कोई भी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट लगा सकते हैं वहाँ पे, जैसे विको वज्रदंती है हमारा इंडियन, फिर सेंसोडाइन का रैपिड रिलीफ है, कोलगेट का प्रो रिलीफ है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं डिसेंसिटाइज करने के लिए, एंड यू आर गुड। अगर कचरा वहाँ पे रहेगा तो फिर बोन लॉस ज़्यादा होगा और दांत हिलेंगे नहीं, बट वो इसलिए नहीं हिल रहे क्योंकि कचरा एक स्टेंट की तरह काम कर रहा है, दांतों को जकड़ के रखता है। तो एक बार अगर क्लीनिंग नहीं कराओगे तो बोन लॉस होता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, फिर दांत ही हाथ में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मूव करने लगेंगे, तब तक इट वुड बी टू लेट, द ओनली ऑप्शन वुड बी एक्सट्रैक्शन। उसके बाद हमने क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात की थी, 6 months, 4 months, 3 months विच इज़ आइडियल। वो मॉर्बिडिटी के ऊपर है, ब्लीडिंग और प्रोबिंग कितना होता है आपको विजिट में उसके ऊपर है, कम होता है तो फिर हम फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, अगर ज़्यादा है रिकवरी उतनी अच्छी है नहीं, होम केयर उतना अच्छा है नहीं, तो फिर वी कंटिन्यू कॉलिंग यू फ्रीक्वेंटली। उसके बाद सिस्टमिक कंडीशन के ऊपर हमने बात की थी, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फिर पार्किंसन, और आज हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में के बारे में। तो अभी ऑस्टियोपोरोसिस में, ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में, पार्किंसंस में, सारे कंडीशंस में मेडिकेशंस ड्राई माउथ कॉज करते हैं। तो अगर माउथ ड्राई है तो एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है और उसकी वजह से कैरीज रिस्क बढ़ जाती है, प्लैक थोड़ा ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, कैलकुलस बहुत ईजिली बिल्ड होता है। तो फ्रीक्वेंट क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोपोरोसिस में डेंसिटी बोन की कम हो जाती है और जो बोन लॉस या फिर दांतों के आसपास का बोन लॉस, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, तो उसको हम फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते हैं, दांतों की मोबिलिटी के ऊपर हम नज़र रखते हैं। जैसे ही एज बढ़ती है पोस्ट मेनोपॉजल रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि ये बेसिकली फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है आफ्टर मेनोपॉज, मेल्स में कम मात्रा में पाया जाता है, हालांकि मेल्स में भी ये पाया जा सकता है. इट इज रिलेटेड टू हार्मोन सिस्टम. और काफी सारे मेडिकेशंस है जो इसमें थोड़े से रिस्की है व्हेन इट कम्स टू सर्जरीज, जैसे कि एलेंड्रोनेट रेजेंड्रोनेट हो गया, तो इसको हम बिसफॉस्फोनेट बोलते हैं. फिर हो गया डेनोसुमाब, वो बिसफॉस्फोनेट लाइक है पर नई जनरेशन का है. और ये सारी चीज़ें आईवी भी होती है, यानी इंट्रावीनस या इंजेक्शन के तौर पे. और काफ़ी टाइम पेशेंट को हम पूछते हैं कि आपके मेडिकेशंस क्या है, तो उनको याद रहता है कि वो जो रेगुलर डेली मेडिकेशंस लेते हैं वो उनको याद रहता है, बट ये हर छः महीने में एक बार ही इंजेक्शन लगाते ये क्या ना भूल जाते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर टू दैट यू कम्युनिकेट दिस टू योर डेंटिस्ट, क्योंकि अगर ये कोई भी एक इंजेक्शन आप ले रहे हो और आपने दांत निकलवाया तो बोन नेक्रोसिस यानी बोन डेथ की चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं. इसलिए इम्पोर्टेंट हिस्ट्री टेकिंग एंड रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज कंडीशंस. फिर अगर ये एंटी डिसप्टिव थेरेपी आप 2 साल से ज्यादा हो गए, यू हैव बीन ऑन दीज मेडिकेशंस, देन चांसेस ऑफ यू हैविंग दीज कॉम्प्लिकेशंस increases. और ये जो bisphosphonates होते हैं they famously stay in your system for a very long time even after stopping medications. ये सारे कभी medication stop तो नहीं करने चाहिए. It is in the purview of your physician to stop or start your systemic medications. We can sometimes ask for clearance, but other than that we can monitor and we can report and we can adjust our treatment according to your सिस्टमिक कंडीशंस. और दूसरी बात डेंचर्स का बहुत ख्याल रखना है. ज़्यादा अल्सर्स नहीं होने चाहिए, फिट उनका अच्छा होना चाहिए, कहीं पे बोन के साथ उनका फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. अगर आपके गम्स थिन हो तो कभी कभार बोन एक्सपोज हो जाता है, तो ऐसे भी बोन डेथ की रिस्क हो सकती है. और इम्प्लांट प्लानिंग मे बी अफेक्टेड बाई द बोन क्वालिटी. इम्प्लांट्स इज सॉर्ट ऑफ रिस्की इन दी सिचुएशंस, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. तो इसमें विथ मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल क्लियरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, टाइमिंग ऑफ द सर्जरी, यानी अगर आप डेनोसुमाब में हो तो इट इज़ एवरी 6 months एंड इट गोज आउट ऑफ योर सिस्टम आफ्टर 6 months. तो ये सब चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं. इसके साथ ही मैं हमारा एड्रेस बता देता हूँ आपको, 735 ट्वेन एवेन्यू, यूनिट नंबर 16, मेविस और ट्वेन के इंटरसेक्शन पे. और हमारा फ़ोन नंबर है 9055642021. थैंक यू सो मच जतिन जी.
11: डॉक्टर भीष्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बिंदर भाइयों जरूर कॉल कीजिएगा अपॉइंटमेंट के लिए 9055642021 और आप जानते ही है आपको पहुंचना है मिसिसागा में. और एड्रेस बहुत ही सिंपल है, 735 ट्वेन एवेन्यू यूनिट नंबर 16 इन मिसिसागा. drgajjar.com है वेबसाइट. भीष्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यही द वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रियास्विनी जी.

0: हाँ जी मित्र भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार है तो लीजिए इस हफ्ते का सवाल। अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत कौन से साल में हुई? 1969, 1985 या 1950? 1969, 1985 या 1950? सही जवाब आपको ईमेल करना है contest@weeklyvoice.com, contest@weeklyvoice.com। एक लकी विनर को मिलेंगे अफ्रीकन लायन सफारीज के पासेस। आप जवाब ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट lionsafari.com। थर्सडे तक हमें आपके सवाल के जवाब मिल जाने चाहिए। तो बंदर भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ईमेल कीजिए और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना मत भूलिएगा ताकि इनाम आप तक पहुंच सके। ये हिडो वॉइस, हम है आपके दोस्त यतीन। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बंदर भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
7: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
8: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम।
9: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
10: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
0: हाँ जी भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बंदर भाइयों, मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते तापमान 42 डिग्री के पार जाने की संभावना है। सूरज देवता इस मूड में है जैसे उनका बिजली का बिल किसी और ने भर दिया हो और वो फुल पावर में चल रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें। और हाँ, जो लोग इस धूप में भी बाबू ने खाना खाया पूछने के लिए बाहर खड़े रहते हैं, उनके लिए विशेष चेतावनी। बाबू का तो पता नहीं, पर आपका तरबूज जरूर बन सकता है, इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड जरूर रखिएगा, पानी खूब पिएगा। दूसरी एक खबर आ रही है कि घर के कामों से परेशान पतियों और पत्नियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर। जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट रोबोट तैयार किया है जो न सिर्फ बर्तन धोएगा बल्कि झाड़ू पोछा भी करेगा। आ गई न चेहरे पे मुस्कान। सबसे अच्छी बात, ये काम की बाई की तरह अचानक बिना बताए छुट्टी नहीं मारेगा और न ही पड़ोस की गोसीप आपके घर लाएगा। बस एक ही डर है, कहीं ये रोबोट भी काम करते करते इंस्टाग्राम पर रील्स देखना शुरू न कर दे। हाँ जी मित्र भाइयों, और इस मजेदार बुलेटिन में एक और खबर कहना चाहेंगे। एक गली क्रिकेट टूर्नामेंट में एक बड़ा विवाद हो गया। विवाद की वजह कोई नो बॉल या अंपायर का गलत फैसला नहीं था, बल्कि चिंटू के पापा थे जिन्होंने गेंद नाली में जाने के बाद बैट मेरा है मैं घर जा रहा हूं कहकर मैच ही रद्द करवा दिया। क्योंकि गली क्रिकेट में जिसके बैट बॉल और स्टंप होते हैं वो ही आखिरी फैसला सुनाता है। बंदर भाइयों, खेल भावना की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले। हाँ जी, तो ये थी आज की कुछ नरम गरम खबरें। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी, सूरज देवता ने वापस लेने से इनकार किया अपना गुस्सा, वैज्ञानिकों ने बनाया एक ऐसा रोबोट जो बिना नखरे किए धो सकता है घर के बर्तन, और अंतरिक्ष में एलियंस की खोज तेज, पर क्या उन्हें मिल पाएगा सच्चा प्यार? बस सुनते रहिए रेडियो वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। हाँ जी मित्र भाइयों, जी डू वॉइस, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। लिए चलते हैं आपको एक खूबसूरत नगमे की ओर जिसे स्पॉन्सर किया है यश विंडोज एंड डोर्स ने। मित्र भाइयों, उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा yashwindowsanddoors.com। कॉल भी कीजिएगा, धर्मेंद्र जी से आपकी बात होगी, फ्री एस्टिमेट दिया जाएगा 416-732-3600 यश विंडोज एंड डोर्स। खूबसूरत विंडोज एंड डोर्स, क्वालिटी बेहतरीन और सुरक्षा भी बेहतरीन करे आपके घर की 416-732-3600। आइए चलते हैं ये खूबसूरत नगमे की ओर।

0: आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान सुनो।

डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299, या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडिया का असली तड़का।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮਸਤ ਸੀ ਪਰ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਰੈਡ ਟੈਗ ਡੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਕੋਮਾ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਆਈਫੋਰਸ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਰੈਡ ਟੈਗ ਡੇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $114 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.69% ਤੇ $4900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ
4: अपने बिजनेस को बढ़ाना है एक नई ओर ले जाना है तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
5: हाँ जी मेरे भाइयों रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बंदर भाइयों इंश्योरेंस की बात, अब तक आपके कार इंश्योरेंस में 12 चीजें बिल्कुल मुफ्त, सॉरी मुफ्त नहीं ऑटोमेटिक शामिल होती थी, लेकिन अब इनमें से 9 फायदों को ऑप्शनल यानी स्वैच्छिक बनाया दिया गया है, जैसे कि इनकम रिप्लेसमेंट, एक्सीडेंट के बाद सैलरी मिलना, केयर गिवर बेनिफिट और यहां तक कि अंतिम संस्कार का खर्च भी। अब आप सोचेंगे अरे वाह इन सबको हटा देते हैं, प्रीमियम के पैसे बचेंगे, उसी पैसे से वीकेंड पर पार्टी करेंगे, तो जरा रुकिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सब चीजों को हटाने से पूरे साल में आपके सिर्फ $75 से $100 ही बचेंगे, यानी महीने के बमुश्किल $7-8, जो कि टीम हॉर्टन्स की 2 कॉफी की कीमत के बराबर है। अब सोचिए महीने की 2 कॉफी बचाने के चक्कर में भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो गया तो जो नुकसान होगा वो लाखों में जा सकता है, विशेषकर हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड भाई बहन है जैसे प्लम्बर, कॉन्ट्रैक्टर या उबर चलाने वाले, अगर वो साल भर काम पर नहीं जा पाए तो $20,000 से ज्यादा का फटका लग सकता है और जेब में बचेंगे कितने, वही 2 कॉफी के पैसे। इंश्योरेंस रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, संभल कर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देखना। और सुनिए ट्विस्ट अभी बाकी है, नए नियम के मुताबिक अगर आपने ये ऑप्शनल कवर नहीं लिया तो आपकी कार से टकराने वाले, पैदल चलने वाले या साइकिल चलाने वाले भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये एक्स्ट्रा कवर नहीं मिलेगा। तो भाई ज्ञान की बात ये है कि जब भी अपनी पॉलिसी रिन्यू होने आए तो आंखें बंद करके नेक्स्ट नेक्स्ट मत दबा देना, अपने इंश्योरेंस वाले एजेंट भाई साहब को फोन लगाइए, उनसे पूरे नियम समझिए, 2 कॉफी के पैसे बचाने के चक्कर में कहीं पूरी कार और अपनी सेहत दांव पर न लग जाए। हाँ जी विंद्र भाइयों इंश्योरेंस पॉलिसी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑन्टारियो में कार इंश्योरेंस के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: हाँ जी मित्र भाइयों, ये रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। दिस फ्राइडे रेडियो वॉइस होगा लाइव ऑन लोकेशन फ्रॉम रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट कनाडा डे प्रमोशंस। बहनों भाइयों, कनाडा डे की जबरदस्त सेल लगी है, वहां पर जरूर पहुंचिएगा। 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 6474487402 दिस फ्राइडे रेडियो वॉइस होगा लाइव ऑन लोकेशन फ्रॉम रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट।
1: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
2: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
3: अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल। एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है।
4: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है।
3: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757 6472994757 teamsabarwal.com।
5: रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल।
6: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
7: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop connection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
6: हाँ जी मेरे भाइयों, जी वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए नजर करते हैं बॉलीवुड पर। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल ने सिनेमा घरों में आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में जबरदस्त कमाई की है और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। अक्षय पाजी ने पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर जो सूखा देखा था, उसके बाद इस जंगल में उन्हें असली हरियाली नसीब हुई है। थिएटर में मीम्स का ऐसा स्टॉक मिल रहा है कि लग रहा है आधे क्रेडिट तो इसी फिल्म ने अपना लोन चुकता कर देंगे। कॉकटेल 2 ने पार किया 120 करोड़ का आंकड़ा। शाहिद कृति की चांदी। शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदादा की फिल्म कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे हफ्ते में 120 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके साल की बड़ी हिट्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। लगता है पब्लिक को असली कॉकटेल से ज्यादा शाहिद कृति की ऑन स्क्रीन कॉकटेल का नशा चढ़ गया। फिल्म की कमाई देखकर प्रोड्यूसर्स के घरों में सचमुच की कॉकटेल पार्टी शुरू हो गई होगी। प्रियदर्शन ने छोटी हेरा फेरी 3 कहा छोटी नहीं, मैं तो छोड़ रहा हूं, यानी कि अब शायद हेरा फेरी 3 कभी नहीं बनेगी। दिग्गज डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कंफर्म कर दिया है कि वो हेरा फेरी 3 के प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह फिल्म अब शायद कभी बनेगी ही नहीं। मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर, अली फजल ने कहा बड़ा एक्सपेरिमेंट है। मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर को अब एक नए फीचर फिल्म के रूप में थिएटर में लाने की तैयारी चल रही है। कालीन भैया और गुड्डू पंडित के इस बड़े स्क्रीन डेब्यू पर अली फजल ने कहा कि यह एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसमें असली रस और नया फ्लेवर मिलेगा। ओटीटी का भौकाल अब सीधे 70mm के पर्दे पर। थिएटर वालों को अभी से वार्निंग दे देनी चाहिए कि पॉपकॉर्न के साथ साथ कटकट्टा और कट्टा संभालने की ट्रेनिंग भी ले ले, क्योंकि मिर्जापुर वाले बिना इसके शांत नहीं बैठते। हाँ जी, ये थी बॉलीवुड की बेहतरीन खबरें। आज बॉलीवुड के गलियारों में इसी पर बात हो रही है। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
7: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: हाँ जी मित्र भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार है तो लीजिए इस हफ्ते का सवाल। अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत कौन से साल में हुई? 1969, 1985 या 1950? 1969, 1985 या 1950? सही जवाब आपको ईमेल करना है contest@weeklyvoice.com, contest@weeklyvoice.com। एक लकी विनर को मिलेंगे अफ्रीकन लायन सफारीज के पासेस। आप जवाब ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट lionsafari.com। थर्सडे तक हमें आपके सवाल के जवाब मिल जाने चाहिए। तो बंदर भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ईमेल कीजिए और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना मत भूलिएगा ताकि इनाम आप तक पहुंच सके। ये हिडन वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडिया का असली तड़का।
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009, 289-401-0009।
4: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, स्वीट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।
5: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

मुखौटों से भरी है या बिंदास? मैं तो भाई ऐसे ही हूँ, वाले स्वैग से भरी है। सोशल मीडिया पर ये सब भरा है। ये कैसा बुखार है जो एज कोई भी हो सब पर चढ़ा है, और अच्छे से चढ़ा है इस सोशल मीडिया पर, जहां वेलागिरी, फेकनेस, फ्रॉड्स, बुलिंग और परिवार वालों से दूर करने जैसे इल्जाम हैं, वहीं बिछड़ों को मिलाने, दैट गुड फीलिंग ऑफ वैलिडेशन दिलाने और अपडेट रहने, एंड यस टैलेंट एंड थॉट्स शेयर करने का प्लेटफॉर्म वाले क्रेडिट्स भी इसको चाहते हैं। ये तो आप मानेंगे, है ना? So on this social media day today, this is Swati and Hazel back in studios on Filmy Nukers, Yamaha at 5 saying कि फायदा और नुकसान इसका, भाई एक तरफ सोशल मीडिया पर अपनी वेलागिरी वाला टाइम पास का आनंद, वो एक तरफ, and that's what everyone wants to do, that's what I wanna do।

0: Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
2: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection aur zabardast offers. Finance kare sirf 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
1: कभी client के off-grid cabin के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही powerful turbocharged engine घर की सबसे प्यारी delivery ला रहा है। एक नया dollhouse, Toyota Tacoma. Reliable power हर important delivery के लिए. ये time है Toyota का. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from $115 weekly for 36 months at 4.89% APR with $4,900 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: Let's turn it up.
7: Let's kick it up.
8: Let's shake it up.

0: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक। यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक। इस साल की जबरदस्त ऑफर एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर। कॉल करें DonValleyNorthLexus.com या विजिट करें इन पर्सन। A proud member of Wings Auto Group.
1: All right, फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी एंड टाइम है आपकी उनसे बात करा दी जाए जो आपके लिए एक सुनिश्चित करियर की बात करते हैं। वैसे ही इंतज़ाम है उनके पास, उनका कॉलेज बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में आता है इसलिए भी क्योंकि गारंटीड आप वहाँ से अपने एक फ्यूचर ब्राइट लेके निकलते हैं, प्लस बहुत कम समय में बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में वहाँ पे आप अपना करियर सेट करके बाहर आएंगे। और बात चाहे प्री मेट की करें या RMT की या कोई और कोर्स की, वहाँ पे जो कोर्सेज आप करके निकलेंगे ये बात मान के चलें कि आपका जो फ्यूचर है आने वाला इट्स गोइंग टू बी ब्राइट ब्राइट एंड ओनली ब्राइट। बात कर रही हूँ मैं रूहानी कॉलेज की, क्वीन और कैनेडी के इंटरसेक्शन पर ये कॉलेज है और इतनी सारी यहाँ से मदद मिलती है पढ़ाई के अलावा, फाइनेंस के अलावा और बहुत सारे आवर्स की मदद जो हो जाती है ना कि आप जिस समय करना चाहें उस समय करें। सातों दिन होता है, एक्सटेंडेड आवर्स होते हैं सुबह 8 से रात के 11 बजे तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पर फिर भी डिटेल में बात करा देती हूँ ताकि जो जानकारी मैं नहीं दे पा रही हूँ वो आपको वो भी मिल जाए। रूहानी कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हैं ओम जी वेलकम।
2: थैंक यू स्वाति जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत मैटर करती है, लेकिन जब भी हमें कुछ करना होता है तो सोचते हैं कि टाइम नहीं है, हमारी जॉब है, कैसे कर पाएंगे। तो देखो इसी को देखते हुए 7 days ओपन रखा हुआ है कि 7 days ही, जैसे कल कैनेडा डे है, फिर भी जो हमारी क्लास है कुछ क्लासेस चलेंगी जो कि जरूरी है। तो इसमें हम मेन ये देखते हैं कि जब किसी ने एडमिशन लिया तो वो जो हमारे यहाँ से निकलेगा उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेक श्योर करते हैं कि इतनी हम अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से उनको ट्रेनिंग दें कि दे गेट डायरेक्टली द जॉब, जो उनकी लैंडिंग हो सीधा जॉब में हो, बल्कि जॉब से पहले सॉरी पढ़ाई से पहले ही उनके पास में जॉब के ऑफर्स हों जो कि हमारे पास होती हैं।
1: जी वेरी नाइस।
2: जी जी
1: मैंने यही सुना है कि RMT के लिए तो स्पेशली आपके पास जो लोग करते हैं उनके पास करने मतलब विदिन 52 weeks हो जाता है जो कि बाकी जगहों से बहुत शॉर्ट टाइम है, ये प्लस गारंटीड रिजल्ट है तो बन के ही निकलेंगे एक बार एडमिशन ले लिया, ये एक तय होता है, ये नहीं कि अरे रह गए। तीसरी चीज़ ये कि आप जब तक बन के निकलते हैं, अभी तो आपने फाइनल एग्जाम दिया भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी हाथ में नहीं आया है आपके और आपको जॉब ऑफर्स आने लगते हैं, ये जो एक चीज़ होती है ना कॉन्फिडेंस कि अरे हमें पता है हमने सही दिशा पकड़ी है इस कॉलेज के जरिए, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो जाती है जब भी, क्योंकि कई बार देखा गया है ना ओम जी हम कितनी जगह से लोग सुनते हैं कि यहाँ से कोर्स किया वहाँ से कोर्स किया और फिर धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए या काम के लिए।
2: जी जी जी तो उसमें टाइम और पैसा दोनों जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो आपका टाइम भी कि आपका पैसा चाहे कम लगे ज्यादा लगे जो भी लगे, बट वो आपका एक टाइम है, आप उसमें कुछ और भी कर सकते थे। तो आप मेक श्योर करो कि अगर आप निकलते हो जैसे स्टडी करके तो आपके पास जॉब हो, आपके पास अच्छी इनकम हो और जो कॉलेज हर तरीके से आपकी हेल्प करने को तैयार हो, तो ये सारी चीजें देख के ही आगे एडमिशन लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
2: एक बेटर आप फ्यूचर अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी जी
1: मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि रूहानी कॉलेज का आप एक बार टूर जरूर करें, मैंने किया हुआ है एंड यू विल लाइक इट। तो आप एक बार नंबर मैं देती हूँ, वहाँ पे बात करें, अपॉइंटमेंट लें, समझें कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके लिए, कौन सा उचित है कौन सा नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी कोर्सेज हैं जैसे कि प्री मेट कोर्सेज की यहाँ पे बात होती है। नंबर है 905-731-2555 905-731-2555 RuhaniCollege.com वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी जाके नंबर ले सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि एक बार आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लें, कॉलेज का टूर लें, देखें, बात करें कि कहाँ पे क्लासेस जो हो रही होती हैं वहाँ पे आपको क्लासेस लेते हुए भी लोग बच्चे दिखेंगे या स्टूडेंट्स दिखेंगे एंड यू कैन फिगर आउट कि हाउ गुड इट इज़। तो अगेन नंबर इज 905-731-2555। थैंक यू ओम जी, कल आपसे फिर से कनेक्ट करते हैं।
2: थैंक यू।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
0: फायदा उठाएं जून के हॉटर ट्रेड्स का विद अमित खुराना। 3 इयर्स फिक्स 4.19%, 5 इयर्स फिक्स 4.24%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%। साथ ही मिले $5,100 तक का हॉटर कैशबैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर। ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Hum honge aapke saath hamesha.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा। बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार। ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: एक्सक्लूसिवली पिक्ड।

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: Say whoa! अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है
2: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है
1: लिमिटेड सीट्स हैं आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757 6472994757 teamsabarwal.com
3: रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल
4: गेट स्मार्ट विद सौरभ सबरवाल ऑन फिल्मी नुक्कड़
5: Well, हम इस खास सेगमेंट में फिर मिल गए आज ट्यूसडे ये सेगमेंट बहुत इंतजार रहता है हम सभी को क्योंकि हमारे साथ जुड़ते हैं टीम सबरवाल से सौरभ सबरवाल जी अपने आप में एक लंबा अनुभव है इनका और साथ में एक लेगेसी लेके चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत आसान लफ्ज़ों में बात तरीके से बता देते हैं जो बहुत पेचीदा लगते हैं कई बार हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो लगता है हमारी तो भाई सर के ऊपर से निकल गई एक लेमेंस लैंग्वेज में लेकिन जब वो चीज़ समझ में आती है तो हमें अच्छा भी लगता है कि चले जानकारी पुख्ता है हमारी और साथ में फिर हम डिसीजन लेके बेटर कर पाते हैं व्हेन इट कम्स टू आर डिसीजंस यहाँ पे इन ओंटारियो इन कैनेडा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट तो चाहे कोई भी पॉलिसीज यहाँ चल रही हों कोई भी अनाउंसमेंट्स चल रही हों या मार्केट किस रो में बह रहा हो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक आसान शब्दों में पता है यहाँ पे चलती हैं आपके कोई सवाल रहते हैं उसके बावजूद तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं नंबर रहता है हमारा इस सेगमेंट के दौरान भी 4165930055 आप सौरभ जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं सवाल पर अगर सेगमेंट के बाद उनसे बात करना चाहते हैं तो 6478648844 उनका नंबर रहता है बट फिलहाल तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यू कैन कॉल इन द स्टूडियो लाइन और पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस बाकी कुछ सवाल मेरे पास हैं आप ही सभी के हैं उन पे हम बातें तो करते रहेंगे सौरभ जी वेलकम
6: जी थैंक यू वेरी मच स्वाति जी और अब लग रहा है प्रॉपर समर इट इज गेटिंग वेरी वेरी वेरी हॉट और होपफुली एवरीबॉडी इज कीपिंग देमसेल्फ्स हाइड्रेटेड और बहुत एक्साइटिंग सेगमेंट होगा आई थिंक आज हमारा क्योंकि काफी अच्छी अपडेट्स हैं और यू नो लेट्स गेट इनटू इट
5: यस तो ये पहले आपने कहा हॉट हॉट समर्स अब गर्म तो हो रहा है व्हाट अबाउट हाउसिंग मार्केट ये कितना गर्म है इस वक्त क्योंकि कहते हैं कि इस वक्त जो भी पैराफेरिनिया होता है ना कि आसपास की ये पॉलिसीज ये मार्केट अफोर्डेबिलिटी के बारे में कहते हैं कि अरे फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है आप इस हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को कैसे देखते हैं इस वक्त
6: जी बिल्कुल देखिए अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक हेडलाइन आई थी वन ऑफ द मेजर न्यूज़पेपर्स की कैनेडियन हाउसिंग मार्केट सॉरी कैनेडियन हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जो है इट इज in its best level in about 4 years.
5: Wow.
6: So, jo, and that is a very huge thing, kyunki agar aap dekho, to affordability, jo, Canadian housing affordability, jo, it's basically hit 4-year best.
5: Mm-hmm.
6: To close to pre-pandemic norms, basically, agar aap dekho to.
5: Mm-hmm.
6: And that is very, very encouraging, especially for buyers, क्योंकि यू नो इट इज अ ग्रेट न्यूज बट ये देखना बड़ा जरूरी है कि व्हाट डज इम्प्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी रियली मीन तो क्या होता है देखो व्हाई हैज अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव्ड काफी की रीजंस हैं थ्री की रीजंस हैं रियली एंड नथिंग देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट मॉर्गेज इंटरेस्ट जो है दे हैव कम डाउन फ्रॉम व्हाट वी एक्सपीरियंस देम अ लिटिल व्हाइल बैक हाउसिंग इनकम्स कुछ हद तक ग्रो करी हैं बट मोर इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्चुअली होम प्राइसेस जो हैं, दे हैव जनरली स्टेबलाइज्ड आफ्टर यू नो पैंडेमिक के टाइम के रैपिड गेन्स के बाद, तो देयर फाइनली स्टेबलाइजिंग, गेटिंग बेटर फ्रॉम, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ सेलर्स, सॉरी फ्रॉम अ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो अफोर्डेबिलिटी काफी हद तक अच्छी हो गई है, चाहे आप कॉन्डो देखें, चाहे आप टाउन हाउसेज देखें, डिटैच देखें, इन स्पेशली लाइक यू नो वेरी हॉट मार्केट्स, ओकविल, मिसिसागा, नॉट लाइक कि दो तीन चार घंटे दूर जाके अफोर्डेबिलिटी है. मेजर सिटीज, मेजर म्यूनिसिपैलिटीज प्राइसेस हैव बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव. तो कॉन्डोज जो हैं, दे आर सीइंग अ वेरी, दे आर एक्चुअली सीइंग द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट इफ यू विल. कॉन्डो अफोर्डेबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द aspects of you know housing low especially low rises agar compare kare to it's become a more realistic entry point for many first time buyers.
5: Okay.
6: So somebody who's looking to not even buy, I would say even kuch had tak jo first time jaise hota na ki ghar se nikal rahe hain, are fresh out of university, landed a job, now they want to move out, jo bahut saalon pehle a cycle that I went through.
5: Ha, parents, desi parents ko pasand kam aati hai, par yeah, ye cycle to ab hone lagi.
6: So, you know, right off the university, college, got the job, got into the business, started making a little money, now said, yes, I can move out, got into a condo, got into a small house with friends, ye wo sare. To basically kya hai ki, you know, वो वाली साइकिल, अफोर्डेबिलिटी साइकिल वापस आ रही है, आ गई है. तो इसलिए यू नो इट्स बिकम वेरी रियलिस्टिक एंट्री पॉइंट, जैसे मैं बोला कि फॉर मेनी फर्स्ट टाइम बायर्स, फर्स्ट टाइम इवन रेंटर्स जो हैं उनके लिए.
5: ओके.
6: तो इट हैज बिकम अ लॉट मोर अटेनेबल देन इट वाज फॉर मेनी इयर्स अगो. बट ये नहीं है कि इट हैज बिकम you know very very friendly pocket wise. It's still expensive, but it is moving in a positive direction.
5: Okay.
6: Now current homeowners ke liye, you know, obviously ye main zarur kehna chahunga ki don't interpret this headline as a bad news, kyunki real estate jo hai, you know, it's always a long term investment.
5: अच्छा.
6: मार्केट्स नेचुरली जो हम बहुत बार बोलते हैं, इट्स अ नेचुरल साइकिल, इट गोज अप एंड डाउन. द फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए थे, इट केम डाउन ड्रास्टिकली, बट देन सिंस देन इट्स बीन अबाउट 15-16 इयर्स, मार्केट्स हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली. नाउ इट्स टाइम फॉर करेक्शन एंड इवेंचुअली इट विल गो अप अगेन एंड नोबडी कैन स्टॉप दैट रियली. और मेनी होम ओनर्स जिनने बाय किया था कुछ साल पहले, रेट्स वर एक्सेप्शनली लो, राइट? सो इट्स इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट एंड यू मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द टाइम यू आर ऑन द मार्केट फॉर समथिंग. तो एंड इट वाज, यू नो, मे बी इट वाज फूलिश नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ सच लो रेट्स एट दैट टाइम.
5: ओके, ठीक है.
6: तो इसलिए एंड मार्केट एक्सपीरियंसेस जैसे होते हैं ना कि बहुत रैपिड ग्रोथ कई बार हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है जो हमने देखी है, बट राइट नाउ इट्स बिकमिंग स्लोअर ग्रोथ एंड इट्स बिकमिंग मोर बैलेंस्ड,
5: कंसिस्टेंट टाइप की है. छोटे छोटे कदम उठ रहे हैं लेकिन जमते हुए उठ रहे हैं.
6: बिल्कुल. और बायर्स के लिए, यू नो, लाइक आई सेड, आई थिंक आई ऑलमोस्ट सेड एवरी सेगमेंट कि टुडेज मार्केट जो है इट ऑफर्स most amount of advantages for the buyers.
5: Right.
6: There are more choices, more inventory means aapke paas select karne ke liye bahut hai. Ek kisam se aapka jo pressure hai that buyers face, wo kaafi had tak kam hai, jo hame kaafi experience karne ko mil raha tha during the pandemic time.
5: Okay.
6: Ek ghar aata tha, list hota tha, by the night or by next morning it was sold. Firm, multiple offers. So, ye obviously, you know, buying experience pe thoda sa dabav deta hai. And then now the tables have turned and buyers have a lot more choice.
5: Yeah.
6: And a lot more less pressure, if any, actually, I would say.
5: ओके, तो ये तो ही अफोर्डेबिलिटी की बात. हमें मेरे पास एक और है सवाल, मैं सवाल पहले पूछ लेती हूँ, विल गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक, फिर हम आपसे जवाब जरूर जानना चाहेंगे उसका. इट्स अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट चार्जेस में जो चेंजेस आए हैं, जहाँ पे $1.5 बिलियन की बात हो रही है, और उसका क्या इम्पैक्ट रियल स्टेट पे हम आप देख पा रहे हैं वो जरूर आपसे समझेंगे. बट छोटे से एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं. सौरभ जी हमारे साथ जुड़े रहें.

0: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located at 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmi Nukkad. वेल अभी हमने बात करी सौरभ जी से हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के बारे में और उनका ये कहना है कि इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स हम कह सकते हैं बल्कि बेस्ट ही है फॉर बायर्स और इस वक्त अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है. आप इसका फ़ायदा उठाएं उठाएं उठाएं क्योंकि आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स और जो इन्वेंट्री मिल रही है और उन्होंने बहुत सारी और वजह बताई हैं यहाँ पर. बट निष्कर्ष ये निकल रहा है अगर आप बायर हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, गोल्डन टाइम फॉर यू टू बाय. अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली अच्छी हो सकती है. अच्छा, इस अफोर्डेबिलिटी में कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशन भी है. किसका? अमर अकबर एंथनी का. कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन. अब ये कौन है अमर अकबर एंथनी? एक है फेड सरकार, एक है ओंटारियो सरकार और एक है आपकी सिटी ऑफ टोरंटो. ये तीनों ने मिलके एक ऐसा डिसीजन लिया है हाउसिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप एक इन्होंने करी है कि खर्चा बेशक $1.5 बिलियन का है लेकिन इसमें कहा जा रहा है 40-60% डेवलपमेंट चार्जेस जो है रेजिडेंशियल वाले वो कम हो सकते हैं फ्रॉम 2026 टू 2029. अब इसको समझना तो बनता है कि मेरे लिए इसमें क्या है और इसमें क्या कैच है अगर है कोई, नहीं है तो कितना सिंपल है ये. तो उसके लिए हु बेटर देन सौरभ जी, उन्हीं से पूछ लेते हैं तभी तो हम कहलाएंगे ना गेट स्मार्ट विद सौरभ सबरवाल. तो सौरभ जी क्या खेल है ये?
2: जी बिल्कुल, देखिए सो जैसे आपने बेसिकली यू नो कहा कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं यू नो द सिटी ऑफ टोरंटो इज बेसिकली कटिंग देम बाय ऑलमोस्ट 60% रिड्यूसिंग देम एक्चुअली एंड देन एंड पार्ट ऑफ अ 1.5 बिलियन एग्रीमेंट जो है इट्स एम्ड एट एनकरेजिंग न्यू हाउसिंग कंस्ट्रक्शन. बट मेन क्वेश्चन ये है कि विल इट एक्चुअली मेक हाउसिंग मोर अफोर्डेबल. So development charges, obviously, you know, this is almost like a everyday question that I get, ki what are the development charges? Ye basically fees hoti hai that the builder pay to municipalities jab construction hoti hai condos ki, gharo ki, you know, any kind of resale or like construction of houses, basically. So this is the fees that's paid to municipalities by the developers. Now, they help in, you know, road construction, water, sewer infrastructure, parks, community centers, transit. And yeah, eventually, you know, obviously because of inflation, many other things, these costs increase substantially over many, many years. Mm-hmm. And they have, you know, they have substantially increased over the past years. So why is the city reducing them? Okay. So, you know, अब क्या हो रहा है कि ये जो मेनी हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, यू नो दे बिकम वेरी फाइनेंशियली डिफिकल्ट टू बिल्ड. हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं जो बिल्डर दे हैव टू गो थ्रू. राइजिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स एंड ऑब्वियसली स्लोअर सेल्स बिकॉज ऑफ द वे द मार्केट इज एंड यू नो द बिल्डर्स हैव डिलेड क्वाइट अ लॉट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड इनफैक्ट दे हैव ऑल्सो कैंसल्ड अ लॉट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एज वेल. So what has happening is lower development charges will improve the project economics. Ek kisam se. To goal kya hai ki encourage these developers to start building again. Because dekhiye hum jitna bhi bolte hain market bahut slow hai, market ka bhatta baith gaya, jitna whatever you say. At the end of the day, aaj hum agar construction nahi kar rahe, aaj ki date mein there is no construction. Aaj as of today, next month, 2 months, 3 months, 6 months, ek saal, we may not you know, feel any difference. जी. But असली difference हमें पता चलना है 3 से 4 से 5 साल बाद.
1: ये आपने पहले भी ये बात करी थी कि अभी स्लो है या रुक गया है पर बाद में इसके repercussions हमें झेलने पड़ जाएंगे.
2: Exactly. क्योंकि देखिए जब हम कितना भी बोलते रहे कि you know we cry about the current state of the market, but at the end of the day, if we don't have enough houses and condos, we will only compete against what is existing and, you know, what is available out there. So housing crunch is definitely there, but it is a cycle, as I always say. 2000 ki market, 92 ki market bahut different thi, 2000 ki market bahut different thi, 2008 ki market bahut different thi, and then 17 was very different, and then COVID was extremely different, and now we are in a very, very different market. So you see, it changes. It's a big cycle every couple of years. So now what's happening? कि यू नो गोल तो है कि भैया इनकरेज करो बिल्डर्स को बनाने के लिए फिर से एंड विल क्वेश्चन ये उठता है कि विल द बायर्स सी लोअर होम प्राइसेस इमीडिएटली क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गोल इज व्हाट टू मेक श्योर हाउसिंग इज अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी फॉर फ्यूचर जनरेशन
1: जी बिल्कुल लॉन्ग टर्म हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं
2: एग्जैक्टली मगर इमीडिएट वाली बात जो है विल द बायर्स सी लोअर होम प्राइसेस इमीडिएटली प्रोबेबली नॉट डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं यू नो दे आर ओनली वन कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोजेक्ट
1: ओके
2: सो बिल्डर्स जो हैं दे फेस लॉट मेनी थिंग्स क्योंकि यू नो लैंड कॉस्ट हो गई लेबर कॉस्ट हो गई बिल्डिंग मटेरियल्स हैं फाइनेंसिंग कॉस्ट है अप्रूवल्स जो हम रेड टेप की बात करते रहते हैं हमेशा म्यूनिसिपल अप्रूवल डिलेज दैट इज द रेड टेप वी रेफर टू मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट टैक्सेस एंड फीस हैं तो लोअरिंग डेवलपमेंट चार्जेस डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन लोअरिंग सेलिंग प्राइसेस
1: ओके
2: जो अभी आपको बिल्डर्स
1: ये भ्रम मुझे लगता है ये भ्रम है लोगों को बस
2: जी देखो जो बिल्डर्स अभी डिस्काउंट दे रहे हैं फ्लेक्सीबिलिटी दिखा रहे हैं That is because of the current state of the market, not because, you know, development charges and this and that. They obviously, there is a lot of inventory in the market right now, which is why we're able to get very, very good deals. So, long story short, right away, immediately, overnight, we're not going to see any major changes.
1: Okay.
2: Now, for next question aata hai. तो इज इट रियली गुड न्यूज एक किस्म से
1: हाँ मैं यही कहने वाली थी कि मतलब ये हमें तो दिख रहा है 40-60% का रिडक्शन तो और ये हम आप बता रहे हो कि इसे कुछ अभी एकदम से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला
2: में तो कुछ नहीं होगा स्वाति जी मगर देखिए लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है क्योंकि मोर प्रोजेक्ट्स विल मूव फॉरवर्ड स्टार्ट विल गेट इनटू द पाइपलाइन मोर हाउसिंग सप्लाई बेसिकली जिसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है सदर जो GTA में खास करके
1: जी जी.
2: एक किस्म से वो जंप स्टार्ट हो सकती है होनी चाहिए और एक मोर सप्लाई बेसिकली जो है इट विल क्रिएट अ वेरी हेल्दी मार्केट फॉर अस एंड वेरी बैलेंस्ड मार्केट फॉर अस एज वेल ओवर टाइम
1: ओके अभी हमारे पास एक कॉलर कुछ पूछना चाह रहे हैं आई विल टेक हिज कॉल हेलो जी Hello.
3: Hi. Good evening.
1: Good evening. Hi. What's your question, sir? And what's your name first?
3: My name is Yuvraj, and my question is the development charges is for the new build house or is for the houses on resale?
2: No, not resale, sir. Development charges for the new construction.
3: Oh, new construction.
2: Yes. Okay. Yes. And that is another thing. You see, like, why resale should be left behind? तो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर हम रीसेल मार्केट को भी जंप स्टार्ट करें थोड़ा बट दैट्स जस्ट समथिंग वी हैव टू वेट एंड सी कि व्हाट द गवर्नमेंट विल डू
3: ओके इन केस दे वांटेड टू डू समथिंग ऑन द रीसेल मार्केट लाइक सेकंड हैंड सेल्स ऑफ हाउस व्हाट दे प्लानिंग टू डू लाइक डू समथिंग गुड फॉर द बायर्स लाइक न्यू
2: नो प्लान्स एज ऑफ येट बट देयर इन ऑल फेयरनेस देयर शुड बी सम एक्शन प्लान फॉर द resale side of things as well. But again, we'll see how things go because see, there's a lot of inventory on the builder side. So we'll wait and watch what action will be there for the resale market as well.
3: Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir.
1: Thank you so much. जी सौरभ जी अच्छा सौरभ जी ये बात तो हुई हमारी इस नई न्यूज की जिसमें अभी हमें एक्शन नहीं दिख रहा है कुछ खास पर होपफुली डाउन द लाइन दिखेगा वैसे भी 2026 टू 2029 की ये बात कर रहे हैं आप एक सेमिनार के बारे में बता रहे थे हम ऐड भी चला रहे हैं उसकी डिटेल जरूर दीजिएगा कि कब वो है और ताकि लोग अपना उस दिन का दिन खाली रखें वो समय खाली रखें
2: जी बिल्कुल देखिए वी आई थिंक दिस इज वन ऑफ द की टाइम फ्रेम्स वेयर वी नीड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी As to what's going on in the market, kya ho raha hai, kya incentives hain, And obviously, you know, people have a lot of questions when it comes to mortgage, when it comes to real estate law and stuff. So, isliye team Sambarwal, we are hosting a seminar on July 26th. Basically, we have our entire team present there, from mortgage agents to our in-house lawyer. So, you know, each and every answer, each and every question will be answered. That's the whole point of that, especially geared towards first-time buyers. Because right now, you know, just rebate ki baat ho rahi hai, which it is a big news. A lot of clarity is needed. A lot of questions need to be answered. Isliye humne bola ki aaj, you know, ye seminar karna bada zaruri hai. July 26th ko hamara seminar hai. More details will follow, Swati ji. All you need to do is go to teamsabarwal.com, register yourself, and you can, you know, send us a request. Our team will follow up and provide you with all the details needed. Bahut sari details abhi hum tweak kar rahe hain, aur but it is something you should not miss, especially agar aapke bacche hain jo for, you know, want to get into the market. Kyunki kaash jab main shuru kar raha tha 2008-2009 mein, I had, you know, kaash ye wali market tab hoti to fir things would have been extremely different. But then again, you know, like, we did not know then what we know now. If you or somebody you know, your kids, your grandkids want to get into the market, wo dekh rahe hain, they're first time buyers, investors, ye seminar unke liye bahut hi acha hai, bahut informative rahega. All you need to do is go to teamsabarwal.com, register yourself, and my team will follow up and we'll have you registered. Aur July 26th ko ye first time home buyer seminar ho raha hai. Extremely informative. Lawyers, mortgage agents will be present to answer each and every question that you have. And not something that should be missed, actually.
1: मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि सवाल हम सभी के बहुत होते हैं. अब एक ही छत के नीचे अगर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाए और वो कन्फ्यूजन्स में क्लैरिटी आ जाए तो क्या ही बात होती है. तो रजिस्टर जरूर करें, 26 जुलाई अपना फ्री रखें. अभी कहाँ और टाइमिंग्स वाली चीज आप तक जरूर पहुंचेंगी, पर 26 जुलाई फिलहाल इसके लिए अपना बुक करके रख लें और उसके लिए रजिस्टर भी कर लें teamsabarwal.com पर जाकर, ताकि हमें पता हो कि आप वहां पहुंच रहे हैं. और वरना नंबर मैं सौरभ जी का फिर दे देती हूँ, 6478648844. थैंक यू सौरभ जी, अगले ट्यूजडे फिर कनेक्ट करते हैं आपसे.
2: जी बिल्कुल, थैंक यू.
4: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टर को। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: माय प्रॉपर्टी माय चॉइस माय रियल्टर को द रियल एस्टेट कंपनी और विजिट myrealco.com। नॉट इंटेंडेड टू सॉलिसिट बायर्स एंड सेलर्स ऑलरेडी अंडर कॉन्ट्रैक्ट।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: Get on your feet with Peppy Nukkar Beats.

एंड अ क्विक रिमाइंडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट फॉर द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स. अब से बस कुछ मिनट्स बाद, जस्ट राइट आफ्टर फ्यू मिनट्स, हमारे साथ वो करेंगे बात, आपके भी लेंगे सवाल और बहुत सारे और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ वो जुड़ेंगे. नंबर्स डू वंडर्स इज द सेगमेंट. स्टूडियो का नंबर फॉर योर क्वेश्चंस आप नोट करके रख सकते हैं, 6478305042 ये मेरा नंबर है. स्टूडियो का नंबर 4165930055 अगर अनुज ओब्रॉय जी से आपको कुछ सवाल पूछने हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे, स्टूडियो के नंबर पे जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. पर ये सेगमेंट ध्यान से सुनिएगा, आज का सेगमेंट फिर से हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी और फिर उसे आप अपने आप से रिलेट करिएगा और हमें बताइएगा कितनी सटीक है कितनी नहीं. सुनते रहे फिल्मी नुक्कड़. स्टूडियो का नंबर 4165930055.

0: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart, and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: अच्छा एक बात बताओ, अंताक्षरी जब हम खेलते हैं आज भी, तो डा से जब गाना आता है तो सबसे पहले कौन सा गाना गाया जाता है? मोस्टली डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, है ना? और ना से जब आता है तो मोस्टली वो गाना गाया जाता है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, है ना? मतलब अधिकतर यही होता है, नॉट ऑलवेज. इतने साल हुए इन गानों को आए, पर जैसे अंताक्षरी में भी ना, ये अपना सिंहासन अभी तक है जमाए. एंड बोथ ऑफ देम वर द कंपोजिशंस ऑफ कल्याण जी आनंद जी. उनकी एवरग्रीन धुने हम आज भी गुनगुनाते हैं और रेडियो पर आज भी बजाते हैं, और ये गाना तो खैर क्लासिक है.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
3: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
2: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
4: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

एंड अ क्विक रिमाइंडर अगेन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज रॉय जी फॉर द सेगमेंट नंबर्स टू वंडर्स. विद इन अ मिनट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेगमेंट. स्टूडियो का नंबर फॉर योर क्वेश्चंस 4165930055.

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: All right, aap jud chuke hain hamare is प्यारे से सेगमेंट में आप सबका वेरी फेवरेट सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स जिसमें अनुज ओब्रॉय जी हमारे साथ जुड़ते हैं जो मानते हैं और हम सबको भी यही कहते हैं कि आप भी माने भाई नंबर्स कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ कुछ नंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जन्म से और कुछ नंबर्स में हम बदलाव ला सकते हैं अपने कर्म से पर वो बताते हैं कुछ टिप्स देते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी इनकी गाइडेंस चलती रहती है आपके सवाल चलते हैं इनके उत्तर चलते हैं और बहुत सारी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चलती है नंबर इनका सेगमेंट के बाद मैं वो भी बता देती हूँ ताकि सेगमेंट के बाद आप डायरेक्ट बात करना चाहें तो कर सकते हैं 6473308555 और स्टूडियो का नंबर रहेगा ड्यूरिंग द सेगमेंट आज 7 बजे तक 4165930055 फॉर योर क्वेश्चंस आप सेगमेंट ध्यान से सुनिएगा आज बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कुछ होने वाला है इसमें आपके सवालों के अलावा तो वेलकम सर
2: थैंक यू स्वाति जी एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड रैप्टर्स फैंस के लिए आज बहुत बड़ी न्यूज़ है अब से कुछ मिनट पहले ही ऐसी खबर आई है कि कवाई लेनर्ड की होमकमिंग हो रही है ही इज ज्वाइनिंग टोरंटो रैप्टर्स तो कल ही इनका बर्थडे था और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट तो नंबर्स की बात यहीं से शुरू करते हैं
1: अरे हाँ ये बड़ी अभी न्यूज़ आई है
2: अभी न्यूज़ आई है कुछ मैंने अभी पढ़ा 10 मिनट पहले
1: जी
2: तो कवाई लेनर्ड का बर्थडे होता है 29 जून मतलब कि कल था
1: अच्छा ठीक है
2: ऐसी तो कोई बात नहीं है इनकी डेट ऑफ बर्थ में कि इतने वर्ल्ड के ऑलमोस्ट बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन गए
1: पर इतनी न्यूमरोलॉजी मुझे आगे 29 मतलब 11 11 मतलब दो नंबर है
2: पहली बात है कि ये 11 भी 11 मास्टर नंबर है अब उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे तो मास्टर नंबर में थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है देन अ नॉर्मल नंबर नॉर्मल टू
1: अच्छा
2: तो ये बहुत बड़ा प्लस है बट दूसरी बात इनके पास एक सुपर पावर है जो 3 बारी 1 आता है इनकी डेट ऑफ बर्थ में 29 जुलाई 1991 बर्थ नंबर इज 2 एंड डेस्टिनी नंबर इज 1 तो ये 3 बारी 1 जो आ रहा है ना ये इनकी सुपर पावर है
1: वाओ ओके तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया मैं अभी आपने इनकी बात करी है मैं धीरे धीरे और भी बहुत सारी बात करने वाली हूँ मुझे लग रहा है फिल्मी नुक्कड़ पे आज जुड़े हैं तो मैं आपसे फिल्मी कैरेक्टर्स के नंबर पूछने वाली हूँ
2: अरे वाह ये तो बहुत बड़ी आइडिया है
1: लेट्स सी ये चैलेंज आज देते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग बताइएगा अगर आपने भी इस बीच न्यूमरोलॉजी से थोड़ी थोड़ी मैंने सीखी है आपने भी वो ट्रेड्स सीख लिए हैं तो आप भी बता सकते हैं और अगर अपने से मिलते जुलते लगते हैं या नहीं लगते तो भी आप हमें चैलेंज थ्रो कर सकते हैं हम हमेशा बताते हैं अनुज जी लव्स चैलेंजेस तो स्टूडियो के नंबर 4165930055 तो मेरा सबसे पहले सवाल है नंबर 1 कौन सा कैरेक्टर होगा कोई एक कैरेक्टर बताएं फिल्म को फिल्म
2: स्वाति जी ये बताने से पहले हम दो काम करते हैं एक पंथ दो काज
1: जी
2: सबसे पहले तो हम कैरेक्टर तो मैं बताऊंगा जरूर बताऊंगा आपने पूछा है तो
1: जी
2: और साथ ही साथ में हर नंबर की पिछली बार हमने पोल खोली थी इस बारी हर नंबर की स्ट्रेंथ से भी आइडेंटिफाई कराते हैं
1: सो स्वीट चलिए स्ट्रेंथ बताएं मुझे लगता है वो इतना पॉजिटिव चीज होती है स्ट्रेंथ तो सबको अपनी पता होनी चाहिए
2: बिल्कुल पता होनी चाहिए तो एक पन दो काज हो जाएगा फिल्मी नुक्कड़ है तो फिल्मी बात तो करनी ही है
1: जी
2: और साथ ही साथ में नंबर भी हो जाएंगे एंड सबकी पावर भी पता लग जाएगी
1: तो हम तीन चीजें कर रहे हैं हम कैरेक्टर्स कर रहे हैं फिल्मी साथ में हर नंबर की एक स्ट्रेंथ बता रहे हैं और उससे एक कैरेक्टर रिलेट कर रहे हैं चलिए मैं ही शुरू करती हूँ लेट्स बिगिन विद बाहुबली बाहुबली कौन से नंबर पे आता है
2: बाहुबली तो जो आपका नंबर है वही बाहुबली
1: अरे वाह मैं बाहुबली
2: देखिए नंबर 1 के पास उसकी सुपर पावर होती है उसकी लीडरशिप जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है चाहे इनको ताज मिले या ना मिले इनकी लीडरशिप स्किल्स हमेशा रहेंगे तो बाहुबली में एक डायलॉग था जहां पर वो बोलते हैं जहां जिएगा राजा की तरह जिएगा तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडर है अथॉरिटेटिव है मगर साथ साथ में दूसरों को समझते भी हैं अपनी प्रजा को साथ रख के चलने वाले होते हैं
1: प्रजा बोले तो टीम आज की टाइम में
2: बिल्कुल

0: वेल, ये तो हुई बाहुबली की बात. अच्छा, नंबर दो का कैरेक्टर आप मुझे बताएं, कोई कोई फिल्म का आपको दिखता है तो.
1: नंबर दो अक्सर लोग ना उसको निरूपा रॉय से जोड़ देते हैं.
0: अच्छा, ममता महिमा.
1: ममता महिमा मगर बड़ी इररिस्पॉन्सिबल मदर थी, बच्चे खो देती थी.
0: अच्छा.
1: हर पिक्चर में उन्होंने बच्चे खोए हैं. मगर यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश विंग्लिश की साक्षी, जो रोल श्रीदेवी जी ने निभाया था. देखिए, नंबर टू के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर अपने पे आए तो शाहरुख खान बन जाए, अमिताभ बच्चन बन जाए,
0: श्रीदेवी बन जाए.
1: श्रीदेवी जी ने जो ये रोल पुल आउट किया था
0: जी?
1: जब उनको एक वो फ्रेंच टीचर की सपोर्ट मिली तो न्यूयॉर्क में जाके झंडे गाड़ दिए. राइट. और उससे पहले उनको देखिए, बहुत डोसाइल सी, एक होम मेकर थी, लड्डू का बिजनेस करती थी, सबका मजाक बनती थी. और जब सपोर्ट मिली तो उन्होंने क्या से क्या कर दिखाया. यही स्ट्रेंथ होती है नंबर टू की.
0: वाओ, नंबर टू इंग्लिश विंग्लिश का कैरेक्टर, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था.

0: Well, it's all about English. English में मुझे लगा it's all about number two.
1: Yes, number two के पास बहुत पावर होती है.
0: अच्छा.
1: और एक सॉलिड नंबर होता है थ्री.
0: हाँ,
1: जिसको
0: अच्छा.
1: ज्ञान के लिए पीछे रहता है. तो इससे अच्छा एग्जाम्पल तो रैंचो से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता.
0: ओहो, उनका तो ज्ञान लेने का तरीका ही लगता है रैंचो का. तो
1: ज्ञान हर तरफ बट रहा है, जहां से मिले बटोर लो. तो बड़ी अच्छी पंचलाइन है, ये भी एक नंबर थ्री को डिफाइन करती है. मगर साथ साथ में क्रिएटिविटी इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, विजुअलाइजेशन स्ट्रेंथ होती है. नंबर तीन अगर अपनी इमेजिनेशन पे आ जाए तो सोनू निगम जी नंबर थ्री, आदित्य धर अभी के डायरेक्टर नंबर थ्री हैं. इनकी स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द सीन्स, इनकी क्रिएटिविटी इनकी स्ट्रेंथ होती है.
0: बिहाइंड द माइक, बिहाइंड द सीन्स. एंड यस, जैसे कि रेंचो का एग्जांपल हुआ हमारा थ्री इडियट से, ऑल इज वेल.
2: ऑटो को करके गोल, सीटी पर जाके बोल.

0: अच्छा डॉन का क्या होगा,
1: जिनको 11 मुल्कों की, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
0: हाँ, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है आज भी।
1: वो मुल्क कौन से हैं प्रस्वादी जी, पहले मुझे ये बताइए
0: मुल्क कौन से। हाँ 11 मुल्क तो मुझे गिनने भी पड़ेंगे।
1: नंबर 4 की स्ट्रेंथ होती है उनकी ग्रिट, उनका हार्ड वर्क, उनका डिसिप्लिन। तो नंबर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन से बेटर नंबर 4 हो ही नहीं सकता। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थोड़े लॉ ब्रेकर्स भी हो सकते हैं। तो डॉन कैरेक्टर परफेक्टली फिट होता है नंबर 4 के लिए।
0: अच्छा, तो डॉन इज नंबर 4, ये हमें आज पता चल गया है। अब कोई आपसे पूछे तो आप बता के देख लेना कि चाहे वो पान कहीं का भी खाए, डॉन इज नंबर 4।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: It's time to Toyota at Don Valley North Toyota. Strong, smart and capable. Apna summer escape redefine kare with a Toyota Tundra. Large selection or zabardast offers. Finance kare serve 3.99% se. Aaj hi test drive book kare. We pay top dollar for your trade. Visit DonValleyNorthToyota.com. Located at 3300 Steeles Avenue East, Markenburg. Canada's number one volume Toyota dealership. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: अब फायदा उठाएं जून के हॉट ट्रेड्स का विद नाम विद खुराना 3 इयर्स फिक्स 4.19% 5 इयर्स फिक्स 4.24% 5 इयर्स वेरिएबल 3.55% साथ ही मिले $5100 तक का हॉट और कैशबैक भी और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1500 है ना आइसिंग ऑन द टॉप कॉल अमित खुराना एट 6473412785 6473412785 और विजिट amitkhurana.com
2: अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है
3: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है
2: लिमिटेड सीट्स हैं आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757 6472994757 teamsabarwal.com
4: Real estate ka koi sawal Team Sabarwal
5: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
1: आप इनवाइटेड हैं डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस के एक्सक्लूसिवली योर्स इवेंट में लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय कीजिए 3% रेट ब्रेक यह हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल थैंक यू है विद अ 3% रेट ब्रेक इस साल की जबरदस्त ऑफर एक्सपीरियंस कीजिए लग्जरी और एक्सेप्शनल सर्विस सिर्फ डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर कॉल करें DonValleyNorthLexus.com या विजिट करें इन पर्सन A proud member of Wayne's Auto Group.
0: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmi Nukkad. It's the free time. फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर आप हैं स्वाति और पायस्विनी के साथ अगर आपको सवाल पूछने हैं कोई अनुज जी से जो कि हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन द सेगमेंट नंबर्स टू वंडर्स तो स्टूडियो का नंबर 4165930055 आपको बस अपना डेट ऑफ बर्थ और सवाल रेडी रखना है और ही लेट यू नो द आंसर पर इसके अलावा हम बात कर रहे हैं डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स इन द फिल्म जो कि कैरेक्टर्स हैं और उनके क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं जिन पर वो कैरेक्टर्स बने हैं और इस बहाने हम उन नंबर्स की स्ट्रेंथ भी पता कर रहे हैं तो हमने नंबर एक की बात करी नंबर दो नंबर तीन नंबर चार चार इज नंबर डॉन तीन थे अपने रेंचो ऑल इज वेल वाले और दो थे हमारी इंग्लिश विंग्लिश की श्रीदेवी वाला कैरेक्टर और एक हमारा रहा है बाहुबली कैरेक्टर मैं आप लोग के सवाल ज़रूर लूँगी हमारे साथ प्लीज़ ट्यून इन रहें मैं धीरे धीरे लेती हूँ बट पहले मैं वो सारे नंबर्स ख़त्म कर लूँ और वो कैरेक्टर्स तो नंबर पाँच के लिए कौन सा कैरेक्टर होगा
7: नंबर पाँच आज के बच्चों की सबसे फेवरेट मूवी ये जवानी है देवयानी
0: अच्छा ये जवानी है देवयानी उसका बनी
7: बनी देखिए कैसा कैरेक्टर था फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ लाइफ और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी एडेप्टेबिलिटी वर्सिटैलिटी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता था तो ये सारे स्ट्रेंथ जो है ये सारे कैरेक्टर नंबर फाइव के हैं
0: ओके,
7: इनकी स्ट्रेंथ भी यही है और वीकनेस भी यही है
0: कि एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते,
7: टिक के बैठ नहीं सकते मगर अडैप्टेबल है, हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, लवेबल होते हैं।
0: बहुत लवेबल कैरेक्टर था वो तो। मेरे ख्याल से बनी इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट कैरेक्टर्स जब भी रणबीर कपूर की फिल्मों की बात आती है, और ये गाना उनकी फिल्म से जो है ये उस कैरेक्टर को भी बताता है। जानते हैं कौन सा?

0: ऑलराइट, यहाँ पे हम बनी की बात कर रहे थे, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, नंबर 5 के ट्रेट्स हैं उसमें, हमें न्यूमरोलॉजी वाइज पता चलता है। नंबर 6 के लिए कौन सा कैरेक्टर पिक करेंगे?
1: आप बोल रहे थे बनी आपका फेवरेट कैरेक्टर है, अगला कैरेक्टर शायद आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, अक्षय कुमार फ्रॉम द मूवी, एनी आइडियाज, एनी गेसेस?
0: नो,
1: मुझसे शादी करो।
0: विकेट सनी।
1: ये नंबर 6 देखिए, सबसे ज्यादा जिसको बोले एडोरेबल कैरेक्टर होता है, अपनी प्रेजेंस फील कराता है, डिप्लोमेटिक होता है, थोड़ा शरारती होता है, मौके पे चौका मारता है, तो सनी से अच्छा कोई एक कैरेक्टर मेरी समझ में नहीं आया।
0: विकेट सनी।

0: स्वाति जी, आई होप ये विकेट सनी आपके
1: बड़ा फेवरेट कैरेक्टर रहा है फिल्म में। एक्चुअली चार चांद इस कैरेक्टर ने लगाए थे,
0: मगर अगला कैरेक्टर आपको इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: हाँ?
0: चक दे इंडिया का कबीर खान,
1: ओहो,
0: नंबर सेवन को इतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। नंबर सेवन के ट्रेड्स होते हैं डिटैचमेंट, फोकस। जितना फोकस नंबर सेवन ला सकता है उतना कोई और नहीं ला सकता, एंड दूर की कड़ियां जोड़ने वाला नंबर होता है। तो ये सारे के सारे ट्रेड्स जो थे वो नंबर सेवन के कबीर खान में थे।
1: ओके, तो जो शाहरुख खान वाला कैरेक्टर था,
0: चक दे इंडिया,
1: चक दे इंडिया, इंटरेस्टिंग।

0: ऑलराइट, क्विकली अभी दो नंबर और पूछने हैं आपसे, आठ और नौ, पर उससे पहले कॉल ले लेते हैं और कॉलों का सिलसिला भी कोशिश करते हैं कि लेते रहेंगे हम. बट स्टूडियो का नंबर आप नोट करके रखें, फटाफट मिलाने इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, 416-593-0055. हम बात कर रहे हैं अनुज जी से इन द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स. तो पहला कॉल, हेलो जी.
1: हेलो.
0: हेलो सर, अपना नाम बताना चाहें तो प्लीज बताएं, वरना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं.
1: Yes, it's for my son. It's 3rd of June 2000. Or the question I give, when will he get married?
2: You said 3rd of June, right?
1: Yes, 3rd of June 2000, millennium child, kid.
2: This year, there's a good chance he may get married this year. This year is favorable for him.
1: Mm-hmm. Okay, because he's very much...
2: He's still young, sir. Don't worry. He has a lot of time. He's just 26.
0: Hamare laddu yaad rakhna bas aap.
1: Nahi, main nahi bhulunga. I cannot forget.
2: Main laddu nahi khata, mujhe rasmalai pasand hai.
1: Rasmalai bhej dunga.
2: Okay, sir. I wait for the good news then.
0: All right.
2: Okay, next. This year is a good chance, sir. Go ahead with it.
1: Okay, thank you, sir.
0: All right, next caller. Hello, G. Hello. हमें आवाज नहीं आ रही आपकी. Hello. If you have any question, please ask at this moment. वरना हम अपनी बात तो कर ही रहे हैं. अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही है तो मैं इस कॉल को मुझे पास करना पड़ेगा. I'm not able to hear. मुझे नंबर आठ और नंबर नौ के बारे में भी बताएं. कौन सा कैरेक्टर फिल्मी आप पिक करेंगे?
2: नंबर आठ एक ऐसा नंबर होता है जो बिजनेस नहीं बनाता, वो कॉरपोरेट खड़ा करता है. नंबर एट के बिना आप कभी कॉरपोरेट नहीं बना सकते. इलॉन मस्क इज 1-7 का कॉम्बिनेशन, बट इट्स नेम गोज टू नंबर एट. तो सोचिए, नंबर एट में एक लेगेसी बनाने की स्ट्रेंथ होती है. तो इसमें तो मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आता है, अमिताभ बच्चन इन द मूवी सरकार.
0: क्या बात,
2: उनके जैसा रोल, जो उनमें ठहराव था. कम बोल के ज्यादा बोलते थे,
0: कम बोलकर जो
2: भारी बात बोलते थे,
0: जो भी कर रहे होते थे वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद.
2: तो इससे अच्छा कैरेक्टर मुझे नहीं समझ में आया.
0: ओके ओके ओके. नेक्स्ट मुझे नंबर नाइन
2: की पर्सनालिटी होती है अ वॉरियर लाइक. ह्यूमैनिटी उनकी स्ट्रेंथ होती है, केयर लव इंटेलिजेंस उनकी स्ट्रेंथ होती है. तो अगर किसी ने बाजीराव की तलवार पे संदेह किया, उससे बेटर कैरेक्टर नहीं हो सकता नंबर नाइन.
0: बाजीराव वाज नंबर नाइन.
2: महाभारत से कर्ण भी वैसे नंबर नाइन के लिए बहुत
0: सूटेबल
2: है.
0: ओके,
2: बट वो यहाँ फिल्मी बात हो रही थी तो इसलिए मैंने बाजीराव को.
0: अभी कर्ण पे फिल्म बनेगी तो हम देखते हैं.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: Hum honge aapke saath hamesha.
9: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार। ये टाइम है टोयोटा का। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इट्स rjswati_toronto। Alright, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज रॉय जी इन द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स। बहुत सारी बातें हमने इंटरेस्टिंग सी आज करी, फिल्मी नुक्कड़ है तो फिल्मी कैरेक्टर्स और उनकी न्यूमरोलॉजी हमने पता करी कि क्या क्या उन कैरेक्टर्स की हो सकती है। आपके सवाल भी हम ले सकते हैं, स्टूडियो का नंबर 4165930055। लेते हैं पहला कॉल। हेलो जी। हेलो।
10: हेलो।
0: यस सर। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन सर?
10: यस, मेरा क्वेश्चन है, मैं बिजनेस में हर बार जब भी कोशिश करता हूँ फेल होता हूँ। आई जस्ट वांट टू चेक, माय डेट ऑफ बर्थ इज March 19th, 1969।
11: सर योर क्वेश्चन अगेन प्लीज, आई कुडंट हियर इट प्रॉपर्ली।
10: बिजनेस में हर बार मैं फेल होता हूँ जब भी बिजनेस करता हूँ। इनफैक्ट माय फादर वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, बट जब मैं बिजनेस करता हूँ इट आई ऑलवेज फेल।
11: Sir, you have all the qualities to be a successful businessman. The only thing could be that, you know, you are choosing a wrong profession, or either there's a problem in your name.
10: Uh-huh.
11: Otherwise, a 19th born, sir, Mukesh Ambani is also 19th born.
10: Right.
11: Indira Gandhi was 19th born. Sushmita Sen, Sushmita Sen, Rani Lakshmibai was 19th born. So they have all the strengths of a leader, and business needs leadership. So you have the qualities to be a good businessman, either a wrong choice of business or a wrong name number. You could consult with me off air. I'll help you out.
10: Okay, thank you.
0: And to consult off air, 6473308555 is the number. Studio ka number, aapke abhi sawal puchna hai to 4165930055. Ek aur call ki taraf chalte hain. Hello, ji. Hello.
12: Hello. हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बता सकते हैं तो बताएं, वरना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं।
12: नाम रेहान और डेट ऑफ बर्थ August 8, 1971. जी, और के बारे में बताइए।
0: किसके बारे में, सॉरी आपका आवाज टूट गई।
12: फ्यूचर और पर्सनैलिटी के बारे में।
0: अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी और फ्यूचर के बारे में। कौन से फिल्मी कैरेक्टर हैं ये बताए चले, अभी हम फिल्मी कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे।
11: सर, बनने को तो आप सरकारी बनेंगे, नंबर 8 वाले हैं, तो यू नो यू हैव द पोटेंशियल टू बिल्ड अ लेगेसी।
0: साम दाम दंड भेद।
11: इतने हार्ड वर्किंग है आप कि अपना फ्यूचर अपने हाथ से लिख सकते हैं, और आपकी थिंकिंग भी कुछ ऐसे ही है, तकदीर पे विश्वास राइट। हार्ड वर्क आपकी स्ट्रेंथ है, और थोड़ा स्ट्रगल रहा होगा लाइफ में इनिशियली, क्योंकि 2 बारी 8 आ रहा है। सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड।
0: ठीक है, चलें चलें। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबेरॉय जी। आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताना है और अपना सवाल। हेलो हेलो, मुझे तो ये आवाज़ फिर नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है मे बी सम प्रॉब्लम इन द लाइन और सो, बट आप अगर जो पूछना चाहते हैं तो मैं फिर से नंबर बता देती हूँ 416-593-0055। मे बी यू वांट टू डिसकनेक्ट एंड देन डायल अगेन। अच्छा, न्यूमरोलॉजी जो सीखनी है अनुज जी, तो क्या आपसे कैसे सीखी जा सकती है?
11: मैम, हर महीने मेरे बैच शुरू होते हैं, छोटे छोटे बैच होते हैं 4 से 5 स्टूडेंट्स के, और जूम पे होता है, घर बैठ के सीख सकते हैं। साथ में आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और साथ साथ में पूरा एक PDF मिलेगा जिसमें नेम नंबर 1 से लेके 119 तक सारे नंबर्स के ट्रेट्स लिखे होंगे, हर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हर चीज़ डिटेल में आपको एक डॉक्यूमेंट में मिलेगी। 2 घंटे दीजिए और उसके बाद मेरी बात मानिए नहीं, उसको जानिए।
0: अच्छा, बात मानिए नहीं, उसको जानिए। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, अनुज जी इज रेडी फॉर चैलेंजेस एवरी टाइम। लेते हैं एक और कॉलर। हेलो जी। हेलो
13: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताना चाहे तो नाम बताएं, वरना सीधे डेट ऑफ बर्थ और सवाल।
13: नाम गोविंद, डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1958।
0: एंड योर क्वेश्चन सर?
13: रिगार्डिंग द माय फैमिली, हाउ इज माय फैमिली, माय चिल्ड्रन,
0: कैसे रहेगा सब फैमिली में? सब स्वस्थ रहेंगे।
13: दे ऑलरेडी गॉट मैरिड, दे हैव किड्स आल्सो।
11: सर, ये डिटेल आपकी डेट से नहीं पता चल सकती। आपकी लाइफ अच्छी रही है, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है, यू मेड एम्पल मनी। थोड़े से सुस्त है, मतलब इन द सेंस कि थोड़े से आलसी है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दिस इज़ अ फैंटास्टिक। आपका पूरा ध्यान आपकी फैमिली में ही रहता है, ये बात मैं ज़रूर बोल सकता हूँ।
0: परिवार का परिवार की डेट ऑफ बर्थ से पता चल सकता है ना उनकी?
11: सर, इंडिविजुअल डेट से पता लग सकता है या वास्तु से पता?
13: और माय वाइफ 20।
11: सर, आई एम सॉरी बट 1 question एट अ टाइम सर।
13: ओके, सॉरी फॉर दैट।
0: नो नो वरीज, बट आप वरना आप बाद में इनसे बात कर सकते हैं। 6473308555। ऑलराइट, चलते हैं एक और कॉल की तरफ। हेलो जी। हेलो
14: हेलो
0: जी, हां, आपका नाम और सवाल और डेट ऑफ बर्थ।
14: मेरा नाम रे।
0: रे,
14: या, और सवाल क्या है कि पर्सनल रिलेशनशिप में डेट, पर्सनल रिलेशनशिप के हिसाब से कैसे होता है?
0: अब कैसा रहेगा? व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ सर?
14: पर्सनल रिलेशनशिप कोई लड़की के साथ।
11: सर, आई वुड नीड बोथ द डेट ऑफ बर्थ एंड आई नीड टू कंपेयर देम वन ऑन वन।
14: May 26, 1969.
11: 30 seconds, that is not possible, sir. I would need more time to analysis. You can contact me off air, sir. I'll definitely help you out. But I'm sorry, it cannot be done like, you know, in a blink of an eye.
14: Right. Okay. No problem. Can you tell me my luck line?
11: Sure. Give me your date.
0: Date of
11: May 26, 1969. 1969, you said, right?
14: Yeah.
11: So luck factor has been a bit down. There should have been a lot of struggle in life, and especially related to relationship.
14: Okay.
11: But hard work, perseverance definitely pays, sir. 8 and 2 is like, you know, iron meeting water. So zangi lagega wahan par. So thoda sa, this is a struggling combination, but hard work and perseverance, as I said, will definitely give you good results. I would say success delayed but not denied for you as well.
14: Thank you, sir.
11: You're very welcome.
0: All right, जैसे कि नंबर मैं फिर से स्टूडियो का तो दे ही नहीं हूँ, 416-593-0055 अगर आपको अभी करनी है बात, पर अगर आप बाद में बात करना चाहते हैं, जैसे कि अभी साहब ने बोला कि वो दो डेट ऑफ बर्थ को कंपेयर करके कंपैटिबिलिटी या कुछ पूछना चाह रहे हैं रिलेशनशिप का, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दो डेट ऑफ बर्थ चाहिए एंड देन देयर इज अ मैच मिसमैच हैज़ टू बी सीन एंड कंपैटिबिलिटी हैज़ टू बी सीन. तो उसके लिए आप अगर जो ऐसा कोई सवाल है तो अनुज जी को आप बाद में बात कर सकते हैं. स्टूडियो का नंबर तो जो है 416-593-0055, बट बाद में अनुज जी का नंबर रहता है 647-330-8555. अनुज जी वेबसाइट भी बताना चाहेंगे,
11: numbersdowonders.com.
0: सिंपल, नंबर्स डू वंडर्स, वेयर डू पे बहुत जोर है, डी डबल ओ है, क्योंकि नंबर्स डू वंडर्स.
11: आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर, यू नो, जो मिस्टर रे ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, दैट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ, इट सडनली रिंग्स अ हेड बेल इन माय हेड.
0: जी,
11: न्यूमरोलॉजी वर्क्स बेस्ट व्हेन यू नो देयर इज अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट टू बी डन.
0: अच्छा,
11: मैम दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर एलिमेंट्स एंड कौन क्या प्लेट पे लेके आ रहा है, न्यूमरोलॉजी ये बहुत अच्छी तरह से बताती है.
0: अच्छा, ओके,
11: सो रे यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी, आई विल हेल्प यू आउट हियर.
0: अच्छा, नेक्स्ट कॉलर, हेलो जी.
15: हेलो जी.
0: हां जी,
15: डेट ऑफ बर्थ इज जुलाई 29, 1978.
0: जुलाई 29, 1978. एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन?
15: आई वांट टू नो अबाउट माय फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन कनाडा.
0: अच्छा, मैडम वापस चले जाएंगे क्या? अच्छा, वापस जाए तो सुनते रहिएगा हमें वहां से भी, ठीक है ना?
15: नहीं नहीं, वी आर हियर टू स्टे, बट वी वांट टू नो हाउ एंड व्हाट वी विल बी एबल टू अचीव एंड डू इन दिस कंट्री.
0: अच्छा, ठीक है.
11: कनाडा सूट्स यू वेल एंड यू हैव दिस सुपरनैचुरल एबिलिटी टू गेज पीपल, यू नो, यू कैन कैच एनीबॉडीज वेव्स वेरी वेरी क्विकली. यू आर द सेम चक दे इंडिया का कबीर खान एंड कनाडा होल्ड्स गुड फॉर यू.
15: Okay, thank you so much.
0: चले, नेक्स्ट कॉलर, हेलो जी. हेलो, कैन यू हियर अस? हमें आवाज नहीं आ रही, क्योंकि ओके हमें दूसरे कॉल की तरफ चलना पड़ेगा. आई एम नॉट एबल टू हियर यू, सॉरी. आप दोबारा ट्राई करें. हेलो,
16: हेलो, आई कैन हियर यू.
0: जी, अभी अब आपकी आवाज आ रही है. आपका नाम बताएंगे और डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन.
16: मेरा नाम है द्वैपायन मुखर्जी. मेरा डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 1987. तो मैंने प्रोस्पेक्ट.
0: जी, आपका सवाल कट गया एक्चुअली.
16: तो मेरा प्रोस्पेक्ट क्या है इसलिए फोन किया. अभी थोड़ा मैं स्ट्रगल में हूँ.
11: सर, आपकी डेट आपने बताई 19 सितंबर 1987.
16: या
11: सर, स्ट्रगल तो है. सिर्फ आपको पता है, पर मुझे पता होना बड़ी बात है ना. थोड़ा है सर, लाइफ अप एंड डाउन रहेगी, बट ठीक है, जो ऊपर वाले ने दिया है तो साथ में आपको हिम्मत भी बहुत दिया है. यू कैन गेट ओवर इट.
16: थैंक यू.
0: चले, ऑलराइट, एक और कॉल ले लेते हैं. हेलो जी.
17: हेलो.
0: हाँ जी, आपका सवाल, डेट ऑफ बर्थ.
17: 5 अप्रैल 1965.
0: 5 अप्रैल 1965. एंड योर क्वेश्चन?
17: अबाउट माय वर्क और
0: वर्क
17: काम के लिए.
0: काम के लिए.
11: सर, आपको एक बात बताओ, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान सब 1965 के बर्थ है. 1965 वालों को पैसा कमाना आता है. ठीक,
17: पर वो कब आएगा टाइम?
11: इसके दो ही कारण हो सकते हैं जो मैं बार बार बोलता हूँ. ऐसी डेट ऑफ बर्थ पे अगर आप मेरे को पैसे से लेके सवाल पूछेंगे ना, तो आई विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड हियर.
17: ठीक है,
11: आइदर रॉन्ग नेम नंबर और रॉन्ग प्रोफेशन, दीज आर द ओनली टू फैक्टर्स सर. ऐसी डेट ऑफ बर्थ हजार में नहीं, सॉरी, 1 लाख में एक होती है. ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग डेट ऑफ बर्थ है सर, नॉलेज बहुत है आपको, थोड़ा सा अगर है तो लेजीनेस है, उसको अवॉइड करें.
17: ठीक है. और कोई काम कोई रिलेटेड के क्या किया जाए या क्या
11: कुछ भी कर सकते हैं. अगर एजुकेशन रिलेटेड या क्रिएटिविटी वाला काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है.
17: अच्छा,
11: ठीक है, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है सर, ये बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है.
17: ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू.
0: चले, एक और कॉल लेने की कोशिश करते हैं, समय थोड़ा भागता जा रहा है, पर विल ट्राई. हेलो, हेलो, मुझे हमें हाँ जी अब आवाज आई. तो आपका डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं और नाम बता सके तो नाम भी बताएं.
18: अमित शाह
0: जी
18: 23 1959.
0: अगस्त 23 1959.
18: यस.
0: एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन?
18: सो आई एम प्लानिंग टू बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इज इट गुड टाइम?
0: इज इट अ गुड टाइम टू बाय एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी?
11: वेरी गुड टाइम सर. आप अपने यू नो आई विल से दैट यू आर इन योर होम रन. You are 23 से 5 and your time is also Mercury ka. So this is an excellent time to buy property, sir.
18: Okay, so I won't be in a problem, right? So because I'm paying the mortgage right now and there will be another mortgage.
11: So that your CA will tell you better than me, your CPA. But
18: I'm
11: trying to say is you are in the phase where, you know, your element is Earth right now. So this is the best time to buy property for you.
18: So in a couple of months, it should be okay.
11: You can buy it throughout this year, sir.
18: Okay, great.
0: चलिए मैं लास्ट कॉल और ले देती हूँ और उसके बाद अगले ट्यूसडे का प्लीज आप लोग इंतजार करिएगा अनु जी के जुड़ने का हमारे साथ. हेलो जी.
19: हेलो, गुड इवनिंग.
0: गुड इवनिंग. व्हाट्स योर नेम इफ यू कैन टेल एंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन?
19: ब्यूला जेसराज.
0: ओके.
19: माय डेट ऑफ बर्थ इज 13 जून 1975. हाउ दिस ईयर विल बी? आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब. How it will be? I am looking to buy a sale a property and buy the other one. How it works?
11: Just one second. You said 13th June, right?
19: Yeah, 13th June 1975.
11: Mm-hmm. I'm honestly speaking, I would wait. If I was in your place, I would wait for the next year. This year might give you a lot of mental stress.
19: Yeah.
11: Okay. So there's a probability that, you know, even if the things go smooth, it will give you a lot of mental tension.
19: Okay.
11: So better to avoid this year, sir. Ma'am, you could choose, you know, if you want to finalize something, you can do it, but closing, you should do it next year only.
19: What about selling the property?
11: Ma'am, overall, this is not a very favorable time to do anything. Just stay where you are. You are in your anti-year right now.
19: Okay.
0: चलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. अगले ट्यूसडे का प्लीज करें इंतजार. अनुज जी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे वही 6:15 और जुड़ेंगे ये हमारे साथ ट्यूसडे को ही हर ट्यूसडे की तरह. इनका नंबर रहता है आफ्टर दिस सेगमेंट, आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं 6473308555. थैंक यू अनुज जी.
11: यू वेरी वेलकम. मैं लास्ट बात बोल देता हूँ कि 6th से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है. 5:30 to 7:30 एंड 7:30 to 9:30 दो घंटे की क्लासेस होती है और मंथली गिव मी 30 days. दैट इज ऑल आई विल से.
0: ओके, 30 दिन और आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हो जाएंगे.
11: थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.
0: टू एडवर्टाइज विद फिल्मी नुक्कड़ ऑन CMR एट 5 PM योर प्राइम ड्राइव टाइम शो. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
20: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 months एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.